0: हे ब्रह्मा जी, तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
1: गर्ग मुनि ने,
0: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी, लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था, तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्यरत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी, विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं, कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संस्कार।

0: सार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चलते आगे आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथा करोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो, कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं, प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही होते हैं। हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्रायः नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ, दिन
0: में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 सुबह के 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उस अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे। जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह कर के भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाएं तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाई ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट स्वपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या दीकर कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो, प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन, वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
2: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
2: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम।
3: हुँ.
2: फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं।

0: कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है। और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
0: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी, मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक

0: समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
1: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना, कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छे एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना, जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें, आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
0: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड

0: अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृक्ष 107.8 FM पर। नमस्कार।
1: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जाओ. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी. एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज़ जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माई लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवनदायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी, एंड ह्यूमन बीइंग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ, बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें nourish.
1: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know?
1: ये मेरी responsibility है. तो imagine how the day will pass, and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think हम, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया, द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली, लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू.
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए, वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण, एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते
0: जाएंगे. You know, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं. दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके मिलता
1: है। आई फील ब्यूटिफुल
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे। That's good for me, then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside.
0: Okay.
1: Simple things. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल
0: और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट।
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवर सेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि

0: हाँ, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय
1: इरिटेशन,
0: या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते हैं,
1: वॉचिंग इट
0: एंड सी इट। तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
1: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
0: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था। तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
1: गुस्से के दौरान
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज़ अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं। अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा। लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है। लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस जाएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो। एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से, जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज।
1: यस, यू नो वी ऑलवेज बीन सेइंग इट्स जस्ट अ यू नो थॉट वे, सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह है कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया।
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो इट इज जस्ट बिकम वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर।
1: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज। लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ। लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है। तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस।
0: पीस इज अ वर्ड विच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड, यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है, लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते। हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है, यू नो, एंड एट दैट टाइम वी से आई वॉन्ट पीस। पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बीइंग, ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे, अंदर एक साइलेंस होगा, एक है साइलेंस एक है नॉइस, यू नो। तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं, बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइस है, और नॉइस क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड। साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स। सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स, नो, थॉट्स फोकस्ड, आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है। हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए,
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे,
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है। तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक, तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना। पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है।
0: आप अपने परिपेक्ष में अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए,
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना। लेकिन मेरे अगर मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ, क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है, मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को।
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते
0: ओम शांति।

मॉर्निंग रेडियो मैंने रचना 7.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन, आज साक्षी है आपके साथ, बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। और देखिए, मैं चाहे मंडे हो या संडे, मैं रोजाना आपके पास आती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। तो आज भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और साथ ही आपके लिए बहुत ही कमाल के गाने लेकर के आई हूँ, तो गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ आज है संडे का दिन और मैं आपके लिए ना ढेर सारी जानकारी लेकर के आ चुकी हूँ. तो देखिए क्या होता है ना, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ना बहुत ज्यादा हम आलसी होते जा रहे हैं, हर टाइम जो है वो थकान रहती है और हमें ना नींद की जरूरत है. लेकिन क्या वो सच में आलस ही है, क्या वो सच में आपकी नींद ही है, या फिर आप तनाव में है, स्ट्रेस में है? देखिए हर बार किसी तरह की मोटिवेशन महसूस ना होना या फिर थकान जो है ये हमेशा बने रहना, काम में ध्यान ना लग पाना, इसका मतलब जो व्यक्ति है ना वो आलस नहीं इसका हमेशा मतलब होता है. कई मामलों में स्ट्रेस, तनाव, मानसिक थकान, खराब नींद और इमोशनल भारीपन भी किसी काम को शुरू करने से या खत्म करने में रुकावट आपके बन सकता है. अब आलस को ज्यादातर टाइम देखिए कम दिलचस्पी या फिर जो है वो काम करने की कम इच्छा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि जो स्ट्रेस है वो मन के भारीपन, चिंता और मानसिक थकान की वजह से होता है. ऐसे में हो सकता है कि कोई व्यक्ति तनाव से घिरे होने के बावजूद काम करना जरूर चाहता हो, लेकिन लगातार चिंता, स्ट्रेस होने की वजह से दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं तो वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है. और अक्सर लोग इसे ये कह देते हैं उस व्यक्ति को, ये आलसी है, ये काम करना ही नहीं चाहता है, जबकि हो सकता है कि काम हो ना रहा हो. अच्छा अब कुछ ऐसी देखिए बात करूंगी, यानी ये कुछ लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे. क्या कुछ लक्षण है तो देखिए सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव या नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना ये, या फिर भूख में बदलाव होना, कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी एकदम से नहीं लग रही है, ये सारे बदलाव हो सकते हैं. अब चलिए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी आपको दूंगी कि आलस या तनाव क्या है, किससे घिरे हैं आप, इसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

और देखिए खुद पर जो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप खुद पर ना काफ़ी ज़्यादा दबाव तो आप डाल रहे हैं, अपने मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक आसान तरीका और ये जो बात है ना ये हो सकती है कि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ना तो आप खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड तो हो नहीं सकते हैं, और ऐसे में कहीं आपका ध्यान नहीं लगेगा और आपको थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, रात रात में नींद नहीं आ रही है। कई बार ऐसे होता है कि वो जो सुकून है ना वो नहीं मिलता, और जब सुकून नहीं मिलता है ना तब दिक्कत बढ़ जाती है। दिक्कत बढ़ना जो है वो सीधा सीधा ना सिर्फ आपको फिजिकली बल्कि मेंटली परेशान करेगा, और ऐसे में देखिए आलस नहीं इसे स्ट्रेस या तनाव मैं कहूँगी इसे कहते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। और चलिए इसके बारे में ना मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगी, इसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी है। देखिए आप जो मैं बात कर रही हूँ कि तनाव को कम कैसे करना है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानवी 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। तनाव की हम बात कर रहे हैं और देखिए तनाव को कम कैसे करना है। तो देखिए, मन को शांत करने और फोकस बढ़ाने के लिए आपको बड़े काम को एक साथ करने की जगह छोटे छोटे कामों से शुरुआत आपको करनी है। इसी के साथ ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपने काम के बीच बीच में आपको ब्रेक लेते रहने हैं और रोजाना डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही मेडिटेशन भी आपको एक रूटीन का हिस्सा आपको अपने बना लेना है। मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हर रोज आपको घर या ऑफिस के बाहर थोड़ा सा टाइम बिताना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी सेहतमंद जो है आपकी रहेगी, आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में आपको नींद लेनी है और खुद को हाइड्रेटेड रखना है। इसके साथ फल सब्जियों अनाज वाली मिलेट्स वाली जो डाइट है वो लेनी है ताकि बैलेंस बॉडी का बना रहे। सबसे जरूरी बात है कि अपने स्क्रीन टाइम को आप लिमिट में रखें, ज्यादा ना रखें। रात को सोते टाइम आपको क्या करना है, उससे पहले ही आपको अपना मोबाइल फोन अपने आसपास से हटा देना है, बिल्कुल दूर कर देना है, जिससे आपको अच्छी नींद मिलेगी। और इसी के साथ साथ अपने आप को ना आलसी का लेबल नहीं देना है। चलिए कुछ और भी बात करूंगी लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ ना आज बहुत सारी बातें तो हमने करी हैं, लेकिन अब हमारे साथ ना जुड़ने वाले एक बहुत ही खास एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं, जिनसे हम ढेर सारी बातें जरूर से जरूर करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो हमारे रेस्टोरेंट के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रेस्टोरेंट, जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देरी किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए, आज हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेश। हर संडे डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़ते हैं जिनसे हम ढेर सारी बातें करते हैं, और आज भी खास एक टॉपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक है योगा एंड ओबेसिटी। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेश जो कि हमारे रेडियो मानव रचना के एक कम्युनिटी मेंबर हैं और साथ ही साथ योग गुरु हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हैप्पीनेस कोच भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के काफी अच्छा लगता है।
0: डॉक्टर राजेश, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा और ओबेसिटी पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओबेसिटी और सिर्फ वेट गेन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि दोनों सिमिलर है, वेट गेन करना मतलब मोटापा होना, लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
1: देखिए, ओबेसिटी जो है ना, ये एक चैलेंज है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसमें आप ट्रैप हो चुके हैं। वेट गेन करना, जैसे जिनकी वेट लॉस है, वेट लॉस को वेट गेन में हम डॉक्टर कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा वेट बढ़ाइए, तो वेट गेन को हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं। ओबेसिटी जो है वो आप ट्रैप हो गए एक पैरामीटर के अंदर, जहां आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है सब चेंज हो गया है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया है, एंड एक्युमुलेशन ऑफ फैट्स जो है वो ज्यादा बन रही है।
0: जी डॉक्टर राजेश, क्या होगा अगर, क्या योगा जो है वो ओबेसिटी को मैनेज करने में जेन्युइनली हेल्प करता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है?
1: नहीं, योगा जो है ओबेसिटी को मैनेजमेंट करने में एक बहुत ही कारगर और एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका अदा करता है।
0: जी,
1: योग से मोटापा कम होता है, ये बात तो सही है, और खास करके आपके जो हार्मोन असंतुलित होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड का भी असामान्य रूप से हो जाना भी, ज़्यादा थायराइड अगर बन रहा है तो प्रॉब्लम है, कम बन रहा है तो प्रॉब्लम है, तो उसको वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये बैलेंस करता है, ये संतुलित करता है और इसके अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट लाता है।
0: जी,
1: तो इसलिए योग जो है बहुत ही कारगर उपाय है, लेकिन आप रोज कीजिए। लोगों से गलती क्या होती है, योग शुरू करते हैं, 2-4 दिन करते हैं, फिर बीच में ग्रैप दे देते हैं, फिर आगे करते हैं, वैसा मत, थोड़ा सा ही कीजिए लेकिन रोज कीजिए।
0: जी डॉक्टर राजेश, कई सारे लोग हैं जिनका वेट जो है वो काफी ज्यादा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो क्या योगा की जो शुरुआत की अगर बात करें तो वो कहाँ से और कैसे होनी चाहिए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे?
1: देखिए, योग तो सेकेंड स्टेज में, पहले आप अपने अंदर में एक दृढ़ संकल्प कीजिए, लीजिए अपने अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि हमें वेट घटाना है, और इसके लिए हम चारों ओर से जितने सारे उपाय हैं उन सारे उपायों को हम करेंगे। योग उसमें एक टेक्निक है, आप पहले घूमना शुरू कीजिए, वॉकिंग करना शुरू कीजिए, कोई ज्यादा वॉक भी मत कीजिए, थोड़ा सा कि आज 10 मिनट वॉक करेंगे, कल 15 मिनट करेंगे, इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आप 45 मिनट्स टू 1 आवर कीजिए, फिर थोड़ा बैठ के ब्रीदिंग टेक्निक कीजिए, थोड़े थोड़े स्ट्रेचिंग करना शुरू कीजिए, और खान पान का ख्याल रखिए।
0: जी,
1: स्ट्रेस ज्यादा मत लेना है, स्ट्रेस को आप मैनेज करना सीखिए, स्ट्रेस के सारे जो टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट के उसको आप अपनाइए, और समय पर उठिए और समय पर सोइए।
0: जी
1: जी, जो इरेगुलर स्लीप जो होता है ना, वह ओबेसिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कारण बनता है, और यह आपके हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन भी है।
0: जी,
1: समय पर सोना आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है, अगर आप समय पर सोते हैं, समय पर जगते हैं, तो ओबेसिटी का सारे हेल्थ प्रॉब्लम आप 90% मैनेज कर चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: और 10% आपके खान पान को आप मैनेज कर लीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी डॉक्टर राजेश,
1: इसीलिए तो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में जो लोग कहते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, उसका यही गोल है, उसका यही उद्देश्य है।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, जो उसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें, कुछ और भी सवाल हैं, जरूरी सवाल हैं जो आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक, रेडियो मैनेवर रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूं। हमारी बातें चल रही हैं अभी, हमारा आज का खास टॉपिक है योगा और ओबेसिटी का। ओबेसिटी के साथ बेली फैट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्या होगा अगर हम योगा जो है रेगुलर करते हैं? तो कुछ स्पेसिफिकली अगर कोई योगा ऐसा कोई आसन है जिससे हमारा जो बेली फैट है वो कम हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत लोग परेशान रहते हैं।
1: योग के जो आसनों में जो सबसे अच्छा आसन जो है, ताड़ासन कीजिए, त्रियक ताड़ासन कीजिए, कटी चक्रासन कीजिए और पादहस्तासन कीजिए। ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है
0: जी।
1: और इसके बाद सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको सारे जगह, नॉट ओनली द बेली फैट, आपके शोल्डर से भी जाएंगे, गर्दन से भी जाएंगे, चारों ओर आपका जो मैनेज होगा। एक्चुअली योग क्या करता है, वो जड़ पर काम करता है। रूट कॉज ऑफ योर ओबेसिटी इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी द प्रोफेशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, कोई ना कोई एक स्ट्रेस है जो ट्रिगर कर गया है
0: जी,
1: और योग उस पर काम करता है। तो इसलिए योग जो है, अगर आप ओबेसिटी को मैनेज करना चाहते हैं तो जीवन में योग अपनाइए।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, ओबेसिटी के की अगर हम बात कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए योगा करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आपने बताया कि आसन जो है, प्राणायाम जो है, उसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर ऑल्टरनेट भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या रोजाना योग करना है या फिर कोई ऐसा भी एक हफ्ते में दिन होना चाहिए जिसमें हम उसे स्किप कर सकें।
1: मैं रेडियो मानव रचना के श्रोतागण से पूछना चाहता हूँ, जब शरीर है तो आप रोज उसमें खाना देते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं, केयर करते हैं, ये तो बहुत जरूरी, आपको प्रतिदिन आपको करना है योग, कोई स्किप नहीं है इसके लिए।
0: बिल्कुल
1: रोज कीजिए। एक दिन भी थोड़ा समय कम कर दीजिए, लेकिन रोज कीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आ जाती हूं, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, आपसे सवाल जो है वो हमारी अभी पूछ रही हूं मैं आपसे, और बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या कुछ स्पेसिफिक योगा आसन है जो कि बिगनर्स के लिए आप रिकमेंड करेंगे, जो कि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं? और क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई जो है वो होती है, और अगर किसी के पास कोई योग गुरु नहीं है, कोई उनका कोई टीचर नहीं है, तो कैसे घर पर बिगनर्स के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे?
1: सबसे पहले प्रोग्राम ही मैं बता देता हूँ। ताड़ासन कीजिए, त्रियक ताड़ासन कीजिए, कटी चक्रासन कीजिए, इसके बाद पादहस्तासन कीजिए, भुजंग आसन कीजिए, नौका आसन कीजिए, और इसके कुछ हफ्ता के बाद आप शुरू कीजिए सूर्य नमस्कार। इसके बाद शवासन में लेट जाइए, फिर थोड़ा सा कपाल भाती कर लीजिए, थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम, और फिर आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। और इसके बाद समय जब भी मिले 10 मिनट के लिए शवासन जरूर कीजिए। जब भी ऑफिस से लौट करके आते हैं, आने के बाद, और घर में अगर आपको समय बीच में मिलता है, खास करके जो महिलाएं घर में रहती हैं, जब बच्चे उनके स्कूल चले जाते हैं, घर से मुक्त हो जाते हैं, तो 10 मिनट के लिए शवासन में लेट के डीप ब्रीदिंग का अभ्यास किए। और खान पान का हमेशा ख्याल रखिए। सुबह जब उठिए, एक और भी टिप्स मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह जब उठिए तो आप कुछ पहला भोजन जो आपके मुंह में आना चाहिए वो चबा करके खाना है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, फल हो गए। जब आप चबा के खाते तो आपकी लीवर जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है वह एक हेल्दी एंजाइम प्रोड्यूस करती है। सो आप कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, अभी आपने कहा कि जो पहला जो आपकी डाइट होनी चाहिए पहली, उसमें कुछ चबा के खाना है। योगा के साथ डाइट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ योगा करके वेट लॉस पॉसिबल है?

0: या फिर डाइट भी
1: नहीं, डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है जीवन में। डाइट आपको खाना है, भरपेट खाना है, लेकिन हेल्दी खाना है। अब कुछ लोग मैं देखता हूँ, खास करके सुबह उठता है वो छोले भटूरे पर टूट पड़े हैं, आप शुरुआत ही दिन में फ्राइड दे रहे, तो आपकी लीवर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, पूरे बॉडी आपके हो गए डिस्टर्ब हो गए। आप इसीलिए तो सुबह के समय में लोग फल खाने का ट्रेडिशन है टेबल पर, ड्राई फ्रूट्स खाने का है, और लाइट कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है, ओट्स मिल लीजिए, ये सब का मिलेट का आप उपयोग कीजिए ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, आपका वेट मैनेज हो जाएगा
0: बिल्कुल।
1: और मूंग की दाल जरूर खाइए, ग्रीन मूंग जो है ना
0: जी जी,
1: उसको सोक करने के बाद जिसको कहते हैं भिंगो करके रात में, और उसको जरूर आप सुबह में लीजिए। उसमें एक बहुत बड़ी गुण है, वो आपके फैट को वो बर्न करता है।
0: ओके,
1: वो आपके उसको लोग कहते हैं क्या कि ये बॉडी के सेल को भी खाता है जो, इसलिए मूंग, ग्रीन मूंग जो है ना वो बड़ा वरदान है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए।
0: जी डॉक्टर राजेश, अभी एक मैं छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूँ, जिसके बाद हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आ जाते हैं और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम बहुत सारी बातें करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, ओबेसिटी के साथ डायबिटीज, बीपी या जॉइंट पेन भी हो तो क्या योगा सेफ रहेगा करना?
1: देखिए, ओबेसिटी ही इन सारे प्रॉब्लम का जड़ है। डायबिटीज के लिए भी ओबेसिटी प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स से अगर आप वेट को मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो आप 90% विनर है। और 10% मैंने कह दिया है शुरू में कि खान पान का ख्याल कर लीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, नींबू पानी का सेवन ज्यादा कीजिए, जितने सारे स्टोरेज फूड हैं फ्रीज में जो रात के बचे हुए खाने से बचिए, बासी खाना नहीं खाना है, ये सारा सब आपको थोड़ा सा अपनाना होगा
0: जी,
1: और आप बिल्कुल हेल्दी होंगे
0: जी।
1: आप एक बार 40 डेज का तो चैलेंज करके देखिए कि हमें 40 डेज थोड़ा सा ही करना है, लेकिन रोज करना है योगा। मैं वॉक में भी जाना है हमें। खान पान का ख्याल रखिए और व्यवस्थित जीवन को अपनाइए, लाइफ स्टाइल पर को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, मॉनिटर कीजिए अपने लाइफ स्टाइल को, ये बहुत जरूरी है। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है नॉट ओनली ऑन द ओबेसिटी, द इंटायर हेल्थ।
0: डॉक्टर राजेश, बातें आपसे चल रही हैं, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी, प्राणायाम का ओबेसिटी मैनेजमेंट में क्या रोल है और क्या हर प्राणायाम ओवरवेट पर्सन को जो है वो करना उनके लिए सेफ है या ठीक है, क्या वो कर सकते हैं?
1: देखिए, प्राणायाम जो है ना, ब्रीदिंग टेक्निक जितनी है हमारे खास करके योगिक विजडम में, उसमें जो सबसे बढ़िया कपालभाति प्राणायाम जो है, यह आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म रेट को यह काफी हाई करता है, जिसकी जरूरत होती है, और आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज कराता है
0: जी,
1: और फैट को बर्न करने में मदद देता है। ज्यादा नहीं करना है, आराम से करना है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो 2000 राउंड किया, इतना नहीं करना है, 50-50 का 3-5 बार आप कर लीजिए, बहुत हो गया
0: जी।
1: और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम क्या करती है, आपके सिंपैथेटिक अराउजल और पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में संतुलन पैदा करती है, बनाती है, शरीर और मन के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कीजिए, और भ्रामरी प्राणायाम जो है आपके स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए और आपकी बॉडी के अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्रेन में ज्यादा उत्पादन करती है, तो ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है, और ये तो आराम से आप कर सकते हैं
0: जी। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये नॉर्मली अगर हम इंडियंस की बात करें तो सबसे पहले ना, जैसे ही हम कुछ स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि इसके रिजल्ट हमें कब तक मिलेंगे। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो आप उनके लिए क्या उनको आप कहना चाहेंगे कि ये जो रिजल्ट है उन्हें कब तक मिल जाएंगे?
1: और 45 डेज का आप चैलेंज लीजिए, वेट ना पिए, डाइट को मैनेज कीजिए, समय पर सोना, समय पर जगना है, और आप 45 डेज में देखेंगे मिरेकल हो गया आपकी बॉडी के साथ
0: जी। जी डॉक्टर राजेश, थैंक यू सो मच कि आप हमारे रेडियो स्टेशन आए संडे वाले दिन, मैं आपसे ढेर सारी हमने बातें करी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि क्या वो ख़ास संदेश है जो आप हमारे सभी जो लोग हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको देना चाहेंगे?
1: खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रतिदिन योग का अभ्यास कीजिए, और अपने लिए खुशियाँ बनाए रखिए, अपने परिवार में, अपने अगल बगल।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का एक छोटे से ब्रेक की। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ जुड़े हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं। डॉक्टर राजेश जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस कोच भी हैं। तो चलिए इसी के साथ आज संडे वाले दिन हमने बहुत सारी बातें तो करी हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनेव रेशम 107.8 FM। मेरे आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है तो आप बस रेडियो मानव रचना के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। और अगर कुछ खास संदेश हैं जो आप किसी को आप पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई फरमाइश है तो आप जल्दी से कर सकते हैं, या फिर हमारे एक्सपर्ट से ना कुछ जानना चाहते हैं तो अगले हफ्ते आपके पास ज़रूर आऊँगी और लेकर के जो भी सवाल हैं उनके जवाब। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: बोल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आज कौन लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम। ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एक और खास कंपनी आपके लिए लेकर के आए हैं, एक और नया प्रोसेस आपको समझ आएगा, एक और इंडस्ट्री के बारे में आप जानेंगे, बिकॉज दिस शो इज एन एजुकेशनल शो फॉर यू। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मधुमेह 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है। अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में? हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry we are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाई इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नज़र आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज़्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार, हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज। ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए। होता है ना ऐसे, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसी करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील।

वेलकम बैक। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले ही बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोर्ट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ़ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी वहाँ पर चाहिए। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जा करके आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज़ अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

बिना किसी तरीके कंपनी की बात करते हैं। सो कंपनी का नाम है ल्यूमिक, LUMIQ। 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ओके, एक बहुत ब्रॉडर जर्नी है इसकी, ठीक है। AIML जो है वो उसका 2007 में स्टार्ट हुआ था, बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स टॉक अबाउट द क्रीम पार्ट जो आपकी हेल्प कर सकता है। सो ल्यूमिक एक डाटा एंड AI लेयर के तौर पे आप इसको समझिए, बिहाइंड बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इंश्योरटेक में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस कंपनी इज अ क्रूशियल पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट AI एंड डाटा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हें पॉलिसीज के लिए पर्टिकुलर चीज़ें होती है, प्रोसेसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, अंडरराइटिंग होती है, क्लेम्स होता है, कस्टमर होता है, फ्रॉड डिटेक्शन होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन होता है, पर्सनलाइजेशन, पॉलिसी सर्विसिंग, AI पावर्ड डॉक्यूमेंटेशन, जनरेटिव AI एंड सो ऑन। सो दिस कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट। सो प्रॉब्लम इज दैट कि डाटा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सारा प्रोसेस एक कंपनी खुद से करे तो, बट प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर चीजों को बांट दिया जाए और हर प्रोसेस का डोमेन का एक एक्सपर्ट आपको मिल जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी इज डूइंग। तो ये है ल्यूमिक, जिसको आप समझ सकते हैं कि एक AI लेयर है और एक डेटा है जिसका ख्याल रखती है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे फर्दर इसके बारे में। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानी कामयाबी की। प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करी इस कंपनी ने। सो दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, इस कंपनी के फाउंडर हैं शोएब मोहम्मद। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बिजनेस डेटा डिस्कस करते हैं, ठीक है, और ये हर जगह पर आपको अलग वर्जन दिखाई देगा हर एक टीम में। क्या हो अगर सारी ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा जो है वो यूनिफाइड हो जाए एंड देन उसको इंटेलिजेंटली यूज किया जाए। मतलब बहुत ही ब्रॉड थॉट है ये, अभी अगर आप इसको देखेंगे। बट इसको नैरो डाउन करते करते करते करते फाइनली ल्यूमिक का जन्म हुआ। फाइनली ये कंपनी जो है वहां पर आती है और इस तमाम डेटा को प्रोसेस करती है, ठीक है। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो शायद आपकी और मेरी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगी, बट एज अ फाउंडर अगर आप चीजों को देखते हैं, एज अ पर्सन जिसको कुछ बिल्ड करना है अपना, अगर आप वैसे इस चीज को देखते हैं तो ये केस स्टडी आपके लिए बहुत हेल्प कर सकती है। बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली कंपनी की सिरदर्दी कम कर रहे हैं, डेटा को प्रोसेस करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास टन्स ऑफ डेटा है बट स्कैटर्ड है। ओके, ये कंपनी क्या करती है, ल्यूमिक, ये सारे डेटा को कनेक्ट करती है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है उसको बनाती है, स्मूथ बनाती है, ना कि वो स्कैटर्ड यहाँ वहाँ फैला रहे। ओके, AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, ठीक है, ये यहाँ पर इस पूरे डेटा को कंपाइल करके जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, अगर आप एक कंपनी हो, तो आपकी हेल्प करने वाला है बेसिस ऑन द डेटा जो यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम में आपके पास था। ये है कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील।

फील गुड फील लाइफ, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्मस्टाउन 107.8 एफएम के साथ। अब बात करेंगे कंपनी की यूएसपीज की, सो विच इज ल्यूमिक। तो कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी है डीप एफएसआई स्पेशलाइजेशन। तो देखिए, ल्यूमिक कोई जेनरिक एआई कंपनी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है जो हर एक इंडस्ट्री को सर्व करेगा। जैसे कि हम अमूमन जानते भी हैं, चैटबॉट्स हमारे पास होते हैं, चाहे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, तो हर एक चीज वहां पर आपको मिल जाती है, लाइक अ जेनरिक थिंग। बट क्योंकि अभी बिजनेस काफी आगे बढ़ चुका है, एआई काफी एडवांस हो चुका है, तो अब हम लोग आ गए हैं उस एक जोन में जहां पर हमें बहुत ही नैरो डाउन करके स्पेसिफिक जो है बात करनी चाहिए। सो यहां पर जो ये कंपनी है, ये फोकस करती है ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। कंपनी कहती है कि इनका प्लेटफॉर्म बना है अराउंड इंडस्ट्रीज सिस्टम्स, जहां पर डेटा एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट होता है, ठीक है। रेदर देन अ जेनरिक एआई, दे आर फोकसिंग ऑन डेटा बेसिस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए समझना कि हम अब अगर कुछ स्टार्ट करने का सोचे, अगर आज की डेट में आप बोलते हैं कि आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है जो एआई में डील करती है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग जो आपकी जेनरिक ना रहे, जो प्रॉपर मतलब जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज को सर्व करे, किसी एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के सर्व करे, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्टाग्राम पर जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई टूल बनाना है, तो इट बिकम्स अ स्पेसिफिक थिंग, इट इज नॉट अ जेनरिक थिंग एनीमोर। दैट्स हाउ थिंग्स आर ग्रोइंग, दैट्स हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये हमें डोमेन नॉलेज देता है अराउंड सर्टेन थिंग्स, जैसे कि इंश्योरेंस का डाटा, उस डोमेन की नॉलेज मिलेगी। रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट क्या है, इंश्योरेंस में IRDA है, एंड बैंकिंग सेक्टर में RBI है, टेलीकॉम में TRAI है, इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर ये तमाम जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो हमें मिलती है। अंडरराइटिंग का हमें पूरा प्रोसेस मिलता है, क्लेम्स मिलता है, रिस्क मिलता है, कस्टमर बिहेवियर को समझने का मिलता है। सो यहाँ पर AI सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, ये इस कंपनी ने अलग किया है, इसलिए ये कंपनी आउटशाइन कर पा रही है। आशा करता हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है इस कंपनी के बारे में, ल्यूमिक के बारे में, उतनी आप समझ पाए हैं। फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्ट्रेट ट्यून, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहे हैं पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मालवा 107.8 FM के साथ। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम आता है शोएब मोहम्मद, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। शोएब के पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है इन बिल्डिंग एंटरप्राइजेस, प्रोडक्ट्स एंड टेक बिजनेसेस। इनके बैकग्राउंड की अगर आप बात करेंगे तो मेजर जो इनका वर्क रहा है वो काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा है, लाइक गूगल है, सिस्को है, नासा है, यामाहा है। ठीक है, इनके अगर हम स्टडी की बात करें, NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग की, IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, उसके बाद वॉरविक बिजनेस स्कूल गए वो। बिफोर ल्यूमिक ही हैड ऑलरेडी फाउंडेड एंड सोल्ड अ टेक वेंचर जो सिंगापुर में काम करता था। ठीक है, US में भी काफी इन्होंने काम किया, कुछ और कंपनीज उन्होंने बिल्ड करी, तो अच्छे खासे अनुभवी एक एंटरप्रेन्योर आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, ही वॉज नॉट समवन हु सिंपली सॉ AI इज ट्रेंडिंग एंड देन स्टार्टेड अ कंपनी। उन्होंने पहले कई साल अपने गुजारे इस पर्टिकुलर डोमेन को समझने में, टेक को समझने में, डाटा को समझने में, इनकी प्रॉब्लम्स को समझने में, फिर उसके बाद इवेंचुअली ये कंपनी स्टार्ट हुई। दूसरा नाम, एक और को फाउंडर है यहाँ पर, मिस्टर वैभव डोबरियाल। He is a co-founder and CPO, Chief Product Officer of this company, जो majorly deal करते हैं product development में। He is an IIT Kanpur M.Tech and इनका experience जो रहा है वो academic research में, enterprise product development में रहा है। As per his profile, इन्होंने multi-million dollar products जो हैं वो बनाए हैं, उनमें deal किया है Europe, Middle East, Australia, Southeast Asia, USA। इनका भी experience काफी अच्छा रहा है। बॉटम लाइन दोनों का ही है, शोएब जो है वो लेके आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। वैभव लेके आते हैं टेक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इंप्लीमेंटेशंस। ऐसे करके इन दोनों ने एक टीम बनाई और एक कंपनी खड़ी करी एंड इट इज वर्किंग रियली गुड। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितना आपको बताया है उतना आप लोग समझ पाए हैं। तो ऐसे दोस्तों, कोई भी चीज जो है वो काम करती है जब अलग अलग अनुभव मिलते हैं, अलग अलग माइंडसेट्स मिलते हैं, दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट ल्यूमिक इज हाउ डिड द आइडिया इवॉल्व। देखिए, इवोल्यूशन को तीन स्टेजेस में हम लोग समझेंगे। पहला स्टेज है डेटा प्रॉब्लम। कंपनीज के पास डेटा था बट इफेक्टिवली उसको यूज नहीं कर सकते थे, रीजन बीइंग कि कोई स्ट्रीमलाइन नहीं था, स्कैटर्ड था डेटा। सेकंड, डेटा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, वो नहीं थे कंपनीज के पास। ल्यूमिक ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें सारे डेटा को यूनिफाई कर दिया, कंपाइल कर दिया और एंटरप्राइज डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। थर्ड, एआई पावर्ड डिसीजंस। नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि केवल डेटा कंपाइलेशन नहीं हुआ, उस डेटा के आधार पर जो आपके पास ना बल्क में इधर उधर डेटा था उसको इकट्ठा करके आपने जगह पर रख लिया, अब आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास पैसे थे बहुत सारे बट वो बिखरे हुए थे। कहीं पर आपने 100 रुपए रखे हुए हैं, कहीं पर आपने जो कॉइन्स हैं वो रखे हुए हैं, 200-300 रुपए के कॉइन्स हो सकते हैं वो, ठीक है, कहीं पर आपका चेक रखा हुआ है। अब आपको पता ही नहीं आपके पास पैसा कितना है, तो जब आप फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेंगे तो आप बहुत ही एक फॉगी सा वो होगा, या फिर आपके लिए वो स्ट्रेस होगा कि आपको वापस से सारा कंपाइल करके गिनना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ले पाएंगे मेरे पास पैसा है कितना। बट अगर एक प्लेटफॉर्म हो जो आपको कंपाइल करके बता दे आपके पास एग्जैक्टली कितना पैसा है, ये यहाँ पर रखा है, वो वहां पर रखा है, वो वहां पर रखा है, और फिर जब आपको कोई फैसला लेना है तो आप उसी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ लेंगे मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, और वो आपको बता दे एज पर योर फाइनेंशियल सिचुएशन दिस कुड बी डन। नाउ दिस इज वेरी वेग एंड लेमन एग्जाम्पल, बट अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द एनालॉजी कैसे ये काम करती है। तो ये AI पावर डिसीजन मेकिंग जो है वो इस कंपनी ने आपको दिया। तो एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, AI, जनरेटिव AI एंड AI एजेंट्स जो इस कंपनी के आप कह सकते हैं बहुत बड़ी एक USP बन के सामने आई, एंड दैट्स हाउ कंपनीज स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर ल्यूमिक। ये है जी ये कंपनी जिसने इतना खूबसूरत तरीके से ये काम किया। फिलहाल लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हैं रेडियो मार्गशटा 107.8 एफएम के साथ। शो को आगे बढ़ाते हैं यहां पर। लेट्स टॉक अबाउट द की ड्राइवर्स बिहाइंड लूमिंग। पहला तो है कि एक्सप्लोजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। बैंक्स और इंश्योरेंस जो थे उनके साथ ही प्रॉब्लम थी कि बहुत सारा पैसा उनका खर्च होता था डेटा को स्ट्रक्चर करने में। वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर आपको स्ट्रक्चर में भी करना है या उसको स्ट्रीमलाइन करना है अच्छे से, तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, आप बस स्कैटर्ड है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर जो एग्जिस्ट करती थी वो ये थी कि डिजिटली चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही थी लेकिन आपके पास डेटा नहीं होता है, बट स्कैटर्ड है, कंपाइलेशन नहीं है। तो ट्रेडिशनली जो चीज़ें थी उनको चेंज करके रीडिफाइन किया ल्यूमिक ने। थर्ड, AI अडॉप्शन। पूरी दुनिया में हमने देखा हर एक डोमेन में AI अडॉप्शन हुआ है, तो यहाँ पर वो कैसे पीछे रह सकता था। नेक्स्ट, नीड फॉर फास्टर डिसीजंस। इंश्योरेंस कंपनीज को चाहिए था भैया फास्टर डिसीजन, क्लेम्स जल्दी सेटल हो, अंडरराइटिंग जल्दी हो, कंट्रोल को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसके लिए अगेन डेटा कंपाइलेशन चाहिए जो इस कंपनी ने आपको करके दिया। फ्रॉड एंड रिस्क एनालिसिस। AI कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड कन्वेंशनल जो रूल्स थे जिनमें कह सकते हैं आपकी मैनुअल वर्क में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं, बट अगर कंपाइल करके सारी चीज़ों को पैटर्न्स को आप देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे, सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यू नो स्किप दैट पार्ट। उसके बाद पर्सनलाइजेशन। कस्टमर्स के डाटा के आधार पर उनके लिए पर्सनलाइज प्लान्स बनते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आई निकल के सामने। तो कंपनीज़ को ये लगा कि ठीक है, लेट्स ट्रीट योर कस्टमर्स दिस वे, कि उनको काफ़ी अच्छा लगे, पर्सनल टच मिले और कस्टमर्स भी खुश हुए कि हाँ उनकी नीड्स को समझ के चीज़ें बनाई जा रही है। एंड देन उसके बाद रेगुलेटरी जो प्रेशर्स थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर टैकल किए गए। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिलायबल, ट्रेसेबल एंड कंट्रोल डेटा चाहिए था जो इस कंपनी ने दिया। सो ये है जी हमारी आज की कंपनी ल्यूमिक। एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी नहीं है ये इंश्योरेंस कंपनी के पीछे का आप कह सकते हैं टेक का ब्रेन है, जहां पर आपको डेटा को कंपाइल करके दे रहे हैं। करोड़ों कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स, उनकी पॉलिसीज, क्लेम, सारा डेटा कंपाइल हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि पहले भी ये डेटा था, अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था, कंपनी ने यहां पर इसको कंपाइल कर दिया। तो ये कंपनी इंश्योरेंस नहीं बेचती है, जो कंपनीज इंश्योरेंस बेचती हैं, बनाती हैं, उनकी हेल्प करती है एक तरीके से बैकबोन बनके। दैट इज द थिंग। फिलहाल इसी नोट पर चलता हूं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा, केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी। इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। खैरियत सुनें, दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। वक्त हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहां होती हैं सेहत की बातें, और इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आए हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। हर हफ्ते एक हेल्थ एक्सपर्ट जो बताते हैं हेल्थ से जुड़ी अलग अलग प्रॉब्लम से बहुत सारी रिलेटेड बातें, उन क्वेश्चंस के आंसर्स और साथ ही कुछ खास एडवाइस। आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर शायद दादी नानी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आप कहेंगे आखिर ये बातें हैं क्या, तो ये है आपके प्यारे से बच्चे की क्यूटनेस और चबीनेस के बारे में बात। अब बच्चे होते हैं, जो बच्चे पतले होते हैं ना उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है ये थोड़ा वीक है या ये थोड़ी वीक है, लेकिन जो बच्चे थोड़े से मोटे होते हैं यानी चबी होते हैं उनके बारे में कहा जाता है ये बड़ा हेल्दी और बड़ा प्यारा बच्चा है। अब ये जो प्यारा और मोटे का डिफरेंस है ये क्या है, क्या ये वाकई आगे आने वाले टाइम में बच्चे को प्रॉब्लम्स दे सकता है या फिर ये सच में हेल्दी ही होता है? अब ऐसी चीजें कुछ जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट, पीडियाट्रिशियन, सीनियर कंसल्टेंट, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर अंजलि जैन। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
3: हेलो।
2: सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हम चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं, दादी नानी मम्मी इन सबका, खासतौर पर से फीमेल्स की बात मैं करूंगी, घर में जो होती हैं उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ा सा चबी होना चाहिए और चबी बच्चे क्यूट लगते हैं नो डाउट, लेकिन क्या ये चबी और पतले बच्चे दोनों में से हेल्दी बच्चा वही होता है जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है?
3: नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्दी बच्चा ही मोटा बच्चा ही हेल्दी हो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वेट किस वजह से है, मोर ऑफ मसल की वजह से, बोन्स की वजह से जो वेट होता है वो अच्छा वेट होता है। चबी बच्चे में तो अगर फैट है, फैट इज नॉट गुड। ओबेसिटी कभी भी हो सकती है, हमारे WHO में क्राइटेरियाज होते हैं, देयर आर स्टैंडर्ड चार्ट्स, बेसिकली वेट को हाइट के हिसाब से देखा जाता है। एक सर्टन हाइट और एज पे एक सर्टन वेट ठीक है, उसके ऊपर है तो उसे ओबेसिटी बोला जाता है।
2: ओके, यानी अगर जैसे बड़ों में होता है कि हाइट और वेट दोनों जो हैं वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए, वैसे बच्चों में भी देखा जाता है।
3: बच्चों में ग्रोइंग फेजेस भी आते हैं क्योंकि बच्चों में हाइट बढ़ रही होती है, तो सर्टन टाइम के लिए हो सकता है वेट थोड़ा ज्यादा है तो वो थोड़े चबी दिख रहे हैं, पर जैसे जब हाइट निकालने का टाइम आता है तो वेट कम हो जाता है, तो वो वीक नहीं हुए, तो अपनी नॉर्मल हाइट कैच कर रहे हैं
2: जी,
3: तो इसलिए उस समय वो ओबेस नहीं दिखेंगे
2: जी। जैसे हमने देखा है कि एक साल में जब बच्चा चलने लगता है तो उसका वेट ग्रेजुअली एकदम कम होने लगता है। आप देखें, हमने जनरली देखा है कि एक साल तक बच्चा थोड़ा क्यूट लगता है, चबी लगता है, प्यारा लगता है, फिर उसके बाद वो एकदम से पतला होने लगता है, तो क्या ये चलने की वजह से होता है?
3: क्योंकि अब उसकी बोन ग्रोथ का टाइम है, ठीक है, अब वो अपनी हाइट निकालेगा, तो जब हाइट निकालेगा तो ऑब्वियसली मोटापा नहीं, खाने जो अपनी कैलोरीज हमें मिल रही हैं वो मैं हाइट बढ़ाने में, अपना ब्रेन बढ़ाने में यूज कर रही हूँ, नॉट फैट इकट्ठा करने में।
2: सो यानी वो डिवाइड हो रहा है।
3: हाँ, वो इसलिए उस समय बच्चे लगते हैं अरे ये कमजोर हो रहे हैं।
2: हाँ, बिल्कुल। सो बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता होगा कि बच्चा जो है वो चलना सीख रहा है या दांत निकाल रहा है, इस वजह से वो पतला होता जा रहा है। जनरली वो हाइट भी बढ़ा रहा होता है और उसकी सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ लेटे रहने में नहीं जा रही है, जो 6 महीने की उम्र में जा रही थी, अब वो चलना सीख रहा है, खड़ा होना सीख रहा है, तो इस वजह से भी वो डिवाइड हो रही है। इसलिए बच्चा थोड़ा सा अगर वेट रिड्यूस कर रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है। अब बच्चा कब एक्चुअली में अलार्मिंग सिग्नल देता है कि उसका वेट अब बहुत ज़्यादा है और अब आपको समझ जाना चाहिए, ये बताएंगे आपको इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज़ वेल सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं आप ही के बच्चे की हेल्थ के बारे में, यानी बच्चों में बढ़ रहा मोटापा, मोटापे से होने वाली प्रॉब्लम्स, और क्या वाकई बच्चा जो थोड़ा सा पतला है वो कमजोर है। ऐसी कुछ चीजें अक्सर पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आपके घर में एक बच्चा आता है तो उसके साथ बहुत सारे सवाल भी आते हैं। 6 महीने 7 महीने का चबी क्यूट बच्चा सबको बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर ये बच्चा अपना वजन लगातार बढ़ाता जाए और वो वेट कम ना हो तो क्या ये अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है? ऐसी कुछ बातें जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर अंजलि जैन, SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। तो डॉक्टर, बच्चों की अब ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। हमने 6-7 महीने के बच्चे देखे हैं, बड़े क्यूट होते हैं और हर बच्चा क्यूट होता है, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा उनका वेट होता है, वो कह सकते हैं आप चबी होते हैं, और उसकी वजह से वो बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन क्या ये चबीनेस धीरे धीरे मोटापे की ओर जा सकती है? और अगर जा सकती है तो कैसे पेरेंट्स पहचाने कि अब बच्चा जो है वो एक्चुअली में मोटापे की तरफ चला गया है?
1: जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो वेट और हाइट दोनों ही बढ़ने चाहिए, एंड ये यूजली एक प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। इनके स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं WHO के, IAP के, जो जब भी आपकी पीडियाट्रिशियन विजिट्स होती हैं फॉर वैक्सीनेशन, तो यही सब देखा जाता है कि क्या वो प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। जब वेट हाइट की प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ने लगता है, देयर सर्टेन कट ऑफ्स, उनसे ज्यादा बढ़ते हैं, तो हमारा बच्चा दैट मीन्स वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। पेट पे फैट आने लगता है, फेस पे तो होता ही है, ओवरऑल बच्चा थोड़ा सुस्त भी होने लगता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहता। तो फिर ऐसे में जब वो परसेंटाइल्स क्रॉस करने लगता है, जैसे 95% के ऊपर जब जाता है ना वेट हाइट का कोरिलेशन, तो ओबेसिटी की तरफ जाता है।
0: जी, यानी आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे की हाइट जितनी है उतने हिसाब से एक वेट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 8-9 साल की उम्र है। जनरली हम आज से अगर 20 साल पहले के बच्चों में देखें, 20-25 साल पहले, वो 8-9 साल की उम्र में पतले हुआ करते थे, लेकिन आज थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। पिछले 5-6 सालों में बच्चों ने वेट को एकदम से बढ़ा हुआ देखा है। बच्चों के पेरेंट्स ने भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो 8-9 साल में, जब बच्चे पतले हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे, वो वाली चीज़ें छोड़ के अब बच्चे मोटे हो गए हैं। मोटे यानी वेट उनका ज़्यादा है। जो बच्चा 10 साल की उम्र के बच्चे की टी शर्ट पहनता था, वो अब 13-14 साल के बच्चे की साइज की टी शर्ट पहन रहा है। सो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं?
1: एग्जैक्टली, यूजली पहले, आजकल ना आप देखेंगे तो प्यूबर्टी भी बच्चों में जल्दी आने लग गई, ये ऑल बिकॉज ऑफ मोटापा है, ओबेसिटी है, हार्मोनल चेंजेस ही टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, जो शायद 13-14 साल में होने चाहिए थे जल्दी हो जाते हैं। उस समय बच्चा हाइट निकालता है, लेकिन क्योंकि फैट होने की वजह से उसके हार्मोन सारे डिस्टर्ब होते हैं, प्यूबर्टी ठीक से आती ही नहीं है। जैसे आजकल आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि लड़कियों को पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, लड़कों में मैच्योरिटी के साइंस बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, ये ऑल बिकॉज ऑफ ओबेसिटी है। एंड ओबेसिटी का मेन कारण आजकल इजिली अवेलेबल फास्ट फूड, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, कुछ पढ़ाई की वजह से, कुछ मोबाइल्स की वजह से, प्लस फास्ट फूड,
0: यानी जो खाना पीना,
1: नो फिजिकल एक्टिविटी, ऑलमोस्ट निल सी हो गई है बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सब ओबेसिटी को लीड करता है। ओबेसिटी लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो जो एक हमारे हार्मोन्स बढ़ने चाहिए होते हैं 12-13 साल की उम्र में, वो होता ही नहीं है, तो सब डिलेड है।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब, क्या हर ओवरवेट बच्चा जो होता है, सपोज एक बच्चे का वजन 25 किलो होना चाहिए, अब उसका 30-35 जा रहा है, तो क्या वो 20 की कैटेगरी में आने लगता है या उसका मसल वेट कुछ गिना जाएगा? कैसे हम पता लगाएं?
1: मैंने जैसे आपको बताया था, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वेट एंड हाइट, उस कोरिलेशन को बोलते हैं BMI। जब एक BMI सर्टन वैल्यूज के ऊपर जाता है ना, तो उसे ओबेसिटी बोलते हैं। जब तक वो उससे कम है तो वो ओवरवेट है। यूजली बच्चों में 18 के ऊपर का BMI को कंसिडर करते हैं कि वो ओबेसिटी है।
0: ओके, 18 से ज्यादा होगा BMI तो वो ओबेस कहलाएगा। बच्चों के खाने की अगर मैं बात करूं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके खाने में घर वाले घी बहुत डालते हैं। ये हमारे कल्चर में शुरू से मान्यता है कि अगर आप घी का इस्तेमाल अच्छे से करें, देसी घी, तो आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई डॉक्टर अंजलि आज के समय में ये फ़ायदा पहुंचा रहा है?
1: सबसे ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली घी डज नॉट लीड टू ओबेसिटी, घी इज अ गुड फैट।
0: ओके,
1: और हमें फैट की जरूरत है हमारी बॉडी को, ब्रेन का फ्यूल ही घी होता है, फैट होता है। फैट खाने की वजह से हम ओबेस नहीं हो रहे, हम मोटापा हो रहा है फास्ट फूड की वजह से। शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इनकी वजह से, प्लस हमारी नो फिजिकल एक्टिविटी, खा हम ज्यादा रहे हैं, कैलोरीज हम ज्यादा ले रहे हैं, बर्न हम कम कर रहे हैं, तो वो इकट्ठा हो रहा है मसल्स के नीचे, लिवर के अंदर.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज हम घी फैट खा रहे हैं बच्चों में, इट इज बिकॉज हम शुगर्स ज्यादा ले रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा खा रहे हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं.
0: यानी जो पहले बच्चे गलियों में और पार्क्स में खेलते थे वो चीजें अभी थोड़ी कम हो गई हैं. और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के बच्चे ही काफी जो है वो ओवरवेट की तरफ बढ़ जाते हैं, या हाई क्लास के बच्चे ओवरवेट की तरफ बढ़ जाते हैं. जो एक सिंपल सा सड़क पे खेलने वाला बच्चा होगा वो कभी मोटा नहीं होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऑलरेडी जो है वो कंज्यूम भी हो रही है. वो जितना खा रहा है, अगर वो कुछ भी खा रहा है, तो वो खेलते खेलते खेलते खेलते सब कुछ जो है वो बर्न हो रहा है.
1: प्रोसेस फूड्स हमारे उसमें इतने ज्यादा हो चुके कि शाम को स्नैक्स में चिप्स का पैकेट खुल रहा है,
0: नमकीन है, बिस्किट है,
1: पैकेट्स फूड, दिस ऑल आर अ रीजन फॉर ओबेसिटी.
0: तो प्रोसेस
1: घर का बना हुआ जिसमें घी हो इज नॉट अ कॉज फॉर ओबेसिटी.
0: यानी घी से कोई नुकसान नहीं है, बस आपको अगर घी खा भी रहे हैं तो थोड़ा सा, जैसे हम बचपन में घी खाते थे तो उसके बाद हम भागते दौड़ते भी थे.
1: ऑब्वियसली लिमिट में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट जो हम घी जितना खाते हैं यूजली एक रूटीन किचन में जितना यूज होता है वो ओके होता है. ओबेसिटी उसकी वजह से नहीं है. ओबेसिटी बेसिकली ये पैकेज्ड फूड्स की वजह से है.
0: जी, यानी ओबेसिटी जो है वो आपके चिप्स, नमकीन, बिस्किट, केक,
1: बर्गर, मोमोज
0: के पैकेट्स में है. बर्गर और मोमोज, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो अपने बच्चे को, ऑफ कोर्स कभी कभी तो देखिए सब कुछ चलता है, लेकिन अगर आप रेगुलर हैबिट है, बच्चे को आदत ही लग चुकी है, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है. बहुत सी बातें और भी जानने की कोशिश करेंगे बच्चों में बढ़ने वाले मोटापे को लेकर इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप हमारी इंटरनेट ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए, पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको डॉक्टर अंजलि के साथ हुई सारी बातें मिल जाएंगी.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने, और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी बच्चों में बढ़ रहे मोटापे के बारे में। इसके क्या नुकसान है, क्योंकि फायदे इसके खास है नहीं। बच्चा क्यूट लगता है वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो खोखला होता जा रहा है, क्योंकि आप बच्चे के वेट पर अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये वेट आगे जाकर प्रॉब्लम दे सकता है। बड़े लोग तो जिम चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सर्शन कराना आज के समय में कम हो गया है, क्योंकि ज्यादातर समय बच्चे लैपटॉप्स, फोन्स या टैबलेट्स पर बिता रहे हैं, जिसके कारण उनमें बढ़ता हुआ मोटापा एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ता चला जा रहा है। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि जैन, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर अंजलि, अब मैं आपसे ओबेसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान जानना चाहूंगी, क्योंकि एक लिमिट तक तो बच्चा क्यूट लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद वो बच्चा क्यूट नहीं लगता, वो बच्चा अलग सा लगने लग जाता है। पूरी क्लास में कहीं ना कहीं उसे बुलिंग का सामना भी करना पड़ता है, उसे बाकी चीज़ों में भी पीछे हो जाता है, जैसे वो ज़्यादा भाग नहीं पाता, स्कूल में

0: पेंस, कमर में दर्द, छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे आके बताते हैं कमर में दर्द हो रहा है जी, भाग नहीं सकते हैं, सांस फूल रहा है भागने पे। ये फिजिकल इफेक्ट्स हैं। मेंटल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने बताया ऐसे बच्चों को बुलिंग होता है, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस खराब होती है। और प्लस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी और जल्दी आना और लेट, दोनों ही चीज़ें देखी जा रही हैं आजकल। बहुत कॉमन हो गया है कि लड़कियों को पीरियड जल्दी आ जाते हैं, हाइट रुक जाती है। लड़कों में चीज़ें डिलेड हो रही है या जल्दी आ रही हैं, तो ये ओबेसिटी का कारण है। डायबिटीज़ होना, डायबिटीज़ इतनी कॉमन जो 30-40 साल में, उसका एक्चुअली जो कहते हैं शुरुआत तो यहीं से है, एडोलेसेंट एज की ओबेसिटी की वजह से है। हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो हो गए हैं वो इसीलिए है।
1: यानी फिजिकल एग्जर्शन ना करना मोटापा धीरे धीरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स ले आता है, क्योंकि जो आजकल हम खबरें देखते हैं सुनते हैं वो सारी कहीं ना कहीं डराने वाली होती हैं कि छोटा बच्चा है, अभी कम उम्र है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई है, लिवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मोटापे की वजह से।
0: ट्रू, फैटी लिवर, फैटी लिवर आजकल बहुत 17-18 साल के बच्चों में फैटी लिवर दिखने लग गया है, जिसमें कि ये होता था 40-50 साल की उम्र में, क्योंकि बच्चा शुरू से ही ओबीस था, तो 14-15 साल में उसके लिवर के अराउंड फैट इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। बड़े लोगों की बीमारियां आजकल हमको बच्चों में देखने लग गई हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी।
1: यानी सिर्फ मोटापे की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये सारी कहीं ना कहीं जानलेवा बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं आजकल, कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं, कोकोनट वाटर भी आजकल प्लास्टिक की बॉटल में पैक होकर आने लग गया है, लेकिन क्या ये भी उतना ही नुकसान पहुँचाते हैं जितना कोल्ड ड्रिंक्स नुकसान पहुंचा रही हैं, जितना पैकेज्ड जूस या ड्रिंक्स नुकसान पहुंचा रहे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। फ्रेश चीज़ ही अच्छी होती है।
1: प्रिजर्वेटिव्स हमें उनके पीछे जो लिखी होती है सारी लिस्ट, उसमें से पढ़ना चाहिए?
0: पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं। आप देखेंगे इनमें सोडियम कंटेंट बहुत होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये मोटापे का रीज़न होता है। मोनोसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सब जो चीज़ें लिखी होती हैं ये सब मोटापे का को इनवाइट करती हैं।
1: यानी अगर बच्चा सारा दिन कुछ नहीं खा रहा और एक चिप्स का पैकेट खा रहा है तो वो उतना ही नुकसान देगा कि आप बाहर से बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो उतने ही बराबर का नुकसान होगा वो 20 रुपये के 10 रुपये के चिप्स के पैकेट से।
0: बिल्कुल, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं सडनली शुगर स्पाइक्स करती हैं, तो आप बेसिकली डायबिटीज को इनवाइट कर रहे हो।
1: यानी कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं ये मोटापे को बढ़ा रही हैं और मोटापे के साथ साथ बाकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हैं। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और अगर फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं बच्चे में तो अब क्या सोल्यूशन है। ऐसी कुछ बातें और इन बातों के साथ ढेर सारे सोल्यूशन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और हम बात करें हैं आज डॉक्टर अंजलि जैन से, जो कि एक जानी मानी पीडियाट्रिशियन हैं, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, हमारे शो में आज गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में बढ़ रहा मोटापा कैसे कंट्रोल किया जाए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं. क्योंकि बच्चा क्यूट लगता है मोटे होने की वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन यही मोटापा अंदर ही अंदर उसकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो डॉक्टर अंजलि, मोटापे की जब हम बात करते हैं, ओबेसिटी की बात करते हैं, तो बच्चे ओबीस हैं, शायद उनका लाइफस्टाइल ठीक ना हो, वो तो एक रीजन है. क्या ये जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी ही थोड़ा ज्यादा वेट का है, ऐसा हो सकता है, और वही बढ़ता हुआ वेट आगे भी जाके दिक्कत दे सकता है? क्या जेनेटिक्स का इसमें कोई रोल है?
1: जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं कुछ कुछ ओबेसिटी के, बट दे आर वेरी रेयर, लाइक 1 in million किसी को जेनेटिक्स की वजह से होगा. मोर ऑफ जेनेटिक्स नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द फैमिली एनवायरनमेंट. जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, जो फैमिली का लिविंग स्टाइल है, फैमिली की ईटिंग हैबिट्स हैं, वो रीजंस होते हैं ओबेसिटी के. इसलिए घर में सारे ही ओबीज होते हैं. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, इट इज बिकॉज आपका फैमिली का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ही ओबेसिटी को प्रमोट करने वाला है.
0: यानी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो पेरेंट्स का लाइफस्टाइल है, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा. सो डॉक्टर साहब, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को ठीक करें? खासतौर पर मैं वर्किंग पेरेंट्स की बात करना चाहूंगी, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता कि हर चीज घर पे बना कर दें. दादी नानी हो घर में तो घर में नमकीन बनाई जा सकती है, घर में कभी हलवा बना के खिला दिया, शाम की भूख जो आपने कहा कि शाम को टी टाइम होता है तो बच्चों को अक्सर बिस्किट स्टिप्स दे दिए जाते हैं कि खा लो भूख लगी है. तो ऐसे में अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो क्या ऑप्शन निकालें, कैसे करें?
1: देखिए, पैकेट्स खोल के तो इज़ नॉट द सोल्यूशन. तो यही होता है कि वीकेंड्स पे आप अपने स्नैक्स रेडी कर सकते हैं. बेसिकली हमें ना अपनी सोच बदलनी है. ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है, ऐसे स्नैक्स जो हेल्दी हो वो बनाए जा सकते हैं. जैसे काले चने दे दिए, भुने हुए चने दे दिए, मूंगफली दे दी, पापड़ घर में बना के दिए, वाई चिप्स. आप राइस के पापड़ घर पे भी तो दे सकते हैं बना के, मखाने हैं. तो ये एक्चुअली सोच बदलनी है. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग लिटिल, बट यू हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंट. इसीलिए मैंने बताया कि ओबेसिटी एक्चुअली पूरे घर में होती है. जो गृहिणी होती है घर की, मदर, शी हैज टू थिंक डिफरेंटली कि हाउ कैन आई गिव न्यूट्रिशियस फूड एंड हाउ शुड आई ऑल्सो कंज्यूम. तो रेदर देन भाई घर पे आए हैं हम, चिप्स नहीं, भुजिया का पैकेट नहीं खोलकर, क्यों ना हम सिवाई बना दें, क्यों ना हम मखाने पहले से रेडी कर लें सैटरडे संडे को, जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है, आप डेली के लिए कुछ बना के रख लीजिए, भुने हुए चने.
0: यानी कुछ घर पे करना पड़ेगा,
1: मुरमुरे का नमकीन बना के रखिए.
0: तो थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा.
1: जब बच्चे को भूख लगे, रेदर देन एक पैकेट के लिए पैसे देना या पैकेट देना, आप डब्बे में से उसको वो पकड़ा दीजिए.
0: सो बिजी पेरेंट्स, सैटरडे संडे आपको थोड़ा सा अपने किचन में ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि आप ये चीज़ों के सोल्यूशन निकाल सकें. या नहीं तो अगर आपके पास कोई कुक हैं या हाउस हेल्प हैं तो उनकी भी मदद ले सकते हैं. बट हाँ, अगर आप वीकेंड पे एक घंटा भी इन चीज़ों के लिए निकालती हैं तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. डॉक्टर साहब, फ्रूट्स खाने का कोई नुकसान तो नहीं है बच्चों के?
1: फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस आर नॉट गुड.
0: ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो सुबह सुबह जूस निकाल के बच्चे को दे देते हैं.
1: एक्चुअली जूसेस में तो फाइबर चला ही गया, तो जो फ्रूट शुगर होती है वो सडनली आपकी शुगर स्पाइक करेगी. जूसेस आर नॉट गुड, फ्रूट इज गुड.
0: लेकिन हमने हमेशा देखा है कि फिल्मों में या टीवी में भी डाइनिंग टेबल पे एक बढ़िया सा जूस का जग रखा होता है और उस जूस को आराम से सब पीते हैं. अब वो सिर्फ देखिए दिखावे के लिए अच्छा लग रहा है, पर टेक्निकली अगर आज देखा जाए तो वो आज के समय में ठीक नहीं है. तो शुगर स्पाइक करता ही करता है. इसकी जगह अगर आप ऑरेंज जूस की जगह डायरेक्टली ऑरेंज खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा. डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, खासतौर पर से मैं जानना चाहूँगी आपके लिए, जो बच्चे होते हैं 10 से 15 साल तक के जो बच्चे, जिनकी हाइट भी बढ़ रही है, प्यूबर्टी भी आ रही है और मेंटल स्ट्रेस भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत है पढ़ाई में, तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए?
1: अच्छा, उसमें डाइट इज़ वन पार्ट, देन फिजिकल एक्टिविटी इज सेकेंड पार्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओबेसिटी को दूर रखने के लिए 8 hours ऑफ स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम अच्छा खा रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं तो दिस विल नॉट वर्क.
0: ओके,
1: तो इसलिए स्लीप अच्छी होनी चाहिए. हाँ, खाने में शुगरी ड्रिंक्स, रेडी टू ईट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एंड फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 5 डेज अ वीक तो होना ही चाहिए, 7 डेज है तो बहुत अच्छी बात है,
0: चाहे रनिंग हो चाहे साइकिलिंग,
1: कैसे भी 30 मिनट्स की जिसमें कि आपको पसीना आ रहा है,
0: यानी पसीना निकलना चाहिए, स्वेटिंग होनी,
1: कोई क्लास फिजिकल एक्टिविटी की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई स्पोर्ट्स कर लीजिए, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो साइकिलिंग करो, रनिंग करो,
0: यानी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। और डॉक्टर साहब कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें, जैसे अभी आपने चनों के बारे में बात करी कि चने और मखाने आप दे सकते हैं, कुछ ऐसी 5-6 चीजें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं।
1: हाई प्रोटीन चीजें होनी चाहिए, जैसे कि अपनी डाइट में कोशिश करके बच्चे की डाइट में किसी भी तरीके से प्रोटीन बढ़ाना है तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है चना, चना इन एनी फॉर्म, जैसे स्प्राउट्स कर दीजिए, नॉर्मल चना ना लेके किसी दिन स्प्राउट्स कर दीजिए और प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, नॉर्मल आटा ना लेके उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए तो उसी रोटी का प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, मैदा आइटम्स ना दीजिए, ठीक है, सैंडविचेस ना दे के थोड़ा सा इनोवेटिव होइए, दाल के चीले वगैरह खिलाइए, बेसिकली प्रोटीन हमको ज्यादा देना है बच्चे।
0: और जो आजकल मार्केट में बहुत सारी प्रोटीन ब्रेड्स मिलती हैं, लोफ मिलते हैं, क्या वो ठीक है?
1: पैकेट पढ़िए, हमेशा पैकेट के पीछे जो कंटेंट है ना पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी रिफाइंड मैदा है, रिफाइंड फ्लोर है और कितना प्रोटीन है।
0: यानी पैकेट को पढ़ के खरीदेगा अगली बार से, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर एक बार आपने पढ़ लिया और आपको पता चल गया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और वो चीजें हैं तो फिर आप उस चीज को कभी नहीं खरीदेंगे। इंस्टेड कि आप घर पे एक अच्छा सा पराठा बना के बच्चे को दे दें वो ज्यादा बेटर है, उसी का टैको, उसी का एक रोल बना के दे दें, बीच में सब्जियां भर दें, थोड़ा सा पनीर और चीज डाल दें तो वो भी ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड कि आप बाहर की चीज खरीद के बच्चे को दे रहे हैं।
1: एक बहुत छोटी सी हैबिट है कि जब मदर बेबी को हॉस्पिटल लेके आती है, कहीं भी घुमाने लेके जाते हो, तो आप लोग टिफिन में ना कुछ कैरी नहीं करते हो। यूजली क्या होता है, अच्छा उसे भूख लग रही है, रो रहा है, 10 रुपए का जो भी उस समय उस फैसिलिटी में अवेलेबल होता है कुरकुरे का पैकेट वो दिलाते हो। एक्चुअली हैबिट तो आप ही डाल रहे हो ना, क्यों नहीं उस पैकेट में आप उस एक टिफिन में आप एक पराठा बना के लेके आए हो, जब बच्चा रो रहा है या जब बच्चा भूखा है तो उसे वो खिलाओ, तो हैबिट तो यहीं से पढ़नी शुरू हुई ना।
0: बिल्कुल, तो यानी बच्चे की हैबिट को समझना जरूरी है और
1: अपनी हैबिट्स को ठीक करना जरूरी है, उसको हेल्दी अल्टरनेटिव्स आप जल्दी दो।
0: यानी बच्चे की भूख का टाइम सब पेरेंट्स को पता होता है कि हाँ आप 2 घंटे बाद उसको भूख लगेगी, तो पहले से ही थोड़ा सा कुछ लेकर चलें। वैसे आजकल काफी पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं पर फिर भी इन जनरल अगर देखा जाए तो रेशियो बहुत कम है।
1: हेल्दी अल्टरनेटिव्स हमेशा घर में रेडी रखने चाहिए, नमकीन वगैरह को बर्नियों में रखो कांच की ताकि बच्चे को दिखे और वो खाए।

0: जी, यानी कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाएं, टेस्टी चीज़ें बनाएं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं हेल्दी स्नैक्स की, उस पर फोकस कीजिए इंस्टेड के आप बाहर से बना हुआ कोई सामान खरीद रहे हैं अपने बच्चे के लिए। सो डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी बेसिक चीज़ें पेरेंट्स को आज बताई हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, उनके बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू।
0: फिलहाल प्रोग्राम ऑल इज़ वेल में बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया, महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा, जहां हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के एक बेहद प्रतिभाशाली और प्रॉमिसिंग यंग सितार मेस्ट्रो अधिराज चौधरी जी। अधिराज ने मात्र 6 वर्ष की आयु में सितार की साधना शुरू की और आज अपनी मेहनत, डेडिकेशन और एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रसिद्ध जयपुर सेनिया घराना से जुड़े हैं और 17 फ्रेट सितार की दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और संगीत तो मानो इन्हें विरासत में ही मिला है, क्योंकि ये महान सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी के ग्रैंडसन हैं और पंडित प्रतीक चौधरी जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विदुषी श्रीमती अनुपम महाजन जी, श्री नील रंजन मुखर्जी तथा इंटरनेशनली एक्लेम्ड सितार मेस्ट्रो एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी पंडित नीलाद्री कुमार जी के मार्गदर्शन में सितार की गहन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें CCRT स्कॉलरशिप, MS सुबुलक्ष्मणी फेलोशिप, कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां और G20 समिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुतियां और लगातार मिल रही सफलताएं इन्हें युवा पीढ़ी के सबसे प्रेरणादायक कलाकारों में शामिल करती हैं। और अपनी साधना, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण के साथ अधिराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अधिराज की इंस्पायरिंग म्यूजिकल जर्नी, रियाज और इनके गुरुओं से मिली सीख और इनके सपनों और संगीत के प्रति इनके जुनून के बारे में। अधिराज जी, सबसे पहले क्रिएटिव मंच में आपका हार्दिक स्वागत है और संगीत से आपका पहला परिचय कैसे हुआ इस बारे में हमें बताइए।
1: थैंक यू सो मच। संगीत से मेरा पहला परिचय ऐसा ही हुआ कि मैं जब बहुत ही छोटी उम्र से मैं संगीत के ही माहौल में पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी क्लासेस लेते थे, वह सितार वादक थे, तो फिर वही मैं सितार के माहौल में पला बड़ा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूजिक सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे इसीलिए म्यूजिक बहुत पसंद आने लग गया बचपन से। और उनके स्टूडेंट्स जब क्लास के लिए आते थे, मैं वहाँ भी बैठता था, मैं सबको सुनता था और मुझे बहुत मजा आता था। तो ऐसे ही करके मेरा संगीत से इंट्रोडक्शन हुआ था पहले।
0: लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने 6 वर्ष की आयु से मतलब सीखना शुरू किया, तो हमें तो 6 साल का बच्चा बहुत ही छोटा लगता है कि अभी उसे सही से ABCD वगैरह भी सीख रहा है। और सितार तो एक अपने आप में बहुत शायद मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो कैसे आपने उस चीज को किया, या दादाजी और फादर की डांट से मतलब क्या था उसके पीछे का आपका एक व्यू पॉइंट?
1: जी, मुझे जैसे कि बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद आता था छोटी वर्ष की आयु से, और इसीलिए तो मुझे म्यूजिक मेरे दादाजी और पिताजी मतलब सब ने सोचा कि मुझे भी म्यूजिक में कुछ करना सिखाना चाहिए। तो और वो सितार वादक थे तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया सितार से
0: जी।
1: और फिर मुझे सितार मैंने जैसे ही शुरू किया, मुझे सितार इतना पसंद आया कि मैं बस सितार ही करना चाहता था। बस मैंने यही सोचा कि मैं अब सितार ही बजाऊंगा। और मुझे तो मुझे उसी उम्र से सितार बहुत पसंद आने लग गया, तो मुझे उन्होंने फिर सिखाना शुरू करा। तो ऐसे ही करके मेरी रुचि बढ़ी म्यूजिक में और सितार की तरफ, इसलिए इस उम्र में मैंने सितार बजाना शुरू करा था।
0: जी जी जी। और अभी इस टाइम आपकी कितनी एज है?
1: जी, इस टाइम मैं 17 साल का हूँ।
0: वाओ, मतलब 6 से बहुत साल हो गए आपको स्टार्ट किया, आपका पूरा अभी तक की लाइफ सितार बजा रहे हैं आप और फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि आप अपने बहुत स्टेज शोज भी करते हैं हमने देखा। सो एक चीज बताइए, आपका कभी वोकल में भी ध्यान गया या इंस्ट्रूमेंट के प्रति ही रुचि थी?
1: जी, मुझे वोकल भी बहुत पसंद है, पर इंस्ट्रूमेंट के प्रति मेरी रुचि ज्यादा है क्योंकि मैंने सितार ही सीखा है, तो जो चीज मैंने सीखी है उसके प्रति मुझे सुनना, मुझे सभी चीजें सुननी बहुत अच्छी लगती है, पर सितार के लिए मेरी एक अलग ही डेडिकेशन है, मुझे सितार बहुत ज्यादा पसंद आता है।
0: अच्छा, तो जैसे हमने देखा है कि गिटार जब सीखते हैं तो उंगलियां काफी मतलब फिंगर पे लगती है और कहते हैं छिल भी जाता है, तो आपने सितार तो मुझे लगता है और टफ है, तो किस तरीके से आपको भी कभी ऐसा होता था कि बहुत प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स ऐसे छिल गई है या कुछ चोट लग गई हो?
1: जी, वैसे तो सितार अगर आपको बजाना है तो उंगलियां छिलनी है, आई थिंक कंपलसरी है, जरूरी
0: अच्छा।
1: है कि उंगली अगर आपकी उंगली छिलेगी नहीं तो सितार आप बजा नहीं सकते क्योंकि अच्छा। वो उंगलियों में कैलेसेस जो होते हैं, लाइंस जो होते हैं जो हम इसको बोलते हैं, वो सितार बजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुरुआत में तो किसी को भी दर्द होगा अगर बजाएंगे, जैसे आपने कहा गिटार जो लोग बजाते हैं उनकी उंगलियां इतनी छिलती है, लेकिन सितार में दो ही उंगली का प्रेशर पड़ता है और तार स्ट्रिंग ज्यादा हार्ड होता है बेसिकली, तो सितार में और ज्यादा डीप छिलती है उंगली, छिलती नहीं है बट डीप लाइन पड़ जाते हैं एंड शुरुआत में दर्द बहुत होता है। सो इसीलिए सितार काफी डिफिकल्ट है शुरू करना और बजाना भी बाद में, तो शुरुआत में भी काफी दर्द होता है बट इसको कंटिन्यू अगर करते जाओगे तो दर्द भी कम होता जाएगा और लाइन को मेंटेन करना पड़ता है, तो बजाने के लिए लाइन जरूरी है, कैलसेस जरूरी है उंगली में मेरे हिसाब जी,
0: मतलब आपके अकॉर्डिंग। और मेरे ख्याल से गुरुओं का भी यही मानना है
1: जी,
0: ना?
1: जी गुरुओं का भी यही मानना है
0: जी जी,
1: क्योंकि लाइंस के बिना सितार बजाना बहुत मुश्किल है और उसमें फिर दर्द भी बहुत होगा तो जी।
0: और अधीरा जैसे चलिए आपने तो 6 वर्ष की आयु से सितार हाथ में लिया आपने और आपके दादाजी थे आपके गुरु रहे, आपके पिताजी आपके गुरु रहे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जनरल जैसे कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहे अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहे तो क्या एज होनी चाहिए, मतलब आपके तो घर का माहौल चलिए हम कह सकते हैं कि वही था बचपन से तो, बट अगर किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है तो क्या 6 वर्ष में पॉसिबल है?
1: जी वैसे तो सीखने की कोई एज नहीं है
0: जी,
1: आप जब चाहो जिस एज में चाहो आप सब सीख सकते हो, अगर डेडिकेशन है तो सब पॉसिबल है, पर अगर एक स्टार्टिंग में अगर एक कम वर्ष की आयु से आप सीखते हो और अगर आपके घर में म्यूजिक का माहौल है तो एक एडवांटेज मिल जाता है पहले से ही कि आप अच्छे से सीख पाते हो बचपन से, पर मेरे हिसाब से सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए
0: जी जी जी, जी। बिल्कुल, मतलब कोई एज नहीं है आपके हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सीखी हुई चीज बहुत अच्छे से हमें याद रहेगी इंस्टेड ऑफ कि हम अगर 10th 11th 12th की एज में सीखे तो, है ना?
1: यस।
0: ओके, तो संगीत के क्षेत्र में आपके दादाजी और पिताजी दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं हमें पता है, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अनुभव कैसा है आपका?
1: जी तो अभी अभी तो मेरी एज उतनी ज़्यादा है नहीं कि मुझे अच्छे से अनुभव हुआ हो और मुझे ज़्यादा म्यूज़िक में मैंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी तक जो मैंने अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने की कोशिश रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही अपने ट्रेडिशन को ले जाते रहूँ और काफ़ी बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करूँ, अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊँ और अपने दादाजी और पिताजी का नाम रोशन करूँ आगे जाके
0: जी।
1: तो अभी तक मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और मैं आगे जाके और अच्छा करना चाहता हूँ
0: जी अधिराज, और हमारे तो यही विशेष है कि आगे जाकर आप और भी सक्सेसफुल रहें। सो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अभी तक अधिराज हमने जाना कि आपने 6 वर्ष की आयु से सितार सीखना शुरू किया। आपके घर का माहौल था बहुत ही अच्छा, जिसके प्रति आपने अपना सितार बजाने की क्रिया को जारी रखा। अब हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपका घराना है जयपुर सेनिया घराना और गुरु शिष्य परंपरा, इन दो चीज़ों के बारे में हमें बताइए कि घराने एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जनरल जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता कि घराने क्या होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए।
1: तो घराने बेसिकली होते हैं स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशन होता है, जो लोग ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो घराने के लोग ही करते हैं। तो एक घराना बेसिकली एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक हो गया
0: जी।
1: जैसे कि बहुत अकेडमिक्स में बहुत स्कूल, जैसे आपने पढ़े होंगे बहुत सब्जेक्ट्स में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं साइकोलॉजी में, जैसे वैसे ही घराने भी स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक है। और हर घराने का अलग स्टाइल है म्यूज़िक अप्रोच करने का। कुछ घराने इंस्ट्रूमेंटल घराने होते हैं, सबसे पहले घराने वोकल घराने होते थे, उससे काफ़ी और घराने आए जो इंस्ट्रूमेंटल के घराने भी बने हैं। तो ऐसे ही कर करके बहुत घराने डेवलप हुए हैं और सबका स्टाइल अलग होता है और यूनिक होता है। वैसा ही हमारा घराना है जयपुर सेनिया घराना। तो हमारा घराना एक इंस्ट्रूमेंटल घराना है। तो उसका यूनिक स्टाइल ये है कि हमारे घराने में 17 पर्दे का सितार बजता है
0: जी,
1: 17 फेटेड सितार, और किसी घराने में नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारे घराने का यही यूनिक स्टाइल है 17 फेटेड सितार का, जो जनरेशन से पास होते आया है
0: जी।
1: हमारा घराना मसीद सेन जी से आता है, उस टाइम से लेके अभी तक ये जनरेशन में हमारा ट्रेडिशन पास होता गया है। तो ये हमारे घराने की खासियत है। और जी गुरु शिष्य परंपरा, उसमें जैसे मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे दादाजी और पिताजी से सीखने का मौका मिला, मेरे घर में ही म्यूज़िक का माहौल था, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट उस लिए। तो मैंने उनसे सीखा घर पे, तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं मानता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा म्यूज़िक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के साथ रहना भी पड़ेगा। उनके साथ रहने के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है
0: जी।
1: म्यूज़िक के अलावा भी काफ़ी आप चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, और म्यूज़िक भी आपका काफ़ी अच्छा होता है, आप जानते हैं चीज़ों को। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूज़िक में मेरे लिए
0: जी। तो आपके जीवन में आपके गुरुओं की सबसे बड़ी सीख क्या है
1: जी? मेरे लिए मेरे गुरुओं की सबसे बड़ी सीख है सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और डिवोशन। म्यूज़िक में सिंसियर रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है और ऑनेस्ट रहना है खुद से। कभी ऑनेस्ट ऑफकोर्स, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
0: बिल्कुल।
1: आपको अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा म्यूज़िक अगर आपको करना है सीरियसली तो। और डिवोशन ऑफकोर्स, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आपको उस फील्ड में अपने आप को पूरा डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो जी यही है,
0: मतलब तन मन धन से अपनी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रियाज भी करना है और एक सच्चाई के साथ
1: एंजॉय भी करना है, म्यूजिक को सुनना भी है।
0: हाँ, कहीं वो प्रेशर लेकर नहीं करना।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: म्यूजिक तो ऐसी चीज ही नहीं है कि प्रेशर लेकर किया जाए। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं
1: जी? वैसे मेरा फिक्स तो नहीं है। जब मुझे, अभी मैंने 12th ख़त्म करा है।
0: अच्छा,
1: तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब रियाज कर लेता। मैं रोज़ रियाज करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जी, बट कोशिश करता हूँ कि मैं और आगे अपने टाइम को बढ़ाऊँ रियाज में और मेहनत करूँ। तो जी यही मेरी कोशिश है
0: जी। तो आपने 12th में क्या स्ट्रीम थी आपके पास?
1: जी 12th में मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी।
0: ओके, तो साथ में अपना प्रैक्टिस का समय निकाल पाते थे अपने लिए स्कूल के साथ साथ?
1: जी जी, मैं निकाल पाता
0: जैसे बोर्ड्स के एग्जाम है तो एक अलग प्रेशर होता है कि मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए।
1: वो तो होता है।
0: हाँ, तो उसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि आप कितना समय दे पाते थे अपनी प्रैक्टिस को, रियाज को?
1: उसी के, मैं तब शाम के आज में रियाज करा करता था, 7 बजे इस टाइम के अराउंड रियाज करता था
0: जी।
1: तो इस टाइम पे मैं कोशिश करता था रोज 1-1.5 घंटा निकाल दो रियाज के लिए। तो कोशिश होती थी, कभी कभी नहीं हो पाता था, बट मेरी कोशिश तो थी कि मैं रोज रियाज करूँ फिर भी
0: जी। जी जी, वैसे कोई भी अगर चीज़ है तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो वोकल है, डांस है या इंस्ट्रूमेंटल है, तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो जैसे सितार को ही आपने अपना वाद्य, मेन वाद्य जो चुना है, तो आपको कभी ऐसा ही लगा कि सितार की जगह कुछ और मुझे इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए था? कभी वो चीज़ मन में नहीं आई आपके?
1: नहीं, ऐसी चीज़ मेरे मन में कभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मैंने जब सितार सीखना शुरू करा था, सितार काफ़ी पसंद था, और अब भी मुझे तब से यही लगता आया है कि मैंने सितार को चूज़ करके काफ़ी अच्छी चीज़ करी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर ने मुझे सितार के बारे में बहुत सिखाया, सितार मुझे सिखाया उन्होंने, तो तब से लेके और हमेशा मुझे यही लगता रहेगा कि सितार मेरे लिए बेस्ट है। मुझे बाकी और इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत मन है, पर सितार ही मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा, क्योंकि सितार की टोन बहुत पसंद आती है और सितार मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, हमें भी मतलब सुनने में बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ओके, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है धीराज के आपको थकान है या आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब करना चाहते हैं प्रैक्टिस बट एक होता है ना कि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, कभी होता है ऐसा या कभी भी नहीं होता?
1: वैसे ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं सितार बजाता हूँ, जब मैं रियाज करने जाता हूँ, तो इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी, क्योंकि पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थकान हो, दिन की थकान हो, काम कुछ भी हो जाए, जैसे स्कूल की थकान हुई करती थी पहले, तो कुछ भी दिन में हो जाए, तो सितार जब मैं बजाने बैठता था और जब मैं अब भी बजाने बैठता हूँ, इट फील्स लाइक थेरेपी फॉर मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बजा के
0: जी।
1: और उसमें तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोटिवेशन नहीं आ रही बजाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है
0: जी।
1: उल्टा मुझे काफी अच्छा लगता है बजाने के बाद, तो जी यही
0: मतलब एक फ्रेशनेस आती है,
1: फ्रेशनेस आ जाती है
0: जी जी जी। बिल्कुल। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अधिराज, आपने आपकी जो उपलब्धियां हैं हमने बहुत सारी देखी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। आपने देश के कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो कौन सा मंच आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
1: जी, मेरे दिल के सबसे करीब है यूमैक फेस्टिवल। जब भी होता है मुझे उसमें बजाने का मौका मिलता है, तो वह इंस्टीट्यूशन मेरे दादाजी का है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पहले, तो यूमैक फेस्टिवल में मुझे बजाने का जब भी मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वह मंच मेरे दिमाग मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: जी। और यहाँ आपने अपने दादाजी

0: रहते थे, वो कहते थे और मेहनत करनी है हर बार में, ताकि ताकि ताकि वो और मेहनत कर सके स्टूडेंट्स। बट अंदर ही अंदर जब भी उनके स्टूडेंट्स अच्छा करते थे उनको भी अच्छा महसूस होता था, बट वो बताते नहीं थे। पर मेरे साथ मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो
1: जी, जी,
0: मुझे
1: जी।
0: बहुत प्यार से सिखाते थे और मैंने ज़्यादा उन्हीं से सीखा है, अपने पिताजी से भी सीखा है पर मैंने दादाजी से ज़्यादा सीखा है
1: जी।
0: और मेरे पिताजी भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाते थे। पिताजी का स्टाइल बहुत यूनिक था, उनका लयकारियों पे ज़्यादा ध्यान था, लयकारी और उनकी स्पेशलिटी थी लयकारी स्पीड, और उनका अलग ही स्टाइल था, उनका बहुत यूनिक स्टाइल था मेरे पिताजी का
1: जी, जी, जी।
0: और उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें सिखाई, तो जी सब ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे सबसे सीखने का मौका मिला
1: जी। लिसनर्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अधिराज से, उनके दादाजी और उनके पिताजी के बारे में, मैं आपको बता दूं पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी अधिराज जी के दादाजी हैं और प्रतीक चौधरी जी इनके पिताजी, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अधिराज को उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, उनसे इतनी चीज़ें सीखने का मौका मिला। अधिराज, आई थिंक आप बहुत ही लकी मैं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर शायद वो ना होते तो 6 साल की वर्ष में बच्चा क्या करता है कुछ हमें पता ही नहीं होता।
0: मैं आज जो हूँ, मतलब मैंने सितार की फील्ड में उन्हीं की वजह से आया।
1: जी जी जी बिल्कुल। तो अभी हमने आपके जो उपलब्धियों की बात की, अब एक है G20 समिट, तो इसमें किस तरीके से आप पहुंचे यहाँ पर, इसके बारे में बताइए हमें।
0: G20 समिट में मुझे इनविटेशन, जो वो स्टूडेंट्स को या म्यूजिशियंस को इनवाइट करते हैं, तो मुझे भी ऐसे इनवाइट करा था जी SNA के थ्रू, कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं G20 समिट में परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड आई फील दैट आई एम वेरी लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे G20 समिट में परफॉर्म करने का मौका मिला। एंड जी,
1: और आई थिंक वो बहुत ही बड़ा स्टेज,
0: बहुत बड़ा स्टेज था, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स डिनर पे हमको परफॉर्म करने का मौका मिला
1: जी।
0: और बहुत लोगों से मिला भी मैं, देश के अलग अलग जगह से लोग आए थे वहाँ पे, पूरे इंडिया के लोग थे, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रेयर रेयर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अच्छा था
1: जी। और इतनी कम उम्र में आपको एक इतना बड़ा स्टेज मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है जी। जी अधिराज, जहां हमने आपकी उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथ ही आपकी एक दो उपलब्धियां और बहुत ही अच्छी है, जैसे की CCRT स्कॉलरशिप और MS सुबुलक्ष्मिनी फेलोशिप, ये दोनों मिलने के बाद आप कैसा आपने महसूस किया और क्या है इसके बारे में थोड़ा हमें एग्जैक्टली बताइए
0: जी। जब मुझे स्कॉलरशिप और फेलोशिप अवार्ड मिला, तो फिर मुझे बहुत ऑनर्ड और गर्व फील हुआ कि एंड आई फेल्ट वेरी लकी टू गेट दीज अवार्ड्स। एंड CCRT में जब मेरा नाम रजिस्टर हुआ, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था CCRT के बारे में, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 2019 में था आई थिंक CCRT। एंड CCRT इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यंग आर्टिस्ट को मौका देती है परफॉर्म करने के लिए। सो वो हर साल या वो टाइम टू टाइम में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहाँ पे वो यंग आर्टिस्ट को बुलाते हैं और साथ में परफॉर्म करवाते हैं, और म्यूजिशियन वहाँ पे सब कुछ होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है और भी चीजें होती है, थिएटर भी होता है।
1: अच्छा।
0: और वो बहुत एक्सपोजर भी देते हैं सब यंग आर्टिस्ट को, और लोगों से मिल भी सकते हैं सब आर्टिस्ट,
1: मतलब यंग आर्टिस्ट के लिए बेसिकली ये है
0: जी।
1: Nice, very nice.
0: मुझे फेलोशिप मिला था, उसके लिए आई एम वेरी ऑनर्ड, बिकॉज फेलोशिप हर साल 50 स्टूडेंट्स को मिलता है, 50 म्यूजिक स्टूडेंट्स या म्यूजिशियंस को मिलता है फेलोशिप अवार्ड। और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ पे बहुत इंडिया के बहुत बहुत जगहों से लोगों से मिलने का मौका मिलता है जी।
1: नाइस, आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की, हम आशा करते हैं ऐसे ही आप और नाम रोशन करिए। सो अब हम बात करते हैं अधिराज, युवा पीढ़ी और शास्त्रीय संगीत, तो आप क्या मानते हैं कि युवाओं को अगर शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा
0: जी। युवाओं को शास्त्रीय संगीत की ओर अगर आकर्षित करना है, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत गहरा है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर जैसे कि अगर इंटरेस्ट आपका बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में है, तो शुरुआत में आपको अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा सुनना पड़ेगा अगर आपको आकर्षित होना है तो
1: जी।
0: और शास्त्रीय संगीत, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत

0: लाइक इज एंडलेस, चाहे किसी भी फॉर्म में हो. तो आकर्षित अगर करना है तो आपको सुनना पड़ेगा पहले अच्छे से.
1: अधिराज आपकी बातें भी ना बहुत गहरी हैं, उम्र आपकी इतनी छोटी है लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका ये इंटरव्यू सुन के. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दे रहा है?
0: जी ज़रूर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान मिल रही है. क्योंकि पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ज़्यादा लोग यंग जनरेशन जो थी वो शास्त्रीय संगीत को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी और म्यूजिशियंस को एक्सपोजर नहीं मिलता था. अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत म्यूजिशियंस को एक्सपोजर भी मिल रहा है और सब शास्त्रीय संगीत को सुन भी पा रहे हैं, लोगों तक संगीत पहुंच पा रहा है.
1: जी.
0: तो जी सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत और ज्यादा लोगों तक
1: पहचान मिल रही है और लोग शायद सुन भी रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल,
0: और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं लोग.
1: जी. सो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे अधिराज चौधरी जी के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

0: रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिराज जी, और अधिराज एक बहुत ही अमेजिंग सितार प्लेयर हैं। सो अधिराज, अगर आप एक सितार प्लेयर ना होते तो आप क्या होते?
1: जी वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता तो क्या होता। अच्छा। पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं आगे एकेडमिक्स ही परस्यू करता अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता।
0: जी जी,
1: मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है।
0: अच्छा।
1: शायद वो परस्यू करता।
0: जी, और सितार के अलावा आपकी और क्या हॉबीज है? जैसे अभी तो जो भी आपका फ्री टाइम होता होगा आप सब अपना रियाज में ही देते होंगे, बट उसके अलावा क्या और हॉबीज है वो हम जानना चाहेंगे।
1: जी बाकी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो अच्छा। मुझे स्पोर्ट्स देखना भी बहुत पसंद है।
0: तो स्पोर्ट्स में आप क्या खेलना पसंद करते हैं?
1: मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है।
0: जी
1: जी,
0: नाइस। और अधिराज, एक लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो यंग पीढ़ी के लोग सितार सीखना चाहते हैं या संगीत को अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: जी उनके लिए मैं वैसे मैं संदेश देने के लिए मेरी उम्र काफ़ी छोटी है, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सितार सीखना है यंग पीढ़ी को, तो फिर आपको पहले एक आप किसी भी गुरु के पास जाइए, क्योंकि आप खुद से सीखने की कोशिश मत करिए।
0: जी,
1: क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी, तो आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए और उसके बाद आपको जो भी गुरु जी बताए आपको उसमें अपना ध्यान से आपको उसमें ट्रेन करना चाहिए और अपने टेक्निक्स सही करने चाहिए, और आपको सुनना चाहिए म्यूजिक अच्छे से। सुनना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: बजाने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। तो जी आप अगर म्यूजिक सुनेंगे ज्यादा तो आपको और आइडियाज आएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा।
0: जी आई होप जो लोग सुन रहे हैं और म्यूजिक में अपना करियर चुनना चाहते हैं उन्हें अधिराज की ये जो उन्होंने सजेस्ट किया है उसे फॉलो जरूर करेंगे। सो अधिराज, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी?
1: जी जी।
0: ओके, सुबह का राग या शाम का राग?
1: वैसे मुझे सारे राग पसंद है, चाहे सुबह के हो कि शाम के हो, बट मैं शाम को रियाज ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरा शाम का राग है।
0: जी, दादाजी पिताजी या गुरुजी की डांट सबसे ज्यादा किसकी पड़ी है डांट आपको?
1: दादाजी की।
0: अच्छा, मंच पर जाने से पहले एक आदत?
1: मैं मंच पर जाने से पहले मैं उस दिन रियाज नहीं करता, उस दिन मुझे फ्रेश रहना होता है कि सीधा जाके स्टेज पे ही या उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं, पर उस दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ।
0: वाओ, पसंदीदा कलाकार कौन है आपके?
1: जी मेरे दादाजी।
0: जी
1: मुझे बहुत कलाकार पसंद है पर मेरे दादाजी मेरे फेवरेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक शब्द में संगीत को अगर डिफाइन करेंगे किस तरीके से?
1: डेडिकेशन।
0: वाओ, तो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जाते जाते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके क्या आगे गोल्स हैं, क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से आप करेंगे उनको?
1: जी आगे तो अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स तो अभी ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है, पर मुझे बस यही है मेरे दिमाग में कि मुझे अपने घराने का ट्रेडिशन आगे लेके जाना है। मुझे आगे सितार परस्यू करना है और आगे अपने घराने को लेके जाना है और बहुत मेहनत करनी है, बस यही है मेरा गोल।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपकी एक सोच, और आप बहुत ही अच्छे आपने जो हमारे लिसनर्स को आज सीख दी डेफिनेटली वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। और इतनी छोटी उम्र, सबसे बड़ी बात इतनी छोटी उम्र में इतना ठहराव, दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे स्टूडियो में। तो सो थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ, और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। हमारे शो होता तो बहुत खास है, हर बार हमारे साथ एक खास मेहमान होते हैं जिनके साथ हम ढेर सारी बातें डिस्कस करते हैं। वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की जो हम बात कर रहे हैं उसको एज अ स्किल हम लोग बता पाएं, समझा पाएं, सिखा पाएं, ये हमारा एक टॉपिक होता है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अक्षय कक्कड़। अक्षय जो है, मैं पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। मायरा फिल्मों करके प्रोडक्शन हाउस है इनका, वो ये रन करते हैं, एंड ही इज बीन अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस फॉर आई गेस मोर देन अ डेकेड।

0: नाउ ठीक है, जितना मैं इनको जानता हूँ, एक अच्छा खासा अरसा इन्होंने गुजारा है, प्री वेडिंग से लेकर के म्यूजिक वीडियोस से लेकर के बहुत सारी और स्किट्स हैं, एड्स हैं, मूवीज हैं, इन सबको इन्होंने बनाया है, पूरा प्रोसेस देखा है। तो आज के शो में अक्षय हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में बता रहे होंगे। तो मोटी मोटी बात इतनी सी है कि आज का शो जब तक खत्म होगा तब तक आप प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे, जो रफ स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे अपने शो की, और सबसे पहले स्वागत करेंगे अक्षय का। सो हाय अक्षय, आपका स्वागत है हमारे शो में।
1: थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आपने मुझे इतना काबिल समझा उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दैट वाज अ वेरी हम्बल इंट्रोडक्शन ऑफ मी, एंड एज यू हैव ऑलरेडी सेड दैट आई एम वर्किंग फ्रॉम मोर देन अ डिकेड, दैट इज अ वेरी ट्रू, एंड आई स्टार्टेड अर्ली इन लाइक 2013 एंड सो, तो तब से हम वीडियोस बनाते आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस बनाते आ रहे हैं, एक्सल्स बनाते आ रहे हैं, और जितने भी आजकल जैसे पहले हमारा फॉर्मेट चलते थे 16:9 और अब पूरा इंस्टाग्राम की वजह से 9:16 हो गया, तो अब वो भी हम कर रहे हैं। एंड या
0: सो वंडरफुल विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ के मैं कह सकता हूँ मास्टर हैं, एक दशक से ज़्यादा आपने वक्त उसको दे दिया है, इतने सारे चेंजेस आपने देखे हैं, ट्रेंड्स को बदलते देखा है, क्लाइंट्स को बदलते देखा है, लोगों की डिमांड्स को चेंज होते हुए देखा है। जैसा आपने अभी मैंशन किया कि 16:9 से लेकर 9:16 का जो रेशो आया है, वो पूरा का पूरा 180 डिग्री जो शिफ्ट हुआ है, वो भी आपने उस बदलाव को देखा है। सबसे पहले अक्षय, मैं बहुत बेसिक्स की बात करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्शन हाउस, एग्जैक्टली होता क्या है एक प्रोडक्शन हाउस, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं प्रोडक्शन हाउस के, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कवर्ड होते हैं, पहले हमें थोड़ा सा वो क्लियर करिए।
1: सो प्रोडक्शन हाउस इज बेसिकली अ मीडियोकर ऑफ अ क्लाइंट एंड द व्यूअर्स। लेट्स सपोज इफ यू आर अ क्लाइंट, यू वांट टू मेक अ वीडियो, यू वांट टू showcase particular product or you want to make a music video, so आपको वो production करने के लिए किस चीज़ की requirement लगेगी, वो सारा काम जो होता है वो एक production house का होता है। Let's suppose we are making a music video and we are looking for artists, we are looking for locations, we are looking for catering persons, we are looking for light vendors, we are looking for camera vendors, and the क्लाइंट इज ओनली लुकिंग एट कि उसको एक म्यूजिक वीडियो चाहिए, बट पीछे इतने सारे लोग होते हैं जिसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता, एंड ऑल व्हाट क्लाइंट नो इज कि उसके व्यूअरशिप कौन है। तो जितना भी बीच का काम होता है, जितना भी व्यूअरशिप में अच्छा दिखने वाला काम होता है कि भाई हमारे व्यूअर्स को ये चीज पसंद आएगी, ये सारी चीजें जानना, ये उसके जानने के बाद उसको उस तरीके से बनाना प्रोडक्शन हाउस का काम होता है।
0: सो बेसिकली आपका काम होता है कि क्लाइंट जो चीजें मांग रहा है वो सुनना, सारी चीजें अरेंज कराना, चाहे उसमें कोई भी वीएफएक्स की बात है, चाहे साउंड की बात है,
1: स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्रोडक्शन, डूइंग द प्रोडक्शन एंड इवन फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन। सो देयर आर थ्री कैटेगरीज इन प्रोडक्शन। जैसे हम प्री प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पे हमारे डिस्कशंस होते हैं, क्लाइंट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके डिलीवरेबल्स होंगे, कब हम शूट करने वाले हैं, क्या हम शूट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता होती हैं। दैट अगर शाहरुख खान को चलाना है तो वो कितने कदम चलेगा, ये सारी चीजें पहले से ही प्री नोटेड होती हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। देन शिफ्ट टू प्रोडक्शन डे, जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लोकेशन पे जाते हैं, आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, कैमरा टीम के साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन लाइन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करते हैं। देन वी शिफ्ट टू पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग किसी चीज को एडिट पर लेके आते हैं। देन वी हैव एडिट टेबल, जहाँ पे एडिटर बैठ के वीएफएक्स भी करते हैं, म्यूजिक भी फाइनलाइज करते हैं, और वो सारी चीजें फाइनल होने के बाद एक कम्प्लीट वीडियो आपके सामने आता है।
0: सो अमेजिंग। तो अभी तक हमने दोस्तों बेसिक्स की बात करी है, यहाँ पर हमने समझाया कि प्रोडक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, होता क्या है। ठीक है, अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक लेयर और यहाँ से हटाएंगे और थोड़ा सा डेप्थ में चलने की कोशिश करेंगे। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट फिलहाल आप कहीं जाइएगा मत, जुड़े हमारे साथ, फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक, आई जस्ट होप आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। मैं हूं सागर, शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अक्षय कक्कर, जो कि फाउंडर हैं मायरा फिल्मों के, और एक दशक से भी ज्यादा का वक्त इन्होंने इस एक प्रोफेशन को दे दिया है। एंड ही इज प्रेटी गुड एट इट, ठीक है, सब कुछ समझते हैं बहुत पहले से, जब रील्स जैसी चीजें और ये शॉर्ट वीडियोज जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, तब से अक्षय भाई जो हैं इस प्रोफेशन में हैं, तब से वो काम करते आ रहे हैं, तब से वो कॉन्टेंट क्रिएट करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ जानते हैं और बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अक्षय भाई, अभी तक तो हमने जाना है बेसिक्स के बारे में कि प्रोडक्शन होता क्या है, बहुत बेसिक से कि आप क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्या मांग रहा है, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, और उसको एग्जीक्यूट करा करके जो फाइनल डिलीवरी होगी, फाइनल फाइल होगी, वो आप उसको दे दोगे। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बहुत केओस होता है और आप चाह करके भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। साउंड वाले होते हैं, लाइट्स वाले होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, मेकअप वाले होते हैं, स्पॉट दादा होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, आपका काम है सबको मैनेज करना, सबको सेम पेस पर लेकर आना, एक स्टोरी लाइन जो चल रही है उसके बारे में सब लोग सोच पाए, ये आपकी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हाउ डू यू मैनेज दैट केओस, कैसे होता है वो पीपल मैनेजमेंट?
2: सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स। First producer is who is investing into that particular project in terms of money. And other producer जो होता है वो इन सब सारे लोगों को manage करने के लिए होता है, यानी कि वो film produce करने के लिए एक producer जो होता है on ground, वहाँ पे जिस चीज की requirement है, जो चीज उनको किसी भी, चाहे DOP हो, चाहे director हो, चाहे lightman हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी बंदे को same page पर लाने का काम जो होता है वो एक production manager का होता है, जो कि सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। एंड ही क्रिएट्स अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने उनको लोकेशंस के बारे में बताया हुआ है कि भाई किस टाइम पे उनको कौन सी लोकेशन चाहिए, तो वो उस चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं, यानी कि उनका जो नेक्स्ट मूव होगा एंटायर क्रू का, वो लाइन प्रोड्यूसर जो होगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर जो होगा, वो ऑलरेडी उनसे एक स्टेप फॉरवर्ड होगा, ताकि उनके लिए वो सारे क्योर्स जो हैं वो ना क्रिएट हो। यूजुअली हम लोगों ने कई बार ऐसा भी देखा है कि बहुत से ऐसे शूट होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा टीम पहुंच जाता है, बट देयर वी मेट विद लेट्स से कि हमें वहां पर ऐसे ऐसे बहाने मिलते हैं कि भाई यहाँ पे तो परमिशन ही नहीं है शूट के, आप यहाँ पे शूट ही नहीं कर सकते, या फिर यू कैन नॉट फ्लाई अ ड्रोन, यू कैन नॉट क्रिएट दिस मच क्रू। तो ये सारी चीजों को पहले से ही वाइंड अप करता हुआ एक प्रोडक्शन मैनेजर चलता है, जो कि वो सारी चीजें हैंडल करता रहता है।
1: ओके, सो यू डू हैव मैन पावर फॉर दैट पार्ट?
2: करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: ऑलराइट। अक्षय, टफेस्ट पार्ट क्या होता है? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि जब आप पूरा एक प्लान बनाते हो कि हम फील्ड पे जाएंगे, ऐसे शूट करेंगे, ये वाले शॉट्स होंगे, ये डायलॉग्स होंगे, ये कॉस्ट्यूम होगा, ये मेकअप होगा, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से साउंड आएगा, ये साउंड इफेक्ट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, उसके बावजूद आई एम अज्यूमिंग कि प्रॉब्लम्स आती होंगी। ऐसा होता होगा कि ऑन फील्ड, ऑन सेट आपको इम्प्रूव करना पड़ता होगा, ऑन सेट जो प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ आपको डील करना पड़ता होगा।
2: करेक्ट। सो आवर बेसिक थिंग इज कि सबसे पहले हमारे पास आता है स्टोरी लाइन जो होगा, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियो का हो, किसी भी चीज में एक स्टोरी होती है। तो वो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंगली हम लोग एक मूड बोर्ड तैयार करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम किस

0: कलर पैलेट पे चलने वाले हैं, किस मूड से हम लोग उस फिल्म को देखना चाहेंगे, इन टर्म्स ऑफ वो एक्साइटेड रहने वाली है, इन टर्म्स ऑफ वो सस्पेंस में रहना चाहती है, थ्रिलर में रहना चाहती है, तो उधर से हमारा जॉनर डिसाइड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग शूट पर जाते हैं तब हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो हमने सोची तो होती हैं बट वहां पे अवेलेबल नहीं हो सकती किसी के तौर पे। लेट सपोज हमने सोच लिया कि एक शिफॉन की साड़ी पहना के बर्फ के पहाड़ों पे म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे, बट वो जो बर्फ का पहाड़ है उसको क्लाइम करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है,
1: ओके
0: तो कैसे करेंगे? वहां पर हमें कई बार डाउट हो जाता है, तो व्हाट वी डू इज कि वी डू अ क्विक रेकी ताकि हम लोग पहले उस लोकेशन को देख लें, वहां जाने के लिए हमारे पास क्या क्या सीमाएं हैं, कहां किस किस को हम क्रॉस करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें इट कम्स इन प्री प्रोडक्शन, द रेकी टर्म कम्स इन प्री प्रोडक्शन। तो वहां पर जैसे मान लो हमने देख लिया, अब सडन चेंज हो गया कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो ही चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे? देन वी हैव टू वेट, अगर बारिश हो गई तो कुछ कर ही नहीं सकते, एंड अगर आंधी तूफान आ गया तो वी हैव टू वेट। तो ये सारी चीजें जो होती है एक कम्स इन अ क्लॉक, जहां पर हम लोगों को कभी ना कभी क्लाइमेट के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। द सन इज नॉट कमिंग आउट ऑफ एनीवनस हाउस, वो अपनी मर्जी के हैं तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है।
1: सो फ्लेक्सिबिलिटी आप लेकर रखते हो अपने साथ कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सो प्लान बी शुड बी देयर।
1: So wonderful, so wonderful. Akshay, there must be phases, there must be moments when you feel burned out, when you feel there is a creative block, especially when it comes to long shoots. जब आप रात रात भर शूट कर रहे हो, दिन दिन भर शूट कर रहे हो, तो ऐसे टाइम आते होंगे जब बर्न आउट फील होता है, क्रिएटिव ब्लॉक फील होता है, बट यू कांट स्टॉप द प्रोडक्शन। व्हाट्स द की, और आई वुड से व्हाट्स द हैक टू डील विद दैट सिचुएशन?
0: तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेइंग काम इज द ओनली की। अगर हम शूट कर रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग कि भाई हमारा शूट आउट ऑफ लीक जा रहा है, आउट ऑफ टाइम जा रहा है, आउट ऑफ बजट जा रहा है, द ओनली थिंग टू कीप योरसेल्फ इज कीप काम। जितना भी आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट हो या जितना भी आपका प्रोडक्शन छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, बट अगर आपने अपना टेम्परमेंट लूज कर दिया तो वहां पे थिंग कैन नॉट कम टू बैक इन द प्लेस। अगर डायरेक्टर, कई बार हम शूट कर रहे होते हैं तो कई बार 30-30 टेक्स हो जाते हैं, तो डायरेक्टर यूज टू मतलब सामने जो आर्टिस्ट है उनको अच्छा नहीं लगता, उनका मूड खराब हो जाता है कि भाई डायरेक्टर को नहीं समझ आ रहा, तो ही इज जस्ट टेम्परमेंट उसका आउट हो गया, वो थोड़ा सा लाउड हो गया। तो उससे क्या होता है कि वो चीजें और डिले होने लग जाती हैं। इन चीजों को सबसे पहले कामली हैंडल करना है, सबसे पहले इन चीजों के लिए कभी भी गुस्सा नहीं करना, स्टे काम। सी द प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड एनीवे, यू हैव टू टेक एन अपॉर्चुनिटी कि भाई हम इसको रिलीज जरूर करेंगे। अगर जैसा भी शूट हो, आई ऑलवेज से कि मेक इट, शूट इट एंड अपलोड इट, दैट इज द ओनली की। अगर हम ये सोचें कि भाई हम एक ही दिन में सीधा ऑस्कर लेके आ जाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सो यू हैव टू टेक अ स्टेप, यू हैव टू बी आउट ऑफ योर बॉक्स, तब आपकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाती हैं।
1: All right, so amazing, so amazing. So, बहुत सारी बातें हमने करी हैं अभी तक अक्षय से, और कुछ बातें और हैं मेरे पास जो मैं करना चाहूँगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से हॉल्ट का, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि एक ऐसी दुनिया को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर जो बहुत ही आई वुड से कि जादुई लगती है, कुछ कुछ मैजिकल जैसा साउंड करता है, मतलब एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करना, एक फिल्म है, गाना है, एड है, वो कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड कितना केओटिक सीन्स होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पर अक्षय के साथ। तो करेंगे आगे, कॉन्वर्सेशन को लेके जाएंगे, बट कहीं जाइएगा मत, स्प्रेड योर फील गुड।

ऑन दिस नोट आई जस्ट होप आपको ये म्यूजिकल वाइब पसंद आई है। मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ मिस्टर अक्षय कक्कर। काफी सारी बातें अक्षय भाई से हमने अभी तक करी हैं, कुछ कुछ चीजें और हैं जो डिस्कस करनी है। अक्षय, मोस्ट इंपॉर्टेंट

0: देन यू आर द प्रोफेशनल. अगर हम लोग कहें कि भाई हम अपने मूड के हिसाब से काम करेंगे, वी डोंट केयर फॉर द डेडलाइन और समथिंग, तो अगर मेरे पास कोई अपना ब्रांड का प्रमोशन लेके आया है सो उसकी डेट्स के अकॉर्डिंगली मुझे चलना पड़ेगा रादर देन मैं अपनी क्रिएटिविटी को. हाँ, AI helps us to make this thing possible in time. मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे को एक बहुत ही क्रिएटिव स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मेरे को एक पहले हमें होता था कि भाई हमें पूरा अच्छा थॉट चाहिए होता था, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना होता था, चार बंदों के साथ डिस्कस हमें करना होता था, बट AI have helped us. चैट जीपीटी पे डालिए या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप डालिए कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, कितने आर्टिस्ट के साथ काम करना है, कितने मिनट का आपको एड फिल्म बनाना है, वो सारी चीजें डालने के बाद आप AI से ही अपनी एक जो स्क्रिप्ट होगी बेसिक वो आप ले सकते हैं. उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी को ऑलरेडी पुश मिल जाएगा. जब आप एक ब्लैंक कैनवस में होते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्या पेंट करना है, बट अगर कोई खराब पेंटिंग होगा तो उसको कैसे सही करना है वो आपको समझ में आ जाएगा. तो उसी के थ्रू हम लोग अब अपनी स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर चुके हैं. उसी AI प्लेटफॉर्म्स को हम लोग अपने काम में यूटिलाइजेशन करके इन चीजों के साथ और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएटिविटी को बैलेंस आउट करके ताकि हम अपने डेडलाइंस को बीट कर सकें.
1: So wonderful. बहुत प्यारी बात आपने बोली कि एक ब्लैंक कैनवास के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या बनाना है, लेकिन अगर एक खराब पेंटिंग ऑलरेडी आपके पास है सो यू डू हैव अ डायरेक्शन कि क्या नहीं करना है और कैसे से उसको सही करना है. सो अमेजिंग. अक्षय, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देर आर पीपल हु जस्ट वॉन्ट बी एक्टर्स, लाइक हाउ डू यू रिकमेंड यू नो टू गेट सेलेक्टेड और टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, स्पेशली एडवर्टीजमेंट्स और जो भी प्रोडक्शन जाता है, तो कैसे एक्टर्स को काम मिल सकता है, व्हाट्स द प्रोसेस?
0: सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें एक बेसिक पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए जिसमें आपके एक्टिंग स्किल्स थोड़े बहुत नजर आ सके, चाहे वो हम किसी भी मोनोलॉग को कॉपी करके उसको पेश करें, बट अपेरेंटली फ्रॉम स्टार्टिंग यू हैव टू मेक योरसेल्फ कि भाई मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है. आप कोशिश कीजिए आपके कोई नोन में हो, कोई फ्रेंड्स में हो जहाँ पर आपको प्रोडक्शन के अंदर लेकर आ सके एंड यू कैन असिस्ट समवन. अगर आप किसी को असिस्ट करेंगे तो आप 10 नए लोगों से मिलेंगे, वहाँ अपना इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपको और असिस्टेंस का मौका मिलेगा, तब जाकर आप अपने क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ मूवी ऑफ अ गोविंदा वेयर ही वॉज अ लाइटमैन एंड ही वॉज मेकिंग अ लाफ्टर ऑफ अ एक्टर कि भाई ये लाइन्स तो मैं भी बोल लूंगा. तो वो चीज जो है वो चीज आपको तभी मिल पाएगी. आपको देखिए आज की डेट में 2025 में प्लेटफॉर्म हर किसी के पास है, बट करेक्ट प्लेटफॉर्म किसके पास है? मतलब अगर मैं आज बात करूं तो एवरीवन हैज अ फ्रीडम टू अपलोड हिज हर वीडियोस ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म. तो हु इज देयर टू टेल देम कि विच पार्ट ऑफ योर्स इज करेक्ट और विच पार्ट ऑफ योर्स इज इनकरेक्ट. So this things will get to know when जब आप किसी को असिस्ट करोगे, जब आप किसी के पास जाके सीखोगे, जब आप कहीं जाओगे, तो वो चीजें तब पता चलती हैं.
1: So you have to be a part of a project and most importantly you should have a portfolio ready ki jab bhi koi producer ya director aapse kuch mang raha hai so you are not standing there blank. That is your job.
0: You must do internships in this field ताकि आपको experience मिले, ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें.
1: So amazing. पैसे की बात करेंगे अक्षय, when it comes to productions, is it a profession जहां पर अच्छा पैसा मिल सकता है या बस इसको एक part time hobby के तौर पर देखा जाए, पैसे के लिए कुछ और किया जाए? Like what do you have to say after spending more than a decade now?
0: So the money comes with the experience. If I say कि मैं कल से स्टार्ट करूं और मुझे नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट ईयर से मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं होता. एक्सपीरियंस गिव्स यू मनी. इफ आई से कि भाई मैंने 10 साल लगा दिए एंड नाउ आई गो टू करण जौहर एंड से कि भाई मेरे को फिल्म्स में जो है मेन पे काम करने दें, तो हो सकता है वो मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट ना करे. सेम गोज विद एवरीथिंग एवरीवन कि भाई अगर कोई भी बंदा मेरे पास किसी भी प्रोडक्शन हाउस के पास जाता है तो दे विल आस्क अबाउट द पोर्टफोलियोज.

0: और द वर्क दे हैव डन अर्लियर, और वहीं से हम लोगों का एक्सपीरियंस बनना शुरू होता है व्हेन वी डू वन थिंग. सी, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमें तब मिलता है जब हम फिल्म फेस्टिवल्स के ऊपर फिल्म बना के डालते हैं. अगर हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल्स पे लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी फिल्म को अपलोड कर सकते हैं फॉर फ्री, सो दे आर फ्री प्लेटफॉर्म्स. तो आप अपनी फिल्म्स बनाए, फिल्म्स बना के अपलोड करें, यू विल गेट टू नो एक्सपीरियंस कि भाई जो आपके जजेस हैं उन्होंने आपको क्या फीडबैक दिया है आफ्टर वॉचिंग योर फिल्म. वॉच फिल्म्स, वॉच शोज ऑफ हॉलीवुड, बॉलीवुड और वट एवर यू वॉन्ट टू सी, बट लर्न फ्रॉम देम.
1: So amazing, so amazing. So money comes after experience. The more you gain the experience, the more you get the skills, the chances are higher that you get a good amount of money. But it all starts with a will, with a zeal. All right, Akshay, I'm done with my questions, man. Koi bhi aisi cheez hai jo main na pooch paya hu aur aap add on karna chahte ho, please feel free.
0: So the only thing I want to add is don't just think for what you have. कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई वी डोंट हैव गुड कैमरा, वी डोंट हैव गुड लाइट्स, वी डोंट हैव गुड इक्विपमेंट्स टू शूट, बट यू हैव द क्रिएटिविटी, यू हैव द स्टोरी, यू हैव द लीश ऑफ एवरीथिंग. आई मीन टू से इफ समवन इज क्रिएटिव, दैट पर्सन डजंट नीड एनी इक्विपमेंट टू शोकेस व्हाट ही वांट्स टू प्ले. आई मीन कि जिसको शोकेस करना है कुछ भी, वो अपने स्किल को शोकेस करे, नॉट द इक्विपमेंट. इक्विपमेंट डजंट मैटर एट अ पॉइंट, बट इट मैटर्स जब हम कमर्शियल्स की तरफ जाते हैं, नॉट फॉर द प्रैक्टिस और समथिंग.
1: All right. So amazing. Thank you so much, Akshay. It means a lot to us कि आपने इतनी सारी चीजें, इतने सारे इनसाइट्स हमें दिए. हालांकि हमने जस्ट ऊपर से टच करने की कोशिश करी है, अभी इन डेप्थ बहुत ज़्यादा हम नहीं जा सके क्योंकि समय बहुत सीमित होता है हमारे पास, बट स्टिल मतलब आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच मैन.
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड आई होप एवरीवन हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी, एंड आई होप दे विल बी रिकॉर्डिंग मेनी ऑफ द फिल्म्स.
1: Yeah, thank you so much, man. Thank you so much. Yes, definitely. लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आपसे. दोस्तों, अगर अक्षय के लिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अक्षय से कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, सो 8010781078 हमारा नंबर होता है, इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुँचाइए. विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके क्वेश्चंस एड्रेस करें अक्षय, चाहे भले ही हमें एक और एपिसोड करना पड़े, विल डू इट. बट डू लेट अस नो वट एवर द डाउट्स यू हैव दैट आर रिलेटेड टू यू नो प्रोडक्शंस, कास्टिंग, लाइट्स, म्यूजिक, साउंड, एक्टिंग और whatever the department you are chasing, just do let us know. Now on this note, this is your dost and this is your host RJ Sagar signing off. Achha laga ye show humne kiya aaj yahan par, aur mujhe ummeed hai ki aap logo tak kuch moolya hum log pahuncha paye. Now namaskar, this is Sagar signing off.

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज अधाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

0: चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर किसान भाइयों, आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम अन्नदाता। और आज आपसे बात करने वाला हूँ खुम्बा के बारे में। जी हाँ, खुम्बा प्रोटीन, विटामिन, फोलिक और आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये दिल और शुगर के मरीजों के लिए काफी उपयुक्त है। इसकी खेती दुनिया भर में कई सालों से की जा रही है और हमारे भारत में भी इसकी खेती की जाती है, खास तौर से व्यापारिक तौर पर की जाती है। इसकी खेती दोस्तों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में की जाती है। खुम्ब की खेती कोई भी कर सकता है, जैसे गृहिणी या वो लोग जो कि अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए कम जगह की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसकी खेती जो है ना, वो बहुत आसान है और बहुत कम निवेश में की जा सकती है, इसलिए इसकी खेती बहुत प्रसिद्ध है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो किसान भाइयों, आज खुम्ब के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम करता है राम राम, सलाम।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, देखिए, खेती हम कोई भी करें, फसल चाहे कोई भी हो, मिट्टी का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बात चल रही है खुम्ब की, तो खुम्ब की खेती अच्छे हवादार कमरे, शेड, बेसमेंट, गैरेज, यानी कि इन जगहों पर की जा सकती है। पैडी स्ट्रॉ खुम्ब को बाहर शेड वाले स्थान पर उगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं किस्मों की। इसमें एक किस्म है जिसका नाम है बटन खुम्ब। इस किस्म को पूरे विश्व में उगाया जाता है और पूरे साल उगाया भी जा सकता है। सफेद बटन खुम्ब में उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है। इसका ताजा और डिब्बा बंद उपभोग किया जा सकता है। इसकी औषधीय विशेषताएं हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि खुम्ब उगाने वाले ये मुख्य राज्य हैं। यूपी में खुम्ब को उगाने के लिए नवंबर से मार्च का महीना उपयुक्त होता है और अच्छी वृद्धि के लिए इसे 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और खुम्ब निकलते समय इसे 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो रही बटन खुम्ब यानी कि किस्म की बात। एक और किस्म है जिसका नाम है स्ट्रॉ खुम्ब। इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात चल रही है कुंभ के बारे में और उसकी किस्मों के बारे में। अभी पीछे मैंने आपको बताया था बटन कुंभ के बारे में, अब आपसे बात करूंगा स्ट्रोक कुंभ के बारे में। ये पूरे विश्व में उगाई जाने वाली तीसरी सबसे प्रसिद्ध किस्म है। इसे कपास के व्यर्थ मिश्रण के साथ यानी पराली की छोटी मात्रा के ऊपर उगाया जाता है। ये छोटे आकार की खुंभ होती है जो कि कोण के आकार की होती है। इसकी टोपी ऊपर से गहरे भूरे रंग की होती है और भारत में इसकी तीन प्रजातियां हैं किसान भाइयों। पहली डिप्लेसिया, दूसरी वी वोल्वेसिया और तीसरी वी एस्क्यूलेंटा। इन प्रजातियों के अलावा उत्तर प्रदेश में वोल्वेरिला वोल्वेसिया की खेती की जाती है। इसे चाइनीज या पैडी खुंभ के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें बड़े स्तर पर उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इन्हें 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उगाया जा सकता है और इस किस्म की खुंभ की खेती के लिए अप्रैल से सितंबर का जो समय होता है ना, वो बहुत ही उपयुक्त होता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेती करने की तकनीक के बारे में। स्पान यानी खुम्ब के बीजों की तैयारी, ये बाजार में उपलब्ध होते हैं। इन्हें खेत में भी तैयार या उत्पादन किया जा सकता है। ताजे तैयार किए हुए खुम्ब के बीज प्रयोग के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं और खुम्ब की खेती बड़ी मात्रा में खेत के व्यर्थ पदार्थ और अन्य सामग्री जैसे व्यर्थ कागज, कपास का व्यर्थ पदार्थ, अनाज की पराली यानी कि इन सब पर की जा सकती है। धान की परावली और गेहूं की पराली मुख्य तौर पर प्रयोग होने वाली सामग्री है जिनका प्रयोग सब्सट्रेट की तैयारी के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक बात आपको और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, कार्बन डाइजिम 7 ग्राम के साथ फॉर्मोलिन 125 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर डालें और एक मिश्रण तैयार कर लें और फिर उस मिश्रण में 20 किलो गेहूं की पराली डालें और इसे 18 घंटे के लिए रख देना चाहिए। अब 18 घंटों के बाद क्या होगा वो भी सुन लीजिए। 18 घंटों के बाद गेहूं की पराली को हटा दें और इसे एक सतह पर रखें और इसमें से अतिरिक्त पानी को निकाल दें। गेहूं की पराली की बात करें तो गेहूं की पराली में 2% बीज डालें और इस मिश्रण को 15x12 इंच की पॉलिथीन बैग में भर लें। पॉलिथीन बैग 2 मिलीमीटर अर्ध व्यास की छिद्रित हो और हवा परिसंचरण के लिए पूरी सतह पर लगभग 4 सेंटीमीटर के छेद होने चाहिए। उसके बाद बैग को 80-85% आर्द्रता वाले कमरे में शेल्फ पर रखना चाहिए। कमरे का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, बैगों को सुरक्षित जगह पर रखें और पानी के छिड़काव द्वारा इनमें नमी बनाए रखें। पराली पर सफ़ेद रंग की सूती माइसीलियम विकसित हो जाती है। गेहूं की पराली अपना रंग बदलकर भूरे रंग की हो जाती है और आवाज़ करती है और सिकुड़ जाती है। इस अवस्था में पॉलीथीन को काट कर निकाल दें। पॉलीथीन में पराली सिकुड़ जाती है और बेलनाकार हो जाती है। इन बेलनाकार पराली के आकार को शेल्फ पर लगाएं और इसमें पानी के छिड़काव द्वारा नमी बनाए रखें। अब बात आती है कि भाई पौधे की देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं। उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: लेकिन वो बात।
1: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए किसान भाइयों, अब पौधे की देखभाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं फंगस की बीमारियों के बारे में। भूरे धब्बे फंगस या वर्टिसिलियम बीमारियां। देखिए किसान भाइयों, कभी कभी खुम्ब की छतरी पर हल्के भूरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं, जिससे धीरे धीरे खुम्ब का जो आकार है वो अनियमित हो जाता है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र में इस बीमारी को देखा जाए तो इन धब्बों की बहुत पतली और सफ़ेद से स्लेटी रंग की और एक सेल फंगस देखी जा सकती है। अगर ये बीमारी फैल जाए तो खुम्ब चमड़े जैसी हो जाती है और बिना किसी गंध के सूख जाती है। अब सवाल आता है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, तो वो भी सुन लीजिए। इस बीमारी के फैलने से पहले इसे रोकना जरूरी हो जाता है। कमरे को साफ करें, हवादार रखें, सभी यंत्रों को धूल रहित रखें, तापमान को ना बढ़ाएं और इंडोफिल M45 0.25 से 0.5% तक की स्प्रे 3 बार करनी चाहिए। पहली केसिंग के समय, दूसरी पिन बांधने के समय और तीसरी 2 फसलों की तुलाई के बाद करें। इसके अलावा एक होती है किसान भाइयों हरी फंगस। ये बीमारी खास तौर से कंपोस्ट और केसिंग मिट्टी पर होती है। ये विषाणु केसिंग मिट्टी में जहरीले तत्व का उत्पादन करता है। ये खुम्ब के पतले तत्वों को मार देते हैं और डंठल गहरे भूरे से लाल भूरे रंग का हो जाता है। ये फंगस गहरे हरे रंग की होती है और खुम्ब की छतरी पर जख्म बनाती है। इसका उपचार करने का तरीका ये है कि डिथियोकार्बोमेट या बेंजामाइडोजोल से कंपोस्ट या केसिंग को विषाणु रहित बनाकर इसे रोका जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कुछ बैक्टीरियल बीमारियों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बैक्टीरियल ब्लॉच की। इसके कारण छतरी की सतह पर भूरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं। शुरू में ये हल्के रंग के होते हैं, लेकिन बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इसका उपचार कुछ इस तरह किया जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हाइपोक्लोराइड 150 ppm डालें और इसको नियंत्रित करें। इसके अलावा हानिकारक कीट भी होते हैं, उनकी रोकथाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें नाम आता है नेमाटोड का। नेमाटोड स्पान को खाते हैं। उपचार इसका यह है कि इसे पास्टुराइजेशन से नियंत्रित किया जा सकता है। कंपोस्ट के समय इसकी रोकथाम के लिए फुराडान 120 ग्राम यानी प्रति 300 ग्राम डालना चाहिए, तो इससे भी आप निजात पा सकते हैं, इससे भी रोकथाम कर सकते हैं। अब सारे काम तो कर लिए हैं, हमारी फसल तैयार भी हो गई है। अब बात आती है फसल की कटाई की, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, सारी बातें कर ली हैं खुंभ के बारे में, अब बात करते हैं फसल की कटाई की। स्पॉनिंग के 18 से 20 दिन के बाद पहली खुंभ दिखनी शुरू हो जाती है और एक सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 खुंभ दिखनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसान भाइयों, जब खुंभ की टोपी मुड़ना शुरू हो जाए तो खुंभ की तुड़ाई कर लें। तुड़ाई के लिए तीखे चाकू का प्रयोग करें और इसे उंगलियों से मरोड़ कर भी तोड़ा जा सकता है। इसे ताज़ा भी खाया जा सकता है या धूप में या मशीनी ड्राइड से सुखाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। 45 से 60 दिनों के अंदर 1 टन सूखी पराली से 500 किलो से ज़्यादा ताज़ी ताज़ी खुंभ प्राप्त की जा सकती है और इसका अच्छे से लाभ हासिल किया जा सकता है। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिनके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो एक मशहूर लेखिका हैं, नाम है अलका सरावगी। देखिए दोस्तों, जीवन और जगत के विषय में साहित्यकार एक विचारधारा को लेकर चलता है और वो विचारधारा समय के अनुरूप परिवर्तित भी होती है। सामाजिक विचारधारा को उतना ही प्राचीन कहा जा सकता है जितना कि समाज को। सामाजिक विचार एक व्यक्ति का भी हो सकता है और समूह का भी हो सकता है, जाति का भी हो सकता है, दल और राष्ट्र का भी हो सकता है। अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर साहित्यकार अपनी कृतियों को नई दिशा देते हैं। अलका सरावगी ने समकालीन सामाजिक आयाम को अपने उपन्यासों में सामाजिक चेतना के उत्कर्ष के रूप में स्थान दिया है, जिसमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोए बिना व्यापक रूप से सामाजिक चेतना के संदर्भ को स्वीकार करके अपने को संक्रमण काल से बाहर निकालने का प्रयत्न करे। इस उद्देश्य को लेकर अलका सरावगी समकालीन शक्तियों से समाज को जागरूक करके उसे प्रेरणादायक मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। तो दोस्तों, आज बात होगी अलका सरावगी के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके लेखन के बारे में और इनके जीवन के संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से बदलते युग की आवश्यकताओं के कारण सामाजिक परिवेश, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगत होता है। अलका सरावगी ने अपने समग्र उपन्यासों में सामाजिक जीवन और परिवर्तनशील मानव मूल्यों की गाथा को समाहित किया है। अपने उपन्यासों में समसामयिक यथार्थ को चित्रित करते हुए मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं के साथ साथ रूढ़िगत परंपराओं के विघटन को स्वर दिया है। उनके कलीकथा वाया बाईपास से लेकर जानकी दास तेजपाल मेंशन तक के उपन्यासों में सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। स्वतंत्रता के पूर्व के सामाजिक जीवन एवं उसकी दशाओं को दर्शाया है, तो वहीं स्वतंत्रोत्तर सामाजिक चेतना के साथ आज के समकालीन समाज की विडंबनाओं को व्यापक रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, समाज के रीति रिवाज, पारिवारिक जीवन की शैलियां, जातीय व्यवस्था, सामाजिक मूल्य, नारी की स्थिति, भूमंडलीकरण की विडंबना, यानी कि इन सब को अपने समग्र उपन्यासों में विशद चित्रण किया है। अलका सरावगी द्वारा समाज एवं व्यक्ति के संबंध को गहनता से दर्शाया है। जिस समाज में मनुष्य अपनी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागृत नहीं होता है, वो समाज प्रगति कैसे कर पाएगा? समस्याओं के समाधान के प्रति जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, वो सामाजिक चेतना की परिणति है। सामाजिक चेतना के अभाव में समाज का सृजन और पोषण संभव नहीं है। लेकिन अलका सरावगी ने समाज की हर उन प्रथाओं को साकार किया है जो परंपरागत हैं, तो आधुनिक भी हैं और समकालीन भी हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, कला की सार्थकता उसके सामाजिक संदर्भों में निहित होती है। जीवन की सार्थकता उसकी सामाजिक परिकल्पना में निहित है। सामाजिक परिवेश से अलिप्त मानव जीवन की धारणा कोरी कल्पना का भटकाव मात्र है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज और राष्ट्र अलग अलग इकाइयों में हैं। इनका परस्पर अटूट संबंध होता है। इन्हीं के दायरे में सुख दुख, आशा निराशा, हारस परिहारस, विजय पराजय, मित्रता शत्रुता, यानी कि ये भाव भूमियों का व्यापार चलता रहता है। भाव, विचार और दर्शन की त्रयी सामाजिक जीवन पद्धति, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और धर्म का स्वरूप निर्धारित करती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
2: तेरे भी।

0: सुनो हार्दिक, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: जैसा कि दोस्तों मैं पीछे आपसे जिक्र कर रहा था, भाव विचार और दर्शन की त्रयी सामाजिक जीवन पद्धति, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और धर्म का स्वरूप निर्धारित करती है। इन्हीं विचारों को उद्वेलित करती अलका सरावगी ने अपने समग्र उपन्यासों में प्रत्येक युग के समाज की नाड़ियों का स्पंदन महसूस किया है, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व के समाज में प्रचलित अंधविश्वास, कुप्रथाएं, स्त्रियों का पिछड़ापन और अशिक्षा जैसी समस्याओं को सशक्तता के साथ उभारा है। खासकर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, आज बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में, उनके उपन्यासों का भी जिक्र मैंने आपसे किया। और ये हकीकत है दोस्तों, पुरानी सड़ी गली सामाजिक कुरूतियों को तोड़ने का साहस लेखिका द्वारा निर्भीकता से किया गया है। कली कथा वाया बाईपास में लेखिका द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व के समाज का चित्रण है, तो स्वतंत्रता के पश्चात के सामाजिक बदलाव को भी प्रतिबिंबित किया है, जिसमें शिक्षा के प्रसार के साथ स्त्रियों की दशा में सुधार के संकेत मिलते हैं। कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू अपनी लड़कियों को कॉलेज पढ़ाते हैं और बहू भी पढ़ी लिखी ही लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इनके बारे में, यानी कि अलका सरावगी के बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपसे करूंगा, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हां, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूं आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और उसी के साथ लेकर आती हूं आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और दोस्तों, ट्रेंडिंग तड़का में हम बात करते हैं हम सबकी, हमारी बात, हमारी रोजमर्रा से जुड़ी हुई बात, कोई ऐसी बात जो आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग होता है। कभी कोई मूवी हो गई, कभी सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड हो गया, तो कभी कोई वायरल वीडियो, या फिर कभी कोई टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी न्यूज़ जो हम सबकी डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है। और इन्हीं बदलते ट्रेंड को समझने के लिए आपका अपना ट्रेंडिंग तड़का आ जाता है आपके पास, जहां पर हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि क्या ट्रेंड कर रहा है, बल्कि ये भी समझते हैं कि उस ट्रेंड का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी होस्ट और दोस्त के साथ आरजी स्नेहा के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और आज ट्रेंडिंग तड़का में लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक जिसके साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जिससे शायद आप रोज मिलते हैं। कभी आप ऑफिस में हो, या कभी फोन पर, कभी सोशल मीडिया पर हो, या फिर कभी आप अपने सिंपल से सवाल के जवाब के लिए उसे यूज करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आप पूछेंगे कि स्नेहा यार, इस पर तो हमने बहुत बार बात कर ली है, फिर से क्यों? जी हाँ, ये आज के टाइम का इतना हॉट टॉपिक है, तो इस पर बात करना तो बनता ही है यार। इस पर जितनी बात कर लो ना, उतनी कम है। तो आज का जो टाइम है ना, वो हम सब जानते हैं कि AI से हम ईमेल लिखवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, फोटोज भी एडिट करवाते हैं, और आइडियाज भी डिस्कस कर रहे हैं, और कभी कभी तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तक AI के सामने रख देते हैं। लेकिन जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, जब हम AI को इतना कुछ बता रहे हैं, तो क्या हमें ये भी पता है कि हम एक्चुअली क्या शेयर कर रहे हैं उसके साथ? आज के टाइम में अगर हम न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, तो अगर हम उसमें भी देखें ना, तो AI और प्राइवेसी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न समझाने को आया है, जो कि आपको हमेशा इन्फॉर्म करते रहते हैं कि AI जनरेटेड फोटोज का यूज़ और पर्सनल डेटा की सेफ्टी, और ये सिर्फ एक ऐप या फिर किसी पर्सन की बात नहीं है, ये एक टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो हर उस इंसान से कनेक्टेड है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज़ करता है। जी हाँ, हम अक्सर प्राइवेसी का नाम सुनते ही पासवर्ड, OTP या फिर कहें तो बैंक डिटेल्स के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन प्राइवेसी की दुनिया उससे भी ज़्यादा काफ़ी बड़ी है। आपकी एक फ़ोटो, एक डॉक्यूमेंट, एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन, ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल हो, या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और यहीं पर AI को समझने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आता है कि AI से सवाल पूछना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब हो सकती है जब हम बिना कुछ सोचे समझे उस सवाल के साथ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं उस पर। मान लीजिए आप AI से पूछते हैं कि मेरे लिए एक प्रोफेशनल लीव एप्लीकेशन लिख दो। इसके लिए आपको अपना पासवर्ड, ID नंबर या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि सिंपल सी बात है, AI को काम समझाना ज़रूरी है, लेकिन हर डिटेल को शेयर करना, उसको बताना ये ज़रूरी नहीं है। तो आज की इस ट्रेंडिंग तड़का में हम AI से कोई डरने की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे AI को इंटेलिजेंटली यूज़ करने की। क्या एक नॉर्मल सी फोटो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकती है? क्या AI chatbot की कौन सी इंफॉर्मेशन हमें उसके साथ शेयर करनी चाहिए या और कौन सी नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट AI की दुनिया में अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल हम कितना अपने हाथ में रख सकते हैं। इन्हीं सब सवालों के कुछ जवाब है जिसके बारे में आज मैं लेकर आई हूँ और समझेंगे हम उसके बारे में। पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं AI के बारे में, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने बात की कि AI यूज़ करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना ही नहीं है, बल्कि अपने डेटा को भी समझना है। अब ज़रा एक बहुत कॉमन से सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आपके फ़ोन में कोई अच्छी सी फ़ोटो है, आप चाहते हैं कि AI उसका बैकग्राउंड चेंज कर दे, आपकी फ़ोटो को प्रोफेशनल बना दे, या फिर ओल्ड फ़ोटो रिस्टोर कर दे, या उसमें कोई क्रिएटिव इफेक्ट या फिर कुछ भी एक्सेट्रा ऐड कर सकता है उसमें। आपने क्या करा, आपने ऐप को ओपन किया, फोटो को सिलेक्ट किया और बस अपलोड कर दिया, काम हो गया। लेकिन क्या सिर्फ फोटो अपलोड हुई? यहीं पर थोड़ा सा रुककर सोचना ज़रूरी है। हम अक्सर फोटो को सिर्फ एक इमेज समझते हैं, लेकिन एक फोटोग्राफ के अंदर विजुअल्स इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट क्ल्यू भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फोटो में आपका फेस क्लियरली विजिबल है, बैकग्राउंड में आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम दिख रहा हो सकता है, कभी कभी व्हीकल नंबर, ID कार्ड, लोकेशन या फिर बोर्ड या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का पार्ट उस बैकग्राउंड में हो सकता है, कुछ भी एक्सीडेंटली उसके अंदर मेंशन हो सकता है। मतलब हमने AI को शायद सिर्फ ये कहा है कि इस फोटो को एडिट कर दो, लेकिन फोटो के थ्रू हमने उसे और भी इंफॉर्मेशन दिखा दी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर फोटो अपलोड करना अनसेफ है। AI बेस्ड फोटो टूल्स का यूज बहुत ही यूजफुल भी हो सकता है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम बिना कुछ सोचे या फिर ये मान लेते हैं कि फोटो है इसमें क्या ही होगा। एक सिंपल हैबिट यहाँ पर काम आ सकती है कि अपलोड करने से पहले फोटो को एक बार जूम करके जरूर देखिए कि उसके अंदर कोई बाकी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं छुपी, क्या उसमें कोई ID कार्ड विजिबल है, या फिर कोई एड्रेस या फिर कोई फ़ोन नंबर तो नहीं दिख रहा, या फिर क्या बैकग्राउंड में कोई ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पड़ा हुआ है ना जो आपको बहुत ज़रूरी है, और क्या फ़ोटो किसी और पर्सन की है जिनकी परमिशन आपने नहीं ली है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि AI जनरेटेड या फिर AI एडिटेड फोटो और ओरिजिनल फोटो में डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है। आज AI किसी फोटोग्राफ को कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे सकता है, इसलिए अपनी फोटोज को कैजुअली अपलोड करने के साथ साथ दूसरों की फोटोज का यूज को लेकर भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन को छुपाना ही नहीं होता है, बल्कि प्राइवेसी का मतलब ये भी होता है समझना कि हम किसी

मिशन को, किसी प्लेटफॉर्म को, और या फिर किसी पर्पस के लिए शेयर कर रहे हैं या अपने काम के लिए कर रहे हैं। तो अगली बार एआई से फोटो एडिट करवाने से पहले एक सेकंड रुकेगा और खुद से पूछेगा, क्या मुझे सिर्फ फोटो ही एडिट करवानी है या मैं इस फोटो के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि स्मार्ट एडिटिंग से पहले स्मार्ट शेयरिंग ज़रूरी होती है। अब सवाल एक और आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, कि फ़ोटो के अलावा एआई चैटबॉट को हम अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन कभी कैजुअली नहीं देनी चाहिए, इसको भी समझेंगे लेकिन अगले सेगमेंट में। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हैं हम आपके लिए लेकर कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज जिसकी बारे में बात हो रही है वो है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि AI को एक सिंपल फोटो अपलोड करना भी, कभी कभी सिर्फ फोटो शेयर करना नहीं होता है, बल्कि लेकिन असल चैलेंज सिर्फ फोटोग्राफ्स तक लिमिटेड नहीं होती है। हम AI से बात करते हुए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी कैजुअली शेयर कर देते हैं, ये भी समझना जरूरी है। आज AI चैटबॉट हमारे लिए एक तरह का डिजिटल असिस्टेंट बन गया है। हम उससे ईमेल्स लिखवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को समराइज करवाते हैं, ट्रेवल प्लान्स बनाते हैं, और फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी समझते हैं, और कभी पर्सनल सिचुएशन पर एडवाइस भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप किसी अननोन पर्सन के साथ कैजुअली शेयर नहीं करेंगे, उसे AI टूल पर भी अपलोड करने से पहले ज़रूर सोचिएगा। और सबसे ऑब्वियस एग्जांपल में से एक है कि पासवर्ड्स और OTPs। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन किसी चैटबॉट को देने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, जैसे कि CVV, कोई भी बैंकिंग डिटेल हो गई, UPI पिन जैसे फाइनेंशियल डिटेल्स भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये सब हमारी पर्सनल चीज़ें हैं जिसे हम किसी को नहीं शेयर करते। लेकिन प्राइवेसी का रिस्क सिर्फ बैंकिंग इन्फॉर्मेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। मान लीजिए आपके ऑफिस का कोई कॉन्फिडेंशियल प्रेजेंटेशन है, या फिर किसी क्लाइंट का कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट, या फिर कोई कंपनी का इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। आप सोचते हैं कि AI से इसकी समरी बनवा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। काम कन्वीनियंट जरूर है, लेकिन पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या आपको वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी एक्सटर्नल AI सर्विस पर अपलोड करने की परमिशन है या फिर नहीं। इसी तरह पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, लीगल पेपर्स, या फिर किसी दूसरे पर्सन की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को भी अपलोड करने से पहले पर्पस और प्राइवेसी सेटिंग समझना जरूरी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है पर्सनल कॉन्वर्जेशन। जी हाँ, कभी हम AI को अपनी रिलेशनशिप, या फिर फैमिली, या फिर वर्क प्लेस, और या कहे तो पर्सनल सिचुएशन के बारे में बहुत डिटेल में बताने लगते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई बात करने को नहीं है, तो इसमें हम AI से बात कर लेते हैं। जनरल गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आइडेंटिफाइड डिटेल देने से बचना बहुत सेंसिबल अप्रोच है। जी हाँ, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा मिसइनफॉर्मेशन। जी हाँ, इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मतलब देखें तो जितनी इन्फॉर्मेशन काम के लिए जनरली ज़रूरी है उतनी ही शेयर करिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर AI को एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है तो उसे पूरा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत शायद नहीं है। और अगर किसी पैराग्राफ का समरी चाहिए आपको, तो सेंसिटिव नेम्स, फ़ोन नंबर्स, और या फिर कहे तो अकाउंट डिटेल्स को रिमूव करके भी काम हो सकता है। मतलब AI को यूज़ करना बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि AI को इंटेलिजेंटली यूज़ करना सॉल्यूशन है। तो अगली बार जब आप किसी AI टूल में कुछ पेस्ट या फिर अपलोड करें, तो एक छोटा सा पॉज दीजिएगा और पूछिएगा कि क्या AI को ये इन्फॉर्मेशन देना एक्चुअली ज़रूरी है। अगर आंसर नो है ना, तो इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि डिजिटल एज में प्राइवेसी सबसे पावरफुल टूल है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं, आपका अपना जजमेंट है। और अब बात करेंगे उस प्राइवेसी सेटिंग की, जिनके नाम तो हमने बहुत बार सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली वो काम कैसे करते हैं। जैसे कि ChatGPT, Gemini, Grok, और भी प्लेटफॉर्म हैं जैसे जिसमें हम डाटा कंट्रोल समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जिसे आप सुनते हैं हर संडे शाम 4 से 5। लेकर आ जाती हूं आपके लिए कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारी जो आपसे जुड़ी है, जो हमसे जुड़ी है, जो हम सबसे जुड़ी हुई है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं AI के बारे में। बहुत सारी चीजें हमने जान ली है और अब कुछ उससे जुड़ी जरूरी बातें करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जैसे कि दो इंपॉर्टेंट चीजें समझी है कि AI को इन्फॉर्मेशन देना नॉर्मल है, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात है कि एक फोटो या फिर सिंपल कॉन्वर्सेशन भी अपने अंदर काफी कॉन्टेक्स्ट कैरी कर सकती है। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है कि अगर हम AI का यूज कर रहे हैं तो अपनी प्राइवेसी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज के पॉपुलर AI प्लेटफॉर्म में प्राइवेसी और डेटा यूज के लिए अलग अलग कंट्रोल्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है कि हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, टर्म्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कभी सेटिंग्स को खोल कर देखते ही नहीं है अंदर ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, ChatGPT में डेटा कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, जहां पर पर्सनल अकाउंट्स के यूजर्स ये मैनेज कर सकते हैं कि उनकी न्यू कॉन्वर्जेशन मॉडल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज हो या नहीं। इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन को ऑफ करने पर न्यू कॉन्वर्जेशन मॉडल इम्प्रूव के लिए यूज नहीं होती है। ऑल थ्रू वो नॉर्मल चैट हिस्ट्री में रह सकती है। ChatGPT में टेम्परेरी चैट ऑप्शन भी है। टेम्परेरी चैट हिस्ट्री में अपीयर नहीं होती है, मेमोरी क्रिएट या फिर अपडेट नहीं करती है और मॉडल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज नहीं होती है। और फिर OpenAI के अकॉर्डिंग सेफ्टी पर्पस के लिए टेम्परेरी चैट की कॉपी अप टू 30 डेज तक में रिटेन हो सकती है। अब जेमिनाई को देखिए कि गूगल के जेमिनाई ऐप पर कीप एक्टिविटी नाम का कंट्रोल है। अगर ये ऑन है तो जेमिनाई के साथ की गई चैट्स और शेयर्ड कंटेंट जैसे फाइल्स, फोटोज, वीडियोस या फिर स्क्रीन एक्टिविटी में सेव हो सकते हैं। गूगल यूजर्स को एक्टिविटी रिव्यू, डिलीट और ऑटो डिलीट सेटिंग में मैनेज करने का ऑप्शन देता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना चाहिए कि प्राइवेसी सेटिंग का होना और उस सेटिंग को समझकर यूज करना दोनों अलग चीज है। और मैं आपको सही बताऊं तो आपको हर AI प्लेटफॉर्म की सेटिंग को या फिर टेक्निकल पॉलिसी को याद करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैबिट बना लीजिए कि जैसे कि मेरी एक्टिविटी सेव हो रही है या नहीं, मेरी चैट्स का यूज किस पर्पस के लिए हो सकता है ये सोचिए, क्या मेरे पास हिस्ट्री या फिर एक्टिविटी डिलीट करने का ऑप्शन है, सेंसिटिव कॉन्वर्जेशन के लिए टेम्प्रेरी प्राइवेसी ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सेटिंग ऑफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी कंट्रोल्स एक एक्स्ट्रा लेयर है, बेसिक कॉशंस फिर भी जरूरी है। इसलिए AI यूज करने का मेच्योर अप्रोच यही है कि पहले इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करें और फिर प्लेटफॉर्म की सेटिंग को समझिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं। टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल के ऑप्शंस दे सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले स्क्रीन के दूसरी तरफ यूजर को भी अवेयर होना पड़ेगा। जानेंगे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। जी हां, ट्रेंडिंग तड़का में आज हम बात कर रहे हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी, पर अब ना मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब अब हम बात करने वाले हैं कि एआई को ना स्मार्टली यूज करना चाहिए, उससे डरना नहीं है। AI हमारे यूज के लिए है। आप मानेंगे नहीं, AI में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम अपना काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन AI को ना स्मार्टली यूज करना है। अगर हम स्मार्टली यूज करेंगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो दोस्तों, अभी तक जैसा कि हमने कॉन्वर्जेशन से एक चीज तो क्लियर कर ली है कि AI हमारी लाइफ का एक यूजफुल पार्ट बन चुका है, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी बेनिफिट तभी प्रॉपरली हमें मिलता है जब हम उसे समझ कर यूज करते हैं, ब्लाइंडली नहीं। तब सवाल ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल AI यूजर एक्चुअली करता क्या है। सबसे पहली चीज है कि थिंक बिफोर यू शेयर। AI को कुछ अपलोड करने से पहले 2 सेकंड रुककर सोचिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली जरूरी है। अगर आपको सिर्फ एक पैराग्राफ का ग्रामर चेक करना है या फिर उससे चेक करवाना है, तो पूरा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो क्या उस फोटो में कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विजिबल तो नहीं है, बस इतना ही चेक करना है। दूसरी हैबिट है पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेपरेट रखना। जी हाँ, जैसे कि पासवर्ड हो गया, OTP, पिन, बैंकिंग डिटेल्स, या फिर इसके जैसे ही और भी कुछ बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ें जो कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का स्कोप इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसे ना शेयर करें। ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल हो गई, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन हो गई, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्राइवेट फोटोग्राफ्स हो गए, या फिर दूसरे पर्सन की कोई भी पर्सनल डिटेल, हम उसे अननेसेसरली शेयर नहीं कर सकते हैं और ना हमें करनी चाहिए। तीसरी चीज है AI के आंसर को फाइनल ट्रुथ मत समझिए। AI बहुत कॉन्फिडेंशियली आंसर दे सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और करेक्टनेस एक ही चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पेशली लीगल, फाइनेंशियल, मेडिकल या फिर प्रोफेशनल मैटर्स में रिलायबल सोर्सेज या फिर वेरिफिकेशन जरूरी है। चौथी हैबिट है कि प्राइवेसी सेटिंग को पीरियोडिकली चेक करना। हम फोन की सेटिंग्स, सोशल मीडिया प्राइवेसी और ऐप परमिशंस कभी कभी चेक करते हैं, लेकिन AI एप्लीकेशंस को लेकर भी ये हैबिट होना बहुत जरूरी है। देखिए कि एक्टिविटी कैसे सेव हो रही है, अवेलेबल कंट्रोल क्या है, और आपके पास डेटा मैनेज या फिर डिलीट करने का क्या क्या ऑप्शन है। और पांचवी है AI जनरेटेड कंटेंट को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना। अगर कोई AI जनरेटेड इमेज है या फिर वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इमिडिएटली फॉरवर्ड कर दी जाए। सोर्सेज को चेक कीजिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए, और ज़रूरी हो तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी कीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि शेयर लेस, चेक मोर एंड थिंक बिफोर यू ट्रस्ट। और इसका मतलब AI से डिस्टेंस बनाना बिल्कुल भी नहीं है। आप AI से आइडिया ले सकते हैं, अपने काम को फास्टर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्निंग में हेल्प ले सकते हैं, बस टेक्नोलॉजी को डिसीजन मेकर नहीं असिस्टेंट की तरह यूज़ करना ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच है। क्योंकि स्मार्ट यूज़र वो नहीं है जो AI को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्मार्ट यूज़र वो होता है जो समझता है कि AI को क्या बताना है, AI से क्या पूछना है और AI के आंसर पर कितना भरोसा करना है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, जहां पर हम पूरी कॉन्वर्जेशन का एक सिंपल सा थॉट में समझेंगे कि AI से डरने की जरूरत है या सिर्फ अपने डिजिटल सेंस को अपग्रेड करना है। तो चलिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। जी हां, ट्रेंडिंग तड़का लेकर आ गई हूं प्रोग्राम जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस ट्रेंडिंग तड़का में आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कितना जरूरी है, क्या क्या सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी चाहिए, कितनी कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स हैं, कुछ बहुत ही जनरल सी कहूँ तो जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम AI को यूज़ करें और कितना ना करें, क्या AI हमारे लिए सच में इतना ज़्यादा डेंजरस है जैसे कि कहते हैं, या क्या AI हेल्पफुल है। देखिए, मैं आपको सही बताऊँ तो AI से डरना नहीं है, बस हमारे जो डिजिटल सेंस है ना उसको डेवलप करना है, क्योंकि AI बहुत हेल्पफुल टूल है अगर आप उसे सच में असिस्टेंट की तरह यूज़ करें तो। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे कि अब तक हमने ट्रेंडिंग तड़का में बहुत सारी बातें जानी, AI के बारे में बहुत सारी बातें की, अब पूरी कॉन्वर्जेशन को अगर एक सिंपल से थॉट में समझे ना तो बात इतनी सी ही है कि AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन AI को बिना समझे यूज़ करने की भी अप्रोच नहीं है। जी हाँ, AI हमारा काम ईजी बनाता है, आइडियाज़ देने से लेकर राइटिंग, लर्निंग, फोटो एडिटिंग और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने तक, लेकिन कन्वीनियंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। आज हमने समझा कि AI की फोटोज या फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले हमें देखना चाहिए कि उसमें कोई पर्सनल या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, सेंसिटिव डिटेल्स अननेसेसरली शेयर नहीं करनी चाहिए, प्राइवेसी सेटिंग को समझना चाहिए और AI के आंसर को इंपॉर्टेंट मैटर्स में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और AI जनरेटेड फोटोज, वीडियोज या फिर वॉइस के दौर में एक हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉज एंड वेरीफाई। जी हाँ, कुछ शॉकिंग देखा तो वेरीफाई कीजिए, कुछ फेमिलियर पर्सन की वॉइस में इमरजेंसी कॉल आए तो उसे कंफर्म कीजिए, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन AI को देने वाला है तो पहले सोचिए तो क्या ये रियली नेसेसरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है और हमें भी स्मार्ट डिजिटल यूजर बनना है, ना कि कोई डम यूजर। तो AI को अपना असिस्टेंट बनाइए, अपने जजमेंट का रिप्लेस नहीं। तो ये थी हमारी आज AI के ऊपर छोटी सी कॉन्वर्जेशन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, बहुत सारी चीज़ों को समझा कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए और यूज़ करनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। एक जाते जाते सिंपल सा थॉट कि थिंक बिफोर यू शेयर, वेरीफाई बिफोर

यू ट्रस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग तड़का के एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे क्यूरियस और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग ले एक वादा।
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो ना केवल फरीदाबाद के निवासी हैं बल्कि फरीदाबाद हरियाणा को पूरे देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट भी ऐसे मंच पर कर रहे हैं, ऐसे काम में कर रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही मीडिया एडवाइजर टू द सीएम ऑफ हरियाणा, ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के मीडिया एडवाइजर हमारे बीच में हैं आज राजीव जेटली जी, जिनको आपने बहुत सारी टीवी डिबेट्स में देखा होगा, बहुत बार इनको मुख्यमंत्री साहब के साथ देखा होगा, बहुत बार सोशल मीडिया पर चर्चाएं करते हुए देखा होगा, डिबेट्स में पार्ट लेते देखा होगा। लेकिन आज हम इनसे जो बातें करने वाले हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें नहीं करने वाले हैं। हम बातें करने वाले हैं इनके जीवन की, इनके फिटनेस की और कुछ मोटिवेशन की, वो भी युवाओं के लिए। तो बातों का सिलसिला दोस्तों जारी है, आइए मुलाकात करते हैं राजीव जेटली जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम बहुत फॉर्मल या इनके बारे में आपको कुछ बताएं, मैं आपको ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि लगभग 10 से 12 साल पहले ये हमारी बहुत सी डिबेट्स और बहुत सारे डिस्कशंस का हिस्सा रहा करते थे।
1: यस,
0: हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राजीव जी आज भी हमसे बात करने के लिए अलग से समय निकाल कर तुरंत आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।
0: सो राजीव जी, बहुत सारी बातें हम एक पॉलिटिकल डिबेट की तरह नहीं करेंगे क्योंकि हम रेडियो मानव रचना है, कम्युनिटी रेडियो है और युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल जो आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा लेकिन शायद हमारे श्रोताओं और दर्शकों को नहीं पता होगा, पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? क्योंकि अब आपको काफी साल हो गए हैं पर कमाल की बात यह है आप अभी भी युवा हैं।
1: नहीं, अब युवा नहीं रह गए हम, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स बड़ा, कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे आया।
0: जी,
1: मुझे एक मेरे बड़े सीनियर एक ब्यूरोक्रेट थे
0: जी,
1: मतलब ही वाज आईएफएस, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में थे, तो वो मुझे किसी एक लीडर से मिलवाने के लिए ले गए। बिकॉज वो लीडर जो हैं उनके जब भी वो किसी जगह पे उनकी ट्रांसफर होती थी, किसी कंट्री में होते थे
0: जी,
1: तो वो लीडर उनके घर पे रहते थे जाकर।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे को किसी से आज मिलवाते हैं, तो मैं चला गया उनके साथ रूटीन में। अच्छा, वहाँ जाके डिस्कशन शुरू हुई है। आई वॉज प्योरली मार्केटिंग गाय, तो अब क्योंकि मार्केटिंग का था, सेल्स का था, तो बोलने की आदत थी,
0: बातचीत अच्छी हो जाती।
1: जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो हमने भी अपने व्यूज देने शुरू कर दिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वाई डोंट यू ज्वाइन अवर पार्टी, आप हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टी में क्या होता है, तो उन्होंने कहा हमारी, ऐसे कि मैं ज्वाइन कर लूंगा कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई पद ले लो। तो बिलीव में मेरे को पद भी नहीं पता था क्या होते हैं, तो मैंने उनसे कहा जी आप क्या बनाओगे, मुझे एमपी बनाओगे या एमएलए बनाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, एक और पद होते हैं संगठन के
0: जी,
1: फिर वो क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा पहले थोड़ा सीख के आओ फिर दोबारा आना। अच्छा, मैं भूल गया उस बात को। कुछ दिनों के बाद फिर उनका फोन आया कि भाई तुमने विचार किया?
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा जी हाँ किया। तो ऐसे करते करते किसी के रेफरेंस से मैं गया, और बस एक प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम कह लो, मेरी यूएसपी कह लो, या मेरी अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, या तो मैं कोई काम करता हूँ या करता ही नहीं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें ऐसा हम एंगेज हुए कि सब कुछ छूटता चला गया, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए और रिसर्च करनी शुरू कर दी और मेहनत करनी शुरू कर दी। बहुत धक्के भी खाए रैलीज में, यहाँ वहाँ बहुत मेहनत करी।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने खुद देखा प्रैक्टिकली कि मेरे पास तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, किसी लीडर्स का मेरे सिर पे हाथ नहीं था, तो मेरे लिए वो रास्ता था वो थोड़ा ज्यादा लंबा रहा कि जिसे कहा जा सकता है कि कहीं पे हम एक किलोमीटर आसानी से सीधा जा सकते हैं, तो उस एक किलोमीटर के लिए मुझे 15 किलोमीटर चलना पड़ा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ये चैलेंजेस थे मेरे साथ, लेकिन मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि वो चैलेंज ना होते तो शायद मैं आज इतनी गहराई तक उन चीजों को सीख करके आगे ना आता, फिर आज मेरे लिए चैलेंज बन जाते। वो कहते हैं ना, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो हमने नियम को पकड़ के रखा तो आज थोड़े से फलदायी नजर आ रहे हैं, पहले तो कष्टदायी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
0: जी बिल्कुल। यानी जो रास्ता आसानी से बहुत सारे लोग ऐसे तय कर जाते हैं, जो जनरली कहा जाता है पॉलिटिक्स में अगर आप खानदानी पॉलिटिशियन हैं तो बहुत आसानी से आप आगे बढ़ जाते हैं।
1: थोड़ा सा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जिसको हम आसानी से कहते हैं, इसीलिए मैंने बोला जिसे जो आसानी से चीज मिलती है वो बाद में जाके पेन देती है।
0: हाँ, शुरुआत में तो आपको
1: शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसमें स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं वो आपको बाद में जाकर बहुत मजबूती देती है। तो इसलिए आप प्रिपेयर होते हैं, आप लूज नहीं कर रहे होते कुछ भी, और आपको क्योंकि आपने वो सारे रास्ते देखे हैं और उन रास्तों पे वापस भी चलना पड़े तो आपके लिए वो नए नहीं होंगे, आपके पहचाने भी होंगे, तो आप विल बी कंफर्टेबल ऑल द टाइम।
0: तो मुश्किल रास्तों पर चलना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। अक्सर आसान रास्ते आपको काफी दूर तक नहीं ले जा पाते, लेकिन मुश्किल रास्ते आपकी दूरियां और आपकी मंजिल को और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। दूरियां छोटी कर देते हैं लेकिन मंजिल बहुत कमाल की हो जाती है। राजीव जेटली हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है इस चीज का। तो दोस्तों, बातें और भी जारी रहेंगी, कुछ खास, कुछ मोटिवेटेड, कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने मैसेजेस के जरिए हमें बता सकते हैं आप अपनी राय 8010781078 पर। बातों का सिलसिला जारी रहेगा छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और आज हम जिनसे बात करें हैं वो है मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत सी अलग अलग प्लानिंग्स जो कि स्ट्रैटेजिक मीडिया प्लानिंग्स होती हैं, सरकारी कम्युनिकेशंस होते हैं, पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव्स होते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से वो मीडिया से रूबरू होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ करते हैं राजीव जेटली जी हमारे बीच में हैं, जो कि मीडिया एडवाइजर टू द ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा हैं, और इनसे आज हम कुछ हट के बात करें, यानी राजनीति के बारे में बात नहीं करें, लेकिन हाँ राजनीति में कैसे पहुँचे ये तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन आगे भी और भी बहुत सी बातें जान रहे हैं। राजीव जी, कोई ऐसा अनुभव, अभी आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स में आ गए, बस आपको किसी ने परखा, शायद तराश लिया और आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि एक जौहरी की नज़र ही होती है जो हीरे को देख के समझ जाती है कि कितना चमकदार है, तो आप उस फील्ड में एंटर कर गए, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें वाकई बहुत स्ट्रगल होती है। शायद लोगों को लगता हो कि सब कुछ प्लेटर पे आ जाता है, बट हमने देखा है क्योंकि हम मीडिया की फील्ड से हैं तो हम जानते हैं कि एक रैली के लिए बस में लोगों को ऑर्गेनाइज करके लेके जाना, उनको समझाना, और फिर उसके बाद इलेक्शंस में रातों रात भी आप सो नहीं पाते हैं, आप चलते रहते हैं, आप चाहे आप एक कंटेस्टेंट हो या ना हो, आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपने कहते हैं ना स्वार्थ के, आप उस पार्टी के साथ, उस नेता के साथ चलते रहते हैं। सो ये जो स्ट्रगल होती है, ये आजकल के शायद बच्चों को, या मैं कहूँगी युवाओं को नहीं पता, उन्हें लगता है चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दे रही है, और आजकल कुछ हद तक है भी सही। सो कुछ वो स्ट्रगल के दिन हमें ज़रूर बताएं, कुछ ऐसा अनुभव जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें।
1: इसमें दो बातें आती हैं, मैंने क्या स्ट्रगल किया मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं कई बार, ये एक जनरेशन गैप भी रहता है हमारा, हमें भी ऐसे ही बोला जाता था कि हमने कितना स्ट्रगल किया, आज तुम्हारे पास उतना नहीं है, हमारे वक्त में लाइट नहीं होती थी, हम ऐसे पढ़ते थे, हमारे वक्त में पंखे नहीं होते थे, हमारे वक्त में पानी ऐसे आता था, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद जब हम आए तो हमें लगता था कि ये मेरा स्ट्रगल है, इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के भी अपने अपने स्ट्रगल हैं, लेकिन हम उनसे अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरी जैसी बात क्यों नहीं कर रहा, हमें ये नहीं पता कि उसके स्ट्रगल्स किस लेवल के हैं, वो किस तरीके से उसको देख रहा है, किस तरीके से उसको फेस कर रहा है। तो हम, ये जो गैप है ना, ये गैप कहीं ना कहीं पर, अच्छा पहले क्या होता था, ये ट्रांजिशन बहुत स्लो था, टेक्नोलॉजी तो आ रही थी लेकिन काफी स्लो था, तो एक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन जो पिछली पीढ़ी गई थी और जो अगली पीढ़ी आई थी उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा अच्छा था। अभी क्या हुआ, जो पिछले 10-20 सालों में देखेंगे, 10-20 साल में नहीं, 15-1 सालों में देखेंगे, 15 सालों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतनी चेंज हुआ कि हम भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है। अब कई बार हम क्या कि हम अपने एक कुछ टेक्नोलॉजी के साथ जितनी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसको लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं फिर वो हमें बताते हैं, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात हो गई, उनके तो वर्ड्स भी डिफरेंट है।
0: बिल्कुल,
1: मैं बहुत हैरान होगा आपको कि मैं अपने ही बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा धीरे बोल, समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि वो कार्टून की तरह बोलते हैं, उनकी
0: स्पीड, जो है,
1: स्पीड इतनी तेज हो चुकी है, वो वीडियो देखते हैं तो फास्ट स्पीड पे देखते हैं, बोलते हैं तो फास्ट स्पीड पे बोलते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई मेरे को तेरी बात नहीं समझ आ रही, तू मेरा ही बच्चा है, मैं तेरे को ही नहीं समझ पा रहा, तो सोचो कि कितना बड़ा गैप आ चुका है हमारे बीच में, और वो आपस में समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये एक चुनौती इसलिए हो गई क्योंकि हम अपने से बाहर निकले नहीं और वो बहुत फॉरवर्ड हो गए। तो ये आज देखिए, मैं तो आई सैल्यूट टू दिस पीपल, दिस यंग्स, क्योंकि हम जिस लेवल पे शायद हम अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं सीख पाए थे, उतनी बात कोई आपको 5th क्लास का बच्चा बता सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस तरह की वोकैबुलरी उनकी है, जिस तरीके के नॉलेज उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि हमारे दौर में शायद कोई आदमी ने किसी एक सब्जेक्ट पे PhD भी करी हो तो उतनी नॉलेज नहीं रखता होगा। हम कहते तो हैं पहले एजुकेशन हाई लेवल के दिन, मैं नहीं मानता इस बात को। जिस लेवल पे आज बच्चे खड़े हैं, हाँ ये एक थोड़ा सा मेरे को कई बार डाउट होता है कि जिस लेवल पे वो, जिस फास्ट स्पीड से वो आगे चल रहे हैं, अपनी एज से जो आगे आगे चलते चले जा रहे हैं नॉलेज को लेकर के,

0: वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत ना लेकर के, अगर ये हाँ, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा और वो अपग्रेड होते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं सैचुरेशन स्टेज ना आ जाए, क्योंकि सैचुरेशन स्टेज बहुत बुरी चीज होती है। जब वो आती है तो उसके बाद देखा आपने कि ये जो कई बार आपने देखा होगा कि हर आदमी जो बहुत कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लेता है, फिर ही वांट टू गेट इनटू समथिंग न्यू, और वो न्यू जो सा होता है कई बार उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता है, कई बार नशे में ले जाता है, क्योंकि उसको हर नई चीज एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये नुकसान तो कई बार होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले गए, मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में कि लीकर की सेल डाउन हो गई है, शराब की सेल कम हो गई है, तो उसके पीछे की जो वजह बताई कि अब बच्चों को नशा टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो शराब की नशे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए, इससे एक बात का अंदाजा लगता है कि इसका नशा कितना बड़ा है।
1: अरे एब्सोल्युटली, मुझे लगता है बच्चों में क्या, आप बड़ों में देखिए। हाँ। हम बुजुर्गों को देखते हैं पार्क में सुबह सैर करते हुए,
0: सुबह
1: जैसे ही वो बैठते हैं बेंच पे, सबकी जेब से फोन निकल आते हैं, चाहे वो भजन सुन रहे हो, चाहे वो कोई कथा सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, बट एक वो नशा रहता है, आपका एडिक्शन है। आप चाहे रात को सो रहे हो, सोते सोते आप फोन देख के सोते हैं, पहले हम एक दूसरे से मिलके गुड नाइट बोल के सोते थे, अब हम फोन देख के सोते हैं और सबसे पहले फोन को उठाते हैं उठते ही। तो ये तो एक एडिक्शन
0: मेरे को लगता है, ये भी अच्छे के लिए। आपने देखा पीछे कई, मैंने ऐसी मूवीज देखी, आपने भी देखी होंगी, अवतार जैसी मूवीज आई, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे। असली प्रॉब्लम ये थी, और ये भी कहते थे कि भाई मुझे सब कुछ तो मिल गया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है,
1: टाइम नहीं है,
0: ठीक है, बच्चों के पास टाइम नहीं है। आज वो इतने बिजी हैं अपने मोबाइल के साथ कि उनको लगता है कि मेरे को कोई टाइम देने वाला है। मैं आज कोई व्यक्ति अगर किसी को वेट करना है किसी के लिए, और मैं तो रेड लाइट पे देखता हूँ, ये जो सिग्नल्स पे लोग 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, 2 मिनट भी अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं कुछ देखने के लिए, तो उन्होंने पहले तो लगाया था टाइमर कि सिग्नल पे कि इतने मिनट के बाद, ताकि आदमी बोर ना हो, ही शुड बी प्रिपेयर कि इतनी देर में गाड़ी चलेगी। लेकिन अब मैंने देखा है कि कई बार लोग अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें लगा लेते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, वो ग्रीन हो जाता है, उसके बाद उनका ध्यान होता है, पीछे हॉर्न बजता है, तब जाके वो आगे चलते हैं। तो सोचिए कि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हो रही है, कुछ कुछ नुकसान तो होते ही, वो कब होंगे कैसे होंगे, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होंगे उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे आगे।
1: जी बिल्कुल। अब जब फोन की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप कितना समय फोन पे बिताते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, एक शहर के बारे में नहीं, पूरे राज्य के बारे में, और कुछ मामलों में तो आपको देश के बारे में जानकारी चाहिए, और एक प्रवक्ता के तौर पर जब आप डिबेट के लिए जाते हैं कैसी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने जब प्रवक्ताओं को देखा है स्क्रीन पर, एक तो गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं और दूसरी सबसे कमाल की चीज ये होती है, हर एक चीज के बारे में बहुत जानकारी होती है, मतलब आपको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, बट जब आप इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं तो चीजें भूल भी जाते हैं, और आप लाइव डिबेट में ये रिस्क नहीं ले सकते।
0: मुझे याद है कि जब मैं पहले डेली मेरे पास एक डायरी होती थी, और कहीं कोई कुछ कहता था, कहीं कुछ बोलता था, या मैं कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ता था या न्यूज़ में सुनता था, तो मैं डायरी में उसको नोट कर लेता था।
1: अच्छा।
0: और उसका मैंने एक इंडेक्स भी बना रखा था, और मैंने एक कुछ पेजेस बनाए हुए थे, कुछ मैंने लॉ एंड ऑर्डर पे बना रखे थे,
1: तो
0: उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, ये मेरे बिगनिंग जो मेरे इनिशियल डेज थे जब मैंने शुरुआत करी थी तब की बात है, इसी तरीके से अलग अलग मैंने बना रखे थे। तो जब भी मुझे कोई डिबेट आती थी मैं उस दिन उसको पढ़ता था कि अगर मुझे कौन सा कंटेंट कहाँ यूज करना पड़ जाए वो मैं देखूंगा। लेकिन फ्रेंकली आज शायद मैंने अब कोई नोट नहीं बनाना होता, क्योंकि अभी इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि अब हमें कई बार 15 मिनट का टाइम मिलता है जी, इस सब्जेक्ट पे डिबेट है, कंटेंट अभी नहीं, अपने आप हैंडल कर लेना, ठीक है,
1: इतना एक्सपीरियंस हो गया,
0: वो होता है, फिर उसके बाद वो आ जाता है। लेकिन नो डाउट ये हम पहले न्यूज़पेपर का वेट करते थे नेक्स्ट डे, आज हमारे पास कोई भी खबर होती है इतनी फास्ट आती कि न्यूज चैनल उसको कवर नहीं कर पाता, उससे पहले हम इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं उसको।
1: बिल्कुल।
0: इतनी फास्ट न्यूज आती है और वो इतना अपडेट कर जाती है आपको कि आपको सब कुछ पता ही होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है आधे घंटे पुरानी खबर भी आपको बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है, मतलब इतनी पुरानी और बासी लगती
1: है,
0: इतनी बार वो आ चुकी है। तो ये नो डाउट अब कोई भी चीज के लिए, मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि ठीक है हम प्रवक्ता हैं, हमारे को अपनी पार्टी की लाइन रखनी है और पार्टी का विचार रखना है, लेकिन नो डाउट कि अब क्योंकि हर आदमी के पास इतने कंटेंट हैं देखने के लिए, कि शायद वो हमें सुनता भी है कि नहीं सुनता। मैं एक दिन मैं अपने बॉस से हंस रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई माइलेज मिलता है आपको टीवी पे जाते हो तो डिबेट में जाते हो। तो मैंने कहा सर मुझे तो एक चीज़ तो मेरे को है एक जगह पे, पहले तो मैं फ्लाइट में जाता था तो हर आदमी पहचानता था, ट्रेन में कभी गया तो उधर भी सब लोग पहचान लेते थे, कोई सेल्फी भी खिंचवा के चले जाते थे। लेकिन अब मैंने कहते हैं अब आजकल, मैंने कहा आजकल एटीएम में जो हमारे सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं वो पहचान लेते हैं, क्योंकि वो एटीएम के अंदर बैठते हैं, कोई काम होता नहीं, वो सारा दिन रील देखते रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको दिख जाते हैं सुबह से शाम तक। तो मैंने कहा अब हमारी पहचान यहाँ तक रहेगी क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो गई, सब बहुत सारे सोर्सेस हैं। और वो जो गाना नहीं है अमिताभ बच्चन का, मुझसे बेहतर कहने वाले मुझसे बेहतर सुनने वाले, तो वो गाना मैं आज कल दो दिन पहले सुन रहा था वो, कि कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे। हुँ? तो उसमें बहुत बात वही थी कि भाई हर रोज चीजें बदल रही हैं, रोज टेस्ट भी बदल रहे हैं, सिस्टम भी बदल रहे हैं, थॉट्स भी बदल रहे हैं, इंटरेस्ट भी बदल रहे हैं। तो या तो हमें अपने आप को बदलना है उनके साथ साथ,
1: बिल्कुल
0: हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे और वो कलर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, और बदलना एक प्रकृति का नियम भी है, लेकिन समय के साथ बदलाव हो तो अच्छा लगता है, पर बदलाव थोड़ा तेजी से आ रहा है आजकल के समय में। तो बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। राजीव जेटली जी से बातों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में बहुत सी बातों के साथ साथ कुछ मीठे मीठे गाने भी, यानी म्यूजिकल ब्रेक भी। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सी बातें चल रही हैं आज हमारे खास मेहमान राजीव जेटली जी से, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं टू द ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा और साथ ही नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज, मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या होंगी, किस तरीके से इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग होगी, किस तरीके से प्रेस आउटरीच होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होते हैं, उसमें डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, इलेक्शन वॉर रूम कम्युनिकेशन सपोर्ट कैसे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद एक आम इंसान को नहीं पता होती, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और ऐसे ही शख्स हमारे बीच हैं राजीव जेटली जी, जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा, और इनसे कुछ ख़ास बातों का सिलसिला जारी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं और स्पोक्स पर्सन की प्रोफाइल पर हैं नेशनल लेवल पर, और इसके साथ साथ आप मीडिया एडवाइज़र हैं माननीय मुख्यमंत्री के, सो यहाँ पर कैसी तैयारी आपकी रहती, क्योंकि मीडिया आजकल के समय में फोन में आ गया है, ये छोटी सी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया दिखा देती है। जैसा आपने कहा कि एक के बाद एक रील्स आती रहती हैं एल्गोरिथम के थ्रू, आप जो है दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन 5 मिनट में ले लेते हैं, तो ऐसे में आपकी तैयारी कैसे होती है, आप अपनी तैयारी कैसे रखते हैं और मेंटली कैसे स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग भी होती है।
1: ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मीडिया मैनेजमेंट बहुत आसान होता था, और इतना आसान होता था किसी भी एडवाइजर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इतने न्यूज़पेपर, इतने न्यूज़ चैनल,
0: इतने चैनल जी।
1: आज की डेट में इतने न्यूज़पेपर तो है ही हैं, उतने चैनल भी हैं, लेकिन साथ में हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज़ के, जिसको आपको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार तो क्योंकि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी नहीं आते हैं, तो उन वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, एथिक्स की भी कई बार कमी हो जाती है, क्रेडिबिलिटी की भी कई बार कमी हो जाती है। तो ऐसे में 3-4 हज़ार लोगों को एक साथ देखना, ये मेरे लिए, हमारे लिए नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन कोशिश होती है। फिर कुछ कुछ फार्मूलेस बनाने पड़ते हैं, मन में सोचने होते हैं कि इनको एक साथ कैसे करा जाए या कैसे कैसे करा जाए, ये असली चैलेंज है आज की डेट में। देर आर वेरियस, बहुत सारे टूल्स भी आते हैं इन चीज़ों के, लेकिन वो टूल्स किसी को डाउन करने के लिए, किसी को उठाने के लिए हो सकते हैं। अगर फिजिकली आप सोचते हैं कि आपको चीज़ों को मैनेज करना है, तो फिर आपको फार्मूलाज, फिर आते हैं ना वहीं पे घूम फिर के पाइथागोरस का फार्मूला जाता है कि आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। टूल्स को यूज करोगे तो किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, लेकिन इवेंचुअली इतनी चीजें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है कि वो टूल्स भी शायद कल काम करने बंद कर देंगे,
0: बिल्कुल,
1: फिर आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी वहां पर।
0: और ऐसे में मुझे लगता है एथिक्स की बात आपने कही, एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एथिक्स की बात आपने कही और एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम मीडिया के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं मीडिया के, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको एथिकल काम करना होगा, मतलब आपको वो काम करना होगा जो सही है। लेकिन आजकल के समय में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, बहुत सारे तो सही काम कर रहे हैं, अच्छे भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी लेकर आ रहे हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कि आपको जेन्युइन सोर्स नहीं होते हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा, एआई की वजह से बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो ठीक नहीं है, या जिसको आप बुजुर्ग देख रहे हैं उनको लग रहा है अरे ये तो सच में हो गया, और वो उसको सच मान बैठे हैं और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं देख के कि ये एआई कंटेंट और नहीं है, ये नहीं समझ पाते। सो एथिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे,
1: ये बड़ा लागू करता हूँ, ये एथिक्स वो आज का शब्द नहीं है, एथिक्स तो हमारे ग्रंथों में ही आ गया था
0: जी,
1: ऋषि मुनियों ने भी बता दिया था, तो एथिक्स आज का शब्द नहीं है। थोड़ा सा इसको रिफाइंड तरीके से जब मल्टीनेशनल इंडिया में आई, तब उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट एक अलग एथिकल डिपार्टमेंट बनाया कि कंपनी के में काम करने के एथिक्स क्या होंगे। एथिक्स तो बहुत सिंपल एक शब्द है, देखिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपको मौका मिला है, आज आप जल्दी जल्दी से, हम वहीं चलते हैं वापस जहां से हमने शुरुआत करी थी, कि अगर आपकी बिगिनिंग में स्ट्रगल कम होगी तो बाद में आपको तकलीफ आएगी। ये सस्ती टीआरपी और नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाने के लिए जो आप ये रास्ता चूज करते हैं, वो रास्ता आपको कल ना कहीं पे डेड कर देता है, खत्म कर देता है। मैं किसी एक्टर के एक्ट्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं I'm sorry to say, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको राखी सावंत बनना है या समिता पाटिल बनना है, क्योंकि देखिए जल्दी टीआरपी आपको मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो बेनिफिट देगी चीज,
0: जो लोग याद करेंगे,
1: तो आपकी कला होगी, वो आपका काम होगा, वो आपकी मैच्योरिटी होगी, वो आपकी डिलीवरी होगी, बहुत सारी चीजें मिलकर के तब आप एक मुकाम पा सकते हैं जहां पर जाकर के आप कहें कि आज लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबल शब्द जो है ना वो अपने आप में सब कुछ प्रूव कर देते हैं। तो अगर मैं भी देखूंगा कि भाई आज इसने खबर डाली है या न्यूज चलाई है, मुझे पता कल को पता चला ये तो फेक थी, ये तो बनावटी थी, कल से मेरे उसके प्लेटफॉर्म के प्रति मेरे जो उनसा
0: नेगेटिव हो जाएगा,
1: नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, मेरी क्रेडिट, उस वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका होगा। वो आप कुछ भी लिखता चला जाए, कुछ भी बोलता चला जाए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसी अगर कोई आज नहीं चल रहा है, किसी को आज 200 व्यू मिल रहे हैं, किसी दूसरे को 10,000 व्यू मिल रहे हैं, आज उसको 200 मिल रहे हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा ही इज द क्रेडिबल, इसकी न्यूज क्रेडिबल है, तो कल को अपने आप वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल। तो आपको ये फॉलो करके चलना, ये निर्भर आप पर करता है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, चॉइस आपकी है। प्लेटफॉर्म वही रहेगा लेकिन सर्वाइव वो करेगा जो अपनी पेशेंस बना के एथिकल ग्राउंड पे क्रेडिबल के साथ अपनी डिलीवरी देके आएगा।
0: जी बिल्कुल। और सक्सेस की बात करते हैं, आजकल जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो बच्चों से जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम युवाओं के बीच ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों का जो एम होता है ना, वो करियर में होता है कि हमें यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। और हमारी कैंपस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब लाखों की फ़ैन फॉलोइंग है बहुत सारे बच्चों की। सो क्या सिर्फ ये रास्ता चुनना सही है कि हाँ सोशल मीडिया पे आप अपनी पहचान बना लें तो आप आगे बढ़ जाएंगे, या अपनी फील्ड में पकड़ बनानी भी ज़रूरी है, जो बच्चों को शायद अभी नहीं समझ आ रहा है। या तो हमारे पास वो बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र में जानते हैं कि हमें म्यूजिशियन बनना है या आर्किटेक्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, या फिर कुछ युवा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर जाके ही अपनी पहचान बना के खुश हैं।
1: मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने सोल्यूशन दे दिया, ये प्रॉब्लम नहीं है जो बात आपने करी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप बनिए इन्फ्लुएंसर्स, आप सोशल मीडिया पे आइए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आपकी दूसरी वर्किंग चल रही है, या आपकी पढ़ाई चल रही है, या आपको कोर्स चल रहा है, आप उसमें बनिए ना। आपके पास भी एक बड़ा व्यूअर होगा जो आपको देखेगा। मान लीजिए मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं मेडिकल के ऊपर ही कोई ना कोई नई रिसर्च के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं इनवाइट करता हूँ कि भाई मैंने आज साइंस मैगजीन में पढ़ा और उसमें इस तरीके का फाइंडिंग्स आई हैं और एक क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3, 4 पे चल रहा है और FDA में अप्रूवल मिली है कि नहीं मिली और दिस दैट, देखिए आपको क्यों नहीं चलेगा।
0: अगर आप फील्ड की इन्फॉर्मेशन,
1: अपनी फील्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। अब मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, फिर भी आपने बैग उठाया और चल पड़े कि मैं आज आपको हिमाचल घुमा के लाऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि चल रहा है, आप फूडी बन गए, फूड के ऊपर बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर उसमें भी करना है तो आपको यू शुड चूज योर ओन फील्ड।
0: बिल्कुल,
1: वो आपको देगी, पे करके जाएगी।
0: तो आप अपनी फील्ड को भी समझ पाएंगे और अच्छे उसकी रिसर्च भी कर पाएंगे,
1: उसके भी व्यूअर्स होंगे अपने, उसके भी अपने रिसर्च करके। कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी भी फील्ड से आता है, वो उस चीज पर डिस्कस करेगा। उसके जैसे लोग उसकी बात को समझने वाले लोग नहीं आएंगे क्या? जैसे लोग कोई महात्मा होता है, संत जिसे कहते हैं हम, उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, अब इतने सारी लोग होते हैं, उसमें से जिनको उनकी बात अच्छी लगी उनके फॉलोअर बन गए, जिनको नहीं लगी वो दूसरी जगह चले गए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये ओपन है मार्केट।
0: बिल्कुल, मार्केट ओपन है, बस आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं उस मार्केट में। तो दोस्तों बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर, और इस ऐप में RJ दीक्षा के फोल्डर में पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको राजीव जेटली जी से ये सारी बातचीत मिल जाएगी, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इस बातचीत को आप हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, रील्स और पॉडकास्ट के माध्यम से। रेडियो मानव रचना का इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज जरूर लाइक कीजिए।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें और कुछ खास जानकारी। आपके अपने शहर के निवासी हैं जो कि राष्ट्र पटल पर बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हरियाणा को भी, फरीदाबाद को भी। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी एक आम आदमी के रूप में, लेकिन राजनीति में एक बड़ा मकाम हासिल किया है। राजीव जेटली जी जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के, और सबसे कमाल की बात है ये खट्टर साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके भी मीडिया एडवाइज़र रह चुके हैं। तो बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं राजीव जेटली जी से, लेकिन आज राजनीति की बातें नहीं हो रही हैं, बातें हो रही है युवाओं की, जेंजी की, मोटिवेशन की और राजीव जेटली की अपने पर्सनल लाइफ की। राजीव जी, बहुत सारे युवाओं की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल के समय में युवा ताकत हम अपने आप को बोलते हैं, युवा देश है। बाकी अगर देशों की तुलना में बात करें तो सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है और युवाओं की अपनी बहुत ज़बरदस्त ताकत है, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बच्चे डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं क्योंकि घबरा जाते हैं। अगर कोई चीज़ उनको नहीं मिली तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ मिले, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को सब कुछ दे दें और वो समय से पहले दे भी देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना
1: बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी कि बच्चों को पूरी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए टेक्नोलॉजी को सीखने की, आगे बढ़ने की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है जहाँ पर आती है, जैसे आपने स्ट्रेस की बात करी, एंजाइटी आजकल सबसे बड़ा बीमारी चल रही है, ये तभी शुरू होती है। बचपन तो आपके कंट्रोल में रहता है, थोड़े से बड़े होने के बाद वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन आप मैंडेटरी उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको खेलना शुरू करवाते हैं, एक आदत डाल दें उनको कि आपको इतनी एक्सरसाइज तो करने ही करनी है, इतनी देर तो खेलना ही खेलना है। तो देखो, सबसे बड़ा एंजाइटी किलर तो आप कहते हैं एक्सरसाइज ही होती है, स्पोर्ट्स ही होते हैं, या स्ट्रेस किलर भी जो सब स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज ही है हमारी। तो ये काम मुझे लगता है पेरेंट्स को करना चाहिए, बाकी लेट देम लिव, जैसे वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, फिजिकली उसको मजबूत रखिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए पढ़ाई वढ़ाई पे तो बहुत जोर देने का मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पढ़ते हैं और आपसे अच्छा, उनके पैरामीटर्स ही बहुत हाई हो गए। हम देखिए, जब मैं स्कूल में 10th का रिजल्ट आता था या बोर्ड के एग्जाम होते थे, हम जब अपना रिजल्ट उस टाइम दुकान न्यूज़पेपर भी और स्टेशनरी की शॉप्स पे आता था, वो तो स्टेशनरी की शॉप पे आता था, जैसे ही हम उससे पूछते थे रोल नंबर दिस, तो वो ये कहता था पास हो गए, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते थे कि दोबारा बुला के ना बोलते फेल हो गए, तो पास हो गए ही बहुत बड़ी बात थी। और आज बच्चे जो उनसे हैं वो 98% लेने के बाद इस बात को रो रहे होते हैं 2% मेरे कहाँ कटे हैं। तो यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता शायद हमें नहीं करनी है, अब उनकी फिजिकल एक्टिविटीज की चिंता करनी है, कितने मजबूत हो रहे हैं, उनके इम्यून सिस्टम की चिंता करनी है, उनके बेसिकली ये है कि अब हमारे को उनको फिट रखना है, बाकी तो उनको आपको समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही बहुत बड़े ट्रेंड है वो।
0: बिल्कुल, यानी पढ़ाई जो है वो हर बच्चा कर ही लेता है। देखिए, स्कूल जाता है, 6-7 घंटे वहाँ बैठता है, किताबें पढ़ रहा है, और अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का वो आप उसको यूज करवाइए कि अपने सब्जेक्ट की वीडियोस देखो।
1: नहीं, वो अपने आप, वो दे आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज मैंने देखा उसको कि आजकल तो हम तो स्कूल में छुट्टी होती हो जाए तो हम इतने खुश होते थे, सुबह हम कई बार बीमारी का बहाना भी करते थे कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब तुम बच्चे को खुद बोलोगे कि नहीं आज छुट्टी कर ले तो छुट्टी करने को तैयार नहीं है,
0: उसको ज्यादा मजा स्कूल में। स्कूलों का सिस्टम बदल गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका राज, कि इतने सारे कामों के बीच, इतने प्रोफाइल संभालने के बाद अपने लेवल पे आप स्ट्रेस को कैसे दूर रखते हैं, क्या करते हैं, आपका रूटीन क्या होता है?
1: देखिए, मैं तो एक बात के लिए बहुत मैं एक्सरसाइज से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता।
0: अच्छा,
1: और मैं मेडिटेशन भी डेली करता हूँ।
0: टाइम कैसे मिलता है, मैं टाइम मैनेजमेंट जानना चाह रही हूँ, क्योंकि
1: सुबह सुबह आप वॉक करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए और मेडिटेशन करिए, 3-4 चीजें नहीं करोगे तो मर जाओगे आप। ये जरूरी है, ये करनी ही पड़ेंगी आपको। और सबसे मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो है वो एक्सरसाइज जरूरी है, और मेडिटेशन उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया आजकल मेंटल हेल्थ के लिए हमारी, तो आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और करनी अच्छी टेक्निक के साथ आप करेंगे तो काफी आपको स्ट्रेस कम होगा। मैं आई वेंट थ्रू ऑल दिस, मैं एक एंजाइटी प्रॉब्लम से निकला हूँ।
0: अच्छा,
1: उसके बाद ही मैं इन चीजों की तरफ गया हूँ, नहीं तो मुझे पहले नहीं पता था कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मेडिटेशन के, योग के बेनिफिट्स क्या होते हैं,
0: बिल्कुल
1: स्ट्रेचिंग के और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं एक बार मुझे आई हैड सम प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन किसी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि भाई आपको ऐसा लगता है इरिटेटिंग बॉल सिंड्रोम है, IBS है, तो और डॉक्टर ने बोला, डायग्नोस तो नहीं किया था उसने, तो मैंने उससे पूछा कि जी इसका IBS का ट्रीटमेंट कैसे है, कोई देयर इज नो नोन क्योर फॉर द IBS। तो मैंने फिर भी क्या है, कहते यादव आप गोली खाओ या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करो। जिस दिन उसने मुझे बोला 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज तो मैं पहले भी करता था, स्पोर्ट्स में हम पूरी तरह से एक्टिव रहते थे, लेकिन फिर मैं और ज्यादा सीरियसली उसको काम को करना शुरू किया, मुझे आज तक वो प्रॉब्लम नहीं आई। आज 15 साल हो गए। तो मैंने सोचा कितनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रही है एक ही बात, और हमारी बॉडी को फिक्स कर रही है, उसी को अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं तो सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप यू शुड गो फॉर एक्सरसाइज,
0: बिल्कुल
1: योग जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें।
0: बिल्कुल, और हमारे देश में तो मतलब योग इतना खूबसूरती से सिखाया जाता है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कहीं नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है आप अपने इसी फोन पे सीख लीजिए, देख लीजिए कुछ अच्छे।
1: जो करने वाला होता है
0: वो कहीं से भी
1: नहीं, जो करने वाला होता है, जो कर रहा होता है वो दूसरे की नजर में बेवकूफ होता है, ये क्या कर रहा है ये, लेकिन जो महसूस कर रहा होता है उसे लगता है ये बेवकूफ है,
0: बिल्कुल
1: दूसरे ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या चमत्कार मेरे अंदर हो रहे हैं इस टाइम।
0: बिल्कुल, तो योग करने से, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, योग करने से आपका सिर्फ शरीर ठीक नहीं रहता, आपका मन
1: मेंटली
0: अच्छा रहता है,
1: मन भी, यस,
0: आप ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं चीजों पे, आप ज्यादा अच्छी बात कर पाते हैं, आप में संयम आ जाता है, ठहराव आ जाता है, ये चीजें मुझे पर्सनली
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप इंसाइक्लोपीडिया हो जाते हैं, आप आर्टिकुलेट हो जाते हैं, और आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता, कोई कितना भी लोड डाल दे आपके पास फार्मूलास होते हैं हर बात से बाहर निकलने के।
0: युवाओं की बात कर रहे हैं राजीव जी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, आजकल के बच्चों में, बच्चों की भी बात नहीं कर रही हूं मैं, आजकल के लोगों की ही बात करूंगी, चाहे उम्र आप 25 साल की लगा लें चाहे 50 की लगा लें, पेशेंस बहुत कम हो गया है लोगों में। रोज आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, कि आप तो पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर जब भी सुबह देखते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को अक्सर लोग मना कर देते हैं पढ़ने से, बच्चों को बोले न्यूज़पेपर पढ़ो तो कह रहे हैं अरे मैम शुरू के 3 पेजेस में तो सिर्फ क्राइम ही होता, ये पढ़ के सुबह सुबह मूड खराब हो जाता, तो क्यों पढ़ें। अब ये क्राइम जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके मन में, आपके दिमाग में पेशेंस नहीं है, आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम योग की बात करें लेकिन आपको क्या लगता है ये पेशेंस कैसे आएगी, क्योंकि हम 20-25 साल पहले ये चीज़ें लगाएं तो कोई एक हादसा होता था जो न्यूज़पेपर में आता था कि हाँ उस शहर में मर्डर हो गया या वहाँ पर रोड रेज हो गया, आजकल भरा पड़ा रहता है न्यूज़पेपर और रील्स भरी हुई।
1: ये सारा प्रॉब्लम जो है, क्योंकि जब कोई आदमी यंग है तो उसके अंदर एनर्जी तो है, ऊर्जा तो पूरी है, लेकिन ऊर्जा अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसको वेस्ट नहीं कर रहा, तो कहीं तो यूज होनी है, वो ब्रेन में भी जाएगी, कहीं ना कहीं वो एग्रेशन की फॉर्म में बाहर भी निकलेगी। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है सारी बीमारियों की जड़ केवल इतनी ही है कि अगर हम कहीं पर फिजिकल एक्सरसाइज से दूर जा रहे हैं तो हम इम्पेशेंट हो रहे हैं, हम सड़कों पर अपनी उस पावर को दिखाना चाह रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर जल्दी से एग्रेशन में आ जाते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, और आपने देखा अब तो ये अपना आपा खो देते हैं, अगर किसी के पास कोई वेपन है तो वो वेपन को इजीली यूज कर रहा है, उसको इसको ये भी नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, उसको उसके उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके बारे में अंदाजा ही नहीं है, तो वहां अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी लूज कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ जो रोल रहने वाला है वो माँ बाप का ही रहने वाला है, पेरेंट्स का ही रहने वाला है। एक एक बात को सोच के बैठ जाएं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन वो फिजिकली फिट है कि नहीं है इस बात को इंश्योर कर ले, क्योंकि पढ़ाना और लिखाना, पढ़ना और लिखना ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं अंग बन चुका है, और उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है, उनको पता है कि अगर मुझे इस सोसाइटी में रहना है तो मुझे हैव टू बी इक्वल टू ऑल दीज पीपल, तो वो तो करेगा ही करेगा, उसको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको देखो, ज़्यादा लाड़ प्यार में कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको चॉकलेट खिला के और मैगी खिला के लास्ट में इस नौबत पे ला दो कि फिर वो इस तरीके से एग्रेशन दिखाना शुरू कर दे।
0: बिल्कुल, तो फिजिकल यानी एनर्जी को डाइवर्ट करने की जरूरत है, जो एनर्जी आप घर पे रहकर सिर्फ फोन के आगे या किताबों के आगे, फॉर दैट मैटर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई बच्चे होते हैं जो खेलने नहीं जाते, सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं, उन बच्चों के लिए भी खेलना जरूरी है, उन युवाओं के लिए भी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी सारा दिन शरीर में जा रही है, एनर्जी तो है, तो उसको कहीं डाइवर्ट कीजिए ताकि गलत चीज के लिए समय ही ना बचे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कुछ खास बताना चाहें, कुछ खास कहना चाहें तो कह सकते हैं आप 8010781078 पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: खास इन्फॉर्मेशन, कुछ खास बातचीत। रूबरू हैं आज हमारे खास मेहमान राजीव जेटली जी के साथ, मीडिया एडवाइजर टू द सीएम ऑफ हरियाणा, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, इलेक्शन कम्युनिकेशन और मीडिया स्ट्रेटजी एक्सपर्ट। और राजीव जेटली जी से बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेडियो मानव रचना के साथ इनका सफ़र बहुत पुराना है, लगभग 10-12 साल पहले से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी डिस्कशंस का हिस्सा रह चुके हैं एज एन एक्सपर्ट, और आज ये हमारे सिर्फ एक बुलावे पर यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो राजीव जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। सर, ये भी जानना चाहूँगी आपसे, आप पॉलिटिक्स में आए और आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आजकल का युवा पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसे शौक है आने का लेकिन उसे रास्ते नहीं पता, उसे समझ नहीं आता, वो आना चाहता है, रिप्रेजेंट करना चाहता है अपने शहर को, अपने देश को एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है, पर उसे तरीके नहीं पता क्योंकि इसका कोई कोर्स नहीं होता।
1: मैं एक बात बताता हूँ आपको, आजकल क्या हुआ है कि हमने जो स्टार्टअप्स लेकर के आए हैं, मेरी क्रिएटिविटी के लिए मेरे को सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसको मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट कह लूँ या नेगेटिव पॉइंट कह लूँ, गवर्नमेंट का तो दोनों ही इसमें एंगल है। इसमें हमें, हमारे पास कार्यकर्ताओं की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं, वो बीजेपी के अंदर आते हैं, काम करते हैं और एक विचार के साथ चलते हैं, लेकिन अगर कहीं हमें कमी महसूस होती है, हमारी ही दिए हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसी में हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि हमने उनको दिया है स्टार्टअप्स के मौके, हमने उनको दिया फाइनेंशियल
0: स्टेबिलिटी
1: का मतलब उसको किस तरीके से आपको लोन लेना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो उसे लगता है कि मैं जितने एफर्ट्स अब मेरी अपनी क्रिएटिविटी के लिए, जो मेरे पास थॉट्स हैं, जो थॉट्स पहले कहीं ना कहीं किसी और के लिए यूज करते थे, उन्होंने अपने थॉट्स को अपनी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा आम बना करके अपनी ग्रोथ के लिए

0: अपने यूएसपी की वजह से जा रहे हैं, जो उन्होंने पार्टी के लिए किया है, अब तो पार्टी नहीं करेगी आप झंडा उठा करके सड़कों पर जाइए। वो तो कहते हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे हमारी पार्टी भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, डेवलपमेंट भी हो, मल्टीपल्स एंगल आपको वही आ गई। इवेंचुअली बात तो आपकी टेक्नोलॉजी पे ही आ गई।
1: बिल्कुल,
0: ये तकनीक को मतलब स्ट्रक्चर अगर आप अच्छा बना लेंगे, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है। अब घर को आप खुद बनाए या आर्किटेक्ट से बनवाएं, तो आर्किटेक्ट से बनवाएंगे तो नो डाउट कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फाइनली जब आप देखेंगे टेक्निकली वो साउंड होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इसी तरीके से टेक्निकली जो बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में, उनको बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। हम जैसे लोग तो मर गए बीच में, क्योंकि हमने अपना पूरा टाइम निकाल दिया, तब बोलते थे आप मैच्योर नहीं हो, जब आप बड़े हो गए तो आप बड़े बनोगे, जब हमारा वक्त आया तो अब जेन ज़ी का टाइम आ गया, तो हमारा तो टाइम ही बीच में से निकल गया।
1: लेकिन देखिए, ये टाइम निकलने के बाद ये मुख्यमंत्री साहब को मीडिया की सलाह दे रहे हैं और चैनल्स पे दिखाई देते हैं, तो सर आपका टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ बातें कर लेते हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस बच्चों को, यंगस्टर्स को आज के समय में चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन स्लो सक्सेस से घबराते हैं जब समय लगता है। जैसे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले लें, क्योंकि वो अब तक हमारे देश का एक ऐसा एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बड़ा, जिसमें अगर सक्सेस नहीं मिलती दो अटेम्प्ट तक, तो तीसरे में एक व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो 5-5 अटेम्प्ट के बाद छठे में सक्सेसफुल हुए हैं। सो वो स्लो सक्सेस से घबराने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं इससे भी इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको। हम कहते हैं कि सक्सेस, अभी आप देखिए कि सिविल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, उसी के अंदर फिर उसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं। एक तो ये पार्ट है सक्सेस को देखने का। एक मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो यूपीएससी पास कर चुके हैं। मैं ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त रहे हैं, जो आईएएस टॉपर रहे हैं, और उन्होंने 1.5 साल भी जॉब नहीं करी,
1: छोड़ दिया
0: यूपीएससी पास करने के बाद। और ये जो जॉब छोड़ने वाला रेशियो है, ये और बढ़ता चला जा रहा है।
1: हाँ, आजकल काफी
0: बहुत बढ़ रहा है, जो आईएएस जॉब छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत बढ़ रहा है। तीसरी एक सबसे बड़ा चैलेंज, ये मैं पर्सनल मेरी अपनी राय है ये, कि मैक्सिमम देखिए IITian डॉक्टर्स यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी पास करते हैं, आ जाते हैं। मैं कल किसी एक मेरे एक अच्छे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और 3-4 बैठे थे, 3-4 ही MBBS थे।
1: अच्छा।
0: तो मैंने सबसे पूछा कि आपने कितने लोगों का अधिकार मारा, आपने पहले MBBS करा, उसके बाद आपने UPSC करा, वहां आपने MBBS की सीट ली, वो IITian जिसको एक बड़ा अच्छा इंजीनियर बनना था, वो भी आज एक क्लरिकल प्रशासनिक सेवा में काम कर रहा है। तो मैंने तब कहा कि यार हमारे, मेरे तो पर्सनल सोच है कि आप UPSC करके आए, लेकिन जिस फील्ड में आए हैं उसी फील्ड में जाएं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हेल्थ में जाना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूट तो करेंगे, बिकॉज आपकी जो पिछली एजुकेशन थी वो भी उसमें ऐड करेगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है, इसमें सरकार कब क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत लंबे टाइम से 31 साल से इस बात चलती आ रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो लेकिन इतनी अनंत संभावनाएं हैं, जो UPSC भी कर रहे हैं उनके पास भी हैं। देखिए, कई बार आदमी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाता, लेकिन मैंने नोटिस किया है हमेशा जो अच्छा खिलाड़ी होता कभी अच्छा कोच नहीं बन पाया वो। आप उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और जो कभी अच्छा नहीं खेल पाया उनसे बेस्ट कोच नहीं बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको आईएएस पास करने, हो सकता है आपकी पढ़ाई से दूसरे लोग आईएएस बन के आ
1: जाएं। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं सिविल सर्विसेज के जो नहीं पास कर पाए, लेकिन वो कोचिंग में आ गए, और कोचिंग में वो शायद उनसे भी बहुत आगे,
0: उनसे भी बेस्ट
1: निकल गए।
0: और दूसरी बात, आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होती है कि आप जहाँ पे भी जाएंगे उस फील्ड में कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल,
0: आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज,
1: इतनी जानकारी आ जाती है आपके दिमाग में, आपका दिमाग इतना खुल जाता है और इतना कुछ हो जाता है उसमें कि आप कभी भी, मुझे तो नहीं लगता कोई वाद संवाद कभी हार सकते हैं किसी
0: से। नहीं हार सकते।
1: बिल्कुल। राजीव जी, मीडिया की फील्ड से आप ताल्लुक रख रहे हैं, और हरियाणा का मीडिया जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सवाल जानना चाह रही हूँ। आज के समय में बहुत सारे लोग, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि मीडिया पे कंट्रोल सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई भी माइक उठा के आसानी से मीडिया का चैनल खोल के और अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता है, लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस अलग होते हैं, लेकिन आपके फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है तो आप अपने तर्क रखने लग जाते हैं। पर जो एक सही चैनल से मीडिया में जाना चाहते हैं युवा, प्रॉपर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ के, जो आज से 20 साल पहले नहीं इतना पॉपुलर था, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे मीडिया की फील्ड में जाएं, क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनको

0: अंदर लानी चाहिए?
1: बहुत लोग एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एक ही कॉलेज से करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपने देखे कि वहाँ पे इनोवेशन करके दिखाते हैं। और डॉक्टर सभी होते हैं, एक ही कॉलेज से निकल के आते हैं
0: जी।
1: लेकिन कई लोग डायग्नोस्ट बेटर करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपकी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अगर कैसे जाना चाहते हैं। देखिए, स्कूल भी एक होता है, सिलेबस भी एक होता है, कॉलेज भी एक होता है, लेकिन आपने कैसे तरीके से उस पढ़ाई को किया है। मैंने जहाँ थोड़ी देर पहले भी आपको एक बात बताई थी कि अगर एथिकल पेशेंस के साथ आप काम करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर नज़र आते हैं। मैं एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बैठा था एम्स के, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कितने ही पेशेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी वजह ये नहीं होती कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता था, ट्रीटमेंट भी मिलता है, लेकिन वजह ये होती है कि वो डायग्नोस्ट नहीं हो पाते। और नंबर्स ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि आज की डेट में डायग्नोसिस फिजिकली किसी का कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी बच्चा जाना चाहता है एक प्रॉपर एजुकेशन ले करके और अच्छी तरीके से सोच करके, अगर उसको जर्नलिस्ट ही बनना है तो बहुत सोच करके जाए। देखिए, अगर वो एक लुक्रेटिव लाइफ चाहता है तो शायद वो
0: नहीं होती है, जर्नलिज्म
1: मुश्किल है, मुश्किल है वो। और फिर उसके बाद अगर आपको उस लुक्रेटिव लाइफ के लिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, एथिक्स को दांव पे रखना है, तो फिर आप एक बेटर जर्नलिस्ट बन नहीं पाते हैं। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। तो ये तो जुनून है, ये आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, यानी आप अगर सोच रहे हैं कि जर्नलिस्ट बनने के बाद आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, या आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे, आप इसी स्टूडियो में बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस स्टूडियो से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जिसको कवर करके आपको लाना है और कुछ मिनटों में दुनिया को बताना है। सो वो जो बैक स्टोरी होती है बैक स्टेज, वो बहुत बड़ी और बहुत थका देने वाली भी होती है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, तो वो चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
1: यस
0: राजीव जी, अब चलते चलते बस मैं चाहूंगी कुछ शब्द आप हमारे माता पिता, बच्चों और जितने हमारे श्रोता और ऑडियंस आपको देख रही है, सुन रही है, उनके लिए लेकर आए, क्योंकि आप कैसे खुद को काम रख पाते हैं, कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रख पाते हैं, फिजिकल फिट भी आप, मुझे लग रहा है कि आप 10 साल बाद स्टूडियो में आए हैं पर वैसे के वैसे ही लग रहे हैं अगर हम पुरानी वीडियोज उठाएं तो।
1: मैं रेडियो मानव रचना के बिहाफ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने, वैसे तो हमने सारी बातें कर चुके हैं
0: जी,
1: तीन चीजों को ध्यान रखिए, आपके बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, फिजिकली फिट रखिए उन्हें, सारी प्रॉब्लम्स आपकी वहाँ पे खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात, उन पर ट्रस्ट रखिए, मैंने बताया था कि लिकर की सेल डाउन हो गई है एक आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। तीसरी बात यह है कि जो गैप है वो गैप ना आ जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आपको यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि भाई वो जो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम ये कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम जाकर उसके साथ ही बैठकर उसको सीख लो, शायद आप भी एंजॉय करने लग पड़ोगे उस बात को,
0: आप भी टेक्नोलॉजी को सीख जाओगे, टेक्निकली स्टेबल हो जाओगे,
1: तो आप भी एंजॉय करने लग
0: पड़ोगे, यानी दोस्त बनना पड़ेगा
1: नेचुरली।
0: वो माता पिता वाला आप जो एक सिस्टम होता था जो 90s और 80s में होता था, वो वाला सिस्टम अब
1: माता पिता टाइप के रहे भी नहीं गए वैसे, अब तो सब लोग दोस्त जैसे ही हैं, तो वो जो छोटी मोटा गैप है उसको भी फिल कर देना चाहिए मुझे
0: जी। बिल्कुल, यानी बच्चों के साथ दोस्ती करके चलेंगे तो बच्चे भी आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने दिल खोल कर पॉजिटिव बातें करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि राजनेता के साथ राजनीति के अलावा अगर कोई बात करनी है तो आपको बहुत सारी बातें चाहिए होती हैं, क्योंकि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हम पॉलिटिक्स को कहीं कवर नहीं कर रहे हैं और हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना रहा है कि आप तक एक पॉजिटिव जानकारी और एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये सारी कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारी ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट रेडियो, जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर से मिल जाएगा, और ये सारी कॉन्वर्सेशन आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे सोशल मीडिया पर फेसबुक और यूट्यूब को भी जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने कॉमेंट भी जरूर शेयर करें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। सो आज हम मानवता की राह पर चलने वाले हैं। हर हफ्ते ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे हैं और मानवता के कार्य कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है हमारी बड़ी प्यारी सी साधुमा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये प्रणव कन्या आश्रम चलाती हैं और इस आश्रम में बहुत सारी कन्याएं हैं जो शायद प्रकृति ने या फिर कहना चाहिए उनकी किस्मत ने उन्हें अनाथ बनाया और उन्हें मिल गई साधुमा, और वो उन्हें न सिर्फ एक अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा नया जीवन दे रही हैं, लेकिन साथ के साथ उन्हें इस जीवन को जीने की बहुत सारी शक्ति दे रही हैं। सो किस तरीके से इस आश्रम की शुरुआत हुई, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आज हम इस पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं और उसके लिए करेंगे साधुमा का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते।
1: अगर मैं प्रणव कन्या आश्रम की बात करूं, सो मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसके पीछे कारण क्या था?
2: यह आश्रम हमारा एक छोटा सा ब्रांच है, हमारा प्रणव कन्या आश्रम फरीदाबाद शाखा, ये एक छोटा सा ब्रांच है जी। ये तो स्टार्ट हुआ 2003 में
1: जी,
2: लेकिन हमारा हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में
1: जी,
2: जो स्टार्ट हुआ था 1970 में
1: जी।
2: हाँ, प्रणव कन्या आश्रम का जो हेडक्वार्टर वो 1970 में है और वेस्ट बंगाल में 4 सेंटर चलती है, सब जगह में ऑर्फन बच्चा रहती है, सब जगह स्कूल भी, हेडक्वार्टर में हमारा स्कूल भी चलती है
1: जी,
2: प्री प्राइमरी से लेके पूरा हाई स्कूल तक
1: जी,
2: और बाकी सब जगह मध्यम ग्राम, चिंसुड़ा, हावड़ा और बंगाल के बाहर भी है, मुंबई, उड़ीसा में है, झारसुगुड़ा में, बॉम्बे में है, नाला सुपारा, और दिल्ली के लिए ये फरीदाबाद ब्रांच बना है
1: जी। सो इसकी जो गठन हुआ ये 2003 में हुआ,
2: 2003 में हुआ। हाँ जी
1: जी। सो मुझे बताइए कि यहाँ पर जो कन्याएं हैं वो कैसे आती हैं, ये आश्रम को गठित कैसे किया गया और इसके पीछे कारण क्या था?
2: एक्चुअली पहले हम लोग जब आश्रम स्टार्ट किया तब एक साल तक तो कोई बच्चा नहीं था
1: जी,
2: स्टार्टिंग में जब हम लोग ऐसे हम लोग का अपना लैंड करना पड़ा, लैंड ठीक ठाक करने पड़ा, फंड रेजिंग करने पड़ा
1: जी,
2: ये सब करने में 1.5 साल बीत गया। उसके बाद हम लोग का जब आश्रम इनॉग्रेशन हुआ 2003 में
1: जी
2: नवंबर में, उसका बाद से ही बच्चा रखना स्टार्ट किया, वो भी 3-4 महीना बाद। तो कुछ बच्चे जैसे कि कोई होता नहीं, कोई अनाथ बच्चा है, माँ नहीं बाप नहीं कोई नहीं है, तो हमें आके कोई पूछा कि आप लोग आश्रम बना रहे क्या, बच्चे भी रखोगे? मैं बोला अवश्य रखेंगे, क्योंकि हमारे हर आश्रम में ही बच्चे रहती है, जहाँ पे बच्चे रहेगी। तो फिर बच्चे पहले 4 बच्चे से स्टार्ट हुआ, 4 बच्चे में 2 बहन है और 1 अलग-अलग बच्ची है। तो इन लोग को हमें मिला किसी सज्जन से, आश्रम का किसी भक्त से, भक्त के माध्यम से
1: जी।
2: उन्होंने बोला कि उधर में एक लड़की रहती है, उधर में 2 बच्चे 2 बहन है, कोई देखभाल करनी नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है। तो मैं बोला ठीक है मैं जाऊंगी, मैं खुद गई सर्वे करने, फिर देखा ओरिजिनल ये सब जरूरत है। तो उसका बाद हम लोग बच्चे को ले लिया, लेने के बाद हम लोग जो भी नियम अनुसार जो पुलिस वेरिफिकेशन करना इत्यादि और कॉपी रजिस्टर मेंटेन किया कि बच्चे आएंगे, फिर उसका आधार कार्ड हम लोग खुद बनाया, हम लोग का आधार कार्ड भी नहीं था। इस तरह धीरे धीरे 4 से 11, 11 से 15, फिर 20, 30, 35 तक बच्चा हुआ था हमारा, इतना बच्चा हम लोग रहने लगे थे। सभी उसी टाइप का ही आया, मैंने किसी का माध्यम से, कोई बोला कि गांव में रहता है, 2 बच्चे 2 बहन है, माँ नहीं है, बाप चले जाता ड्यूटी करने, कोई देखभाल करने, बच्चा सारा दिन धूप में डोलते रहता। मैं बोला चलो जाए, तो फिर हम गए इधर ही हमारे आश्रम का थोड़ा सा दूर 3 किलोमीटर दूर में एक गाँव है, तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे से 2 बच्चे 2.5 साल की बच्ची और 1 साढ़े 3 साल की बच्ची, दोनों को हम लोग लेके आए और रहने लगा। इस तरह धीरे धीरे बच्चे हमारे पास रहने लगे, सबका घटना ऐसे टाइप की है।
1: तो अब अगर मैं जानना चाहूँ तो अब कितने बच्चे हैं हमारे पास?
2: अभी तो हमारे पास बहुत कम बच्चे हैं
1: जी,
2: क्योंकि कुछ बच्चे का शादी हो गया, कुछ बच्चे का जॉब लग गया, जॉब लगने का बाद हम लोग बच्चे को मतलब हमारा इधर से जाना आना करेगी, जॉब लग इतना होता नहीं कुछ
1: जी।
2: तो लोग को हम लोग शादी दे दिया, लोग अपना शादी करने का बाद भी जॉब कर रही है, अपना जीवन खुशी से बिता रही, आते रहते इधर ही, उसका मैके तो इधर ही है
1: जी,
2: बच्चे आते रहते हस्बैंड का साथ, शादी देने का बाद सुखी जीवन यापन कर रहा। तो अभी हमारे पास ओनली 12 लड़की है, 12
1: जी। हाँ। तो दोस्तों ये है प्रणव कन्या आश्रम, ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर की बच्चियों को

नया जीवन मिलता है। आप खुद ही सुन रहे हैं किस प्रकार से साधु माँ ने कहा कि बच्चे कई बार ऐसे होते हैं जो अनाथ हो जाते हैं, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर कि उन्हें परेशानी हो रही होती है और उन्हें कोई सहारा चाहिए होता है, तो ऐसा सहारा बनता है ये प्रणव कन्या आश्रम। अब ये हमारे फरीदाबाद शहर में ही है और क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि 1970 में इनकी पहली ब्रांच का गठन हुआ था और उसके बाद ढेर सारी ब्रांचेस इनकी काफ़ी अलग अलग हमारे देश के शहरों में है, सो उन सारे ब्रांचेस में भी इसी प्रकार का काम होता है। किस प्रकार से ये बच्चियों का लालन पालन करती हैं, किस तरीके से ये उनका ख्याल रखती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में करेंगे बात। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, एक प्यारा सा गाना आपको सुना रही हूँ, आप कहीं मचाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं प्रणव कन्या आश्रम के साथ। प्रणव कन्या आश्रम से साधु माँ हमारे साथ हैं। साधु माँ, अब हम जानना चाहते हैं ये बच्चियां जब आपके पास आती हैं, एक समय ऐसा रहा जब आप 35 बच्चियों का भी ख्याल रख रही थी, आजकल 12 बच्चियों का ख्याल रख रही हैं, सो एग्जैक्टली आप इनकी किस तरीके से परवरिश करती हैं? क्या इनका एडमिशन स्कूलों में करवाया जाता है, इनका लालन पालन किया जाता है, इनके रहन सहन का ख्याल रखा जाता है, किस प्रकार से किया जाता है?
1: सबसे पहले तो हम इन लोग को स्कूल स्टार्ट कर देता, छोटे से ही लोग प्ले स्कूल में दिया था। उसका बाद थोड़ा सा बड़ा होने के बाद हमने गवर्नमेंट गर्ल्स में दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स में पढ़ के उन लोग 12 कंप्लीट कर लिया। बच्ची, दो बच्ची बीकॉम कर रही, तो बीकॉम मतलब जैसे कि उन लोग जितना पढ़ना चाहे पढ़ाते। एक लड़की बीए पास करने का बाद भी यहाँ से गई, शादी हो के अभी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा। तो इस तरह बच्चे को पढ़ाई किया जाता, खाली पढ़ाई नहीं, पढ़ने का साथ साथ इन लोग ये करती है, योगा करती है, अपना प्राणायाम योगा तो करवाते ही है हम लोग। फिर म्यूजिक, गाना भी सिखाते हैं, डांस भी सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, और आर्ट क्लास भी जाती थी, अभी जाना नहीं हो रहा, थोड़ा सा आर्ट क्लास भी जाती है, अपना खुद ही आर्ट बनाती भी है। तो इस तरह सब सारे चीज में उन लोग को जानकारी है और हम लोग देते भी है। टीचर तो नहीं रखते हैं, लेकिन ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं, बट ये सब सीखने के लिए एक हमारा भक्त लोग है, उन्होंने आती है डांस सिखाने, उन्होंने आते हैं गाना सिखाने, इस तरह सब कुछ सीखती है इन लोग, जानकारी है इन लोग का।
0: जी, सो देखिए भाई, बच्चियों का पूरी पूरी परवरिश की जा रही है। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि बच्चियों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी ओवरऑल डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाता है। ना सिर्फ उनकी पढ़ाई का ख्याल रखा जाता है, स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अलग अलग किस्म के स्किल्स और वोकेशंस भी सिखाई जा रही हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन परेशानी ये है कि क्या ये जिंदगी भर यहाँ रहती हैं, या उसके बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है? जानती हूँ साधु माँ से, लेकिन आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। इनफैक्ट अगर आपने आज तक इस आश्रम के बारे में कभी नहीं सुना है और आप इसके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी आरजे भावना के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं प्रणव कन्या आश्रम के साथ। प्रणव कन्या आश्रम से साधु माँ हमारे साथ है। साधु माँ, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि दरअसल जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चियों की शादी हो गई, सो आप उन्हें स्कूल तक पढ़ाती हैं, ट्वेल्थ तक पढ़ाती हैं, और उसके बाद ना सिर्फ उन्हें अलग अलग किस्म के स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, उन्हें कौशल सिखाया जाता है, आप उन्हें म्यूजिक सिखाती हैं, कंप्यूटर सिखाती हैं, उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा सिखाती हैं। मुझे बताइए कि क्या ये बच्चियाँ आत्मनिर्भर बन जाती हैं, और अगर हाँ तो किस प्रकार से ये आत्मनिर्भर होती हैं, आगे इनकी कॉलेज की पढ़ाई या बाकी सारी चीजें कैसे की जाती हैं?
1: 12th कंप्लीट करने के बाद उन लोग का पढ़ने में कम इंटरेस्ट था, इसलिए मैं उन लोग को पार्लर का कोर्स कंप्लीट करवा रहे, क्योंकि पार्लर सीख जाने के बाद उन लोग थोड़ा कुछ अपना पैर में खड़ा हो जाएगा, कुछ तो कर सकेगी
0: जी। और इसके अलावा जैसे आगे अगर मान लीजिए कि कोई और बच्ची है जो 12th करने के बाद आगे पढ़ना चाहती है, तो क्या उसकी भी आप मदद करते हैं?
1: जैसे बच्चे पढ़ना चाहे तो हम उतना तक ही पढ़ाएंगे, जितना दूर तक पढ़ सकती है, पढ़ना चाहेगी
0: जी।
1: मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारा जो आश्रम का भगत लोग है उन लोग डोनेशन देते हैं
0: जी,
1: और उसी डोनेशन से या तो स्पॉन्सरशिप भी देना चाहते हैं कोई कोई, तो इस तरह हो करके हम लोग करवा लेते बच्चे का। लेकिन पता नहीं ये बच्चे लोग उतना ज्यादा, बीकॉम तक तो कर रही, इसका पहले भी बीए पास भी करके गई
0: जी,
1: लेकिन आगे उससे आगे तो ऐसा कोई बच्चा अभी तक हमारे इधर से हुआ नहीं
0: जी। लेकिन जैसे मैं बात कर रही हूँ आत्मनिर्भर बनने हाँ। की अपने पैरों पर खड़े होने की, तो आप उन्हें किसी तरीके का कोई कौशल, कोई स्किल, कोई ऐसी चीज सिखाती हैं जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके?
1: दो बच्चे तो अकाउंटेंसी लेके पढ़ रहे, उसके बाद लोग को कुछ जॉब मिलने का चांस होता है बाद में, पूरा कम्प्लीट कर लेगी तो, और जो पार्लर सीख रही उन लोग का भी चांस मिलेगा कुछ न कुछ, और आगे पढ़ेगी। जैसे एक बच्ची हमारा पढ़ के निकल के एमए तक करने के बाद उसको मल्टीनेशनल कंपनी में मिल गया चांस।
0: अरे वाह,
1: जॉब कर रही है अभी अपना, मेरठ में रह रही, मेरठ में उसका शादी हुआ
0: जी।
1: बहुत अच्छा है, हस्बैंड भी अच्छा है
0: जी,
1: दोनों आते रहते हमारा इधर, खुशी है, सुखी है।
0: तो ये तरीका है कि बच्चियों को बड़ा किया जाता है, उन्हें आत्मनिर्भर हाँ। बनाया जाता है, और उसके हाँ। बाद अगर उनकी इच्छा है तो उनकी शादी करके उन्हें एक सुख गृहस्थ जीवन भी दिया जाता है
1: हाँ जी।
0: तो दोस्तों ये है प्रणव कन्या आश्रम, हम बात कर रहे हैं साधु माँ से।
1: साधु माँ तो मुझे पुकारा जाता है,
0: पर आपका
1: मेरा नाम है स्वाधि मुक्ति प्राणा।
0: जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं प्रणव कन्या आश्रम के साथ। प्रणव कन्या आश्रम से हमारे साथ साधु माँ हैं, जिन्हें प्यार से साधु माँ बुलाया जाता है। दरअसल देखा जाए तो इनका नाम जो है, इनका नाम है स्वाति मुक्ति प्रणव। और भाई देखिए, आज हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये वहाँ की न सिर्फ रखरखाव करने के केयर टेकर और कहना चाहिए सर्वे सर्वा हैं, जो यहाँ की बच्चियों का ख्याल रखती हैं। अगर मैं बात करूँ साधु माँ, तो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो और इस कार्यक्रम के जरिए। मुझे बताइए कि क्या कभी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं?
1: भगवान की कृपा से परेशानी तो नहीं होता जी, नहीं हुआ। मतलब अगर हम लोग का चाहिदा तो ज्यादा नहीं है
0: जी,
1: चाहत ज्यादा नहीं है। खाली हमारा बच्चे ढंग से पढ़ाई कर ले, ढंग से रह जाए, स्वास्थ्य रहे। हमने न्यूट्रिशन डाइट देते बच्चे को ताकि डॉक्टरों का पास ज्यादा नहीं जाना पड़े
0: जी।
1: और बच्चे स्वास्थ्य है, ठाकुर की कृपा यही है कि बच्चे स्वास्थ्य रहते हैं। जो भी हमारे मेंबर है आश्रम का मेंबर, उन लोग भी स्वास्थ्य है
0: जी।
1: तो बस नहीं चाहते, हम लोग चाहत कम है, लेकिन कभी उतना भी परेशानी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कभी भगवान की कृपा से।
0: अगर मैं बात करूं फंड्स की, तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बच्चियों का लालन पालन करना, उन्हें अच्छा जीवन देना। सो क्या इसमें भी परेशानी आती है?
1: फंड तो सबसे लेके ही हमारा चलता, दान पुण्य में चलता आश्रम
0: जी।
1: वो तो जरूरत होता ही है
0: जी,
1: वो आप लोग कर सकते हैं हेल्प, क्योंकि उस दान पुण्य से आश्रम चलता है। और आजकल का जो है, आजकल का जमाना, जैसे कि बच्चे को हम लोग अंदर में एक शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चे बाहर जाके, स्कूल में जाके, बाहर का वातावरण इतना पावरफुल है कि बच्चे बाहर का जो भी शिक्षा है फ्रेंड से मिलके, वो सब भी सीख के आ जाती है। और उसको उससे बाहर वाला वातावरण से मुक्त करके अच्छी तरह वातावरण से हम लोग तैयार करेंगे, ये थोड़ा सा परेशानी होता है हमारे लिए। फिर भी चलो प्यार से हम लोग रखते हैं, फ्रेंडली आचरण करते हैं बच्चे से, ताकि वो लोग अपना मन की बात हमें बता सके, डरे ना, ये हम लोग कोशिश करते हैं। मैं
0: जी साधु माँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये बच्चियाँ,
1: हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे अपना मन की बात हमें बताए
0: जी।
1: बाहर में जाके कुछ हुआ, कुछ घटना हुआ, अगर कोई कुछ परेशानी किया, वो भी आके हमें बता देते बच्चे, बड़े हो गए ना
0: जी। बिल्कुल,
1: छोटे बच्चे का तो बात अलग है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बड़े बच्चे लोग बता देती है हमें आके, साधु माँ ये हुआ आज, ना ऐसा हुआ था, आज कोई ऐसा हुआ था, ये सब बता देती। तो उसमें हमें पता चल जाता कि बाहर की वातावरण बहुत अशुद्ध, और हम आश्रम के अंदर तो बहुत शुद्ध वातावरण है, तो इसको, इन लोग को बाहर से मुक्त करके अंदर रखना बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी है
0: वाकई।
1: लेकिन फिर भी चलो हम इतना शिक्षा दे पाए कि बच्चे झूठ ना बोले। मैं बोला देखो, जो भी हो जाए, हम लोग कोई भगवान नहीं है, साधारण मनुष्य है, अगर कुछ गलती हो भी जाए तो तुम लोग आके मुझे बता देना, सच बताना, झूठ मत बोलना। और ये छोटे से ही मैंने उन लोग को बोला, अगर जो सच बताएगा उसको एक ट्रॉफी मिलेगा। इस तरह करते करते उन लोग को ये सिखाया गया कि नहीं, कुछ भी हो जाए तो सच बताने की हिम्मत रखना, झूठ मत बोलना डर के मारे। तो इस तरह उन लोग का मानव जीवन में हम लोग कोशिश किया जा रहा, आज तक कोशिश जारी है। मैं भी थोड़ा एज हो गया, फिर भी कोशिश जारी है, और बच्चे ढंग से ही बड़ी हो रही, अच्छी तरह अपना जीवन लाइफस्टाइल बिता रहे अपना।
0: बहुत अच्छी चीज है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाकई आज के टाइम में माता पिता जब अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप न सिर्फ जमाने से अलग होकर, जमाने से अलग इन बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं जिससे ये आने वाले समय में ना सिर्फ आत्मनिर्भर बने, लेकिन एक अच्छे नागरिक भी बने। दोस्तों जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक बड़ा अहम सवाल पूछने वाली हूँ साधु माँ से, पर आप कहीं नहीं जाएंगे। फील गुड, फील लाइक।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं प्रणव कन्या आश्रम के साथ और हमारे साथ हैं साधु माँ। साधु माँ, आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो के जरिए, क्या लोग जुड़ना चाहेंगे? कुछ लोग चाहेंगे कि वो इन बच्चियों की मदद कर पाए, सो क्या वो वॉलंटियर कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे?
1: हाँ, आ सकते हैं आश्रम में, आके बच्चे से मिल के जा सकते हैं और हमसे भी मिल के जाए, और अगर डोनेशन देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही बताया आश्रम चलती है डोनेशन की बेस पर।
0: वाकई,
1: क्योंकि मैं तो खुद अपना जीवन तो छोड़ दिया, अपना घर गृहस्थ सब छोड़ दिया
0: जी,
1: और आज नहीं, आज से 40 साल पहले मैं ब्रह्मचारिणी थी, उसके बाद संन्यास लिया, तो इसलिए हमारा तो कुछ होता नहीं, हमारा सब कुछ है आप लोग के पास। हमारा जो चलता आश्रम भी चलता सब अपने आप लोग के पास, तो सभी भक्त लोग देता है, उसी में आश्रम अच्छी तरह चल जाता है, तो डोनेशन से ही चलता, तो डोनेशन का तो जरूरत होता ही है
0: जी।
1: और बच्चे को अगर कुछ सिखाना चाहेंगे, कुछ करेंगे, तो आजकल बच्चे का टाइम भी थोड़ा कम हो गया, ये बात तो सही है। आश्रम की बच्चे है, लेकिन उन लोग का समय बहुत कम है, तो अगर आएंगे पहले तो आने दीजिए, आके देखे फिर क्या सिखाएंगे क्या करेंगे तो अपने आप ही उन लोग देख लेंगे, तो आ सकते हैं, वेलकम, सबको वेलकम, जितना भी लोग आना जुड़ना चाहेंगे आना चाहेंगे आ सकते हैं, और डोनेशन तो हम ऑलवेज वेलकम, क्योंकि डोनेशन से ही आश्रम चलता है, तो कोई कोई ऐसा भी होता है कि महीना में हमें कुछ देता है, उसका हमने डीमार्ट से कुछ खरीद लेता और उसका बिल हमने व्हाट्सएप में भेज देता कि क्या खरीदा, उसको दे देता, ज्यादा ना दे, कोई कोई 2,000 रुपया महीना में देता, उसमें भी हमारा बहुत हेल्प हो जाता, ज्यादा पैसा देने पड़ेगा ऐसा नियम नहीं है, जिसका जो सुविधा हो ऐसा कर सकते हैं
0: जी। हाँ दोस्तों, देखिए हम हमेशा यही कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है, और अगर आपको बूंद बूंद से ही सागर बनाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इनका जो काम है वो बहुत ही नीक है और बहुत ही अच्छा है, तो आप ऑफ कोर्स इनके साथ जुड़ सकते हैं, और उसकी जानकारी के लिए आपके पास एक ही नंबर है 8010781078। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज हम चल रहे हैं प्रणव कन्या आश्रम के साथ और साधु माँ बहुत सारी बातें आपसे की, जाते जाते क्या खास संदेश देकर जाना चाहेंगी सभी को?
1: हाँ, सबको बोलेंगी कि सब अपना

0: जीवन को सुंदर से रहे, सबका कुछ ना कर पाए हम, आसपास में देखेंगे हम कि आसपास में कौन है, थोड़ा गरीब दोस्त होता है ना, गरीब लोग, तो उनका पास जाके जितना हो जाए थोड़ा सा सहज उन लोग को हेल्प कर दो थोड़ा सा जी। हर समय हमें ही हेल्प करो ऐसे नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि हमारा मैं आश्रम जहाँ पे बनाया फरीदाबाद इधर में तिगांव में, इसका आस पड़ोस में ना कई झुग्गी है
1: जी।
0: तो मैं भी सबसे लेके ही करती हूँ, मेरा कहाँ कुछ है, सबने मुझे हेल्प करता है, उसी को लेके मैं भी साल में 3-4 बार जाती हूँ उन लोग को, झुग्गी में जाके कुछ कंबल वितरण करते ठंड का मौसम में, कभी कपड़ा वितरण करते, कभी कुछ दाल चावल लेके खिचड़ी बना के भी लेके जाते, कभी बिस्किट लेके जाते उन लोग को भी देते हैं। सब बोलते मुझे साधु माँ आप आश्रम चलाते हो सबसे लेकर आप भी जाते हो दान करने, मैं बोला मैं नहीं जाती, लेकिन वो जगह जैसा है ना आप भी जाओगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ करके आओ, कुछ बच्चे लोग हाथ में थोड़ा बिस्किट दे के आओ, कुछ खाना दे के आओ, कुछ कपड़ा दे के आओ, ऐसा इच्छा हो ही जाएगा। कोई भी अपना जीवन का जो मानवता है, हम लोग मनुष्य नहीं, हमारे अंदर में मानवता को भी प्रकट करना चाहिए
1: जी।
0: खाली हम खुद खाएंगे खुद लेंगे, अपना माँ बाप और बेटा बेटी को ले खिलाएंगे नहीं, सबको खिलाओ, जितना भी हम अर्न करेंगे उससे थोड़ा सा 1% रख दो हर महीना, उसको लेके 4-3 महीना हो जाएगा, फिर उसको मिला के कुछ सामान खरीद के थोड़ा झुग्गी में जाके बांट के आ जाओ, देखो मन में कितना शांति लगेगा, कितना आनंद होगा। खाना बना के सब कोई संभव नहीं है खाना बना के दान उसको देने के लिए, लेकिन सूखा तो कुछ बिस्किट कुछ चीज दे तो आ ही सकता है ना, फल कुछ तो दे के आ ही सकते हो। तो अगर ये चीज सभी ने करेंगे तो सबका मन में आनंद होगा, अपने आप होगा, होना ही है, होना ही पड़ेगा। अपने कुछ बच्चे का पुराना कपड़ा जाओ लेके जाओ उन लोग को दो, कितना खुश हो जाएगा उन लोग झुग्गी वाले। हमारे इधर पास में भाटा है, ईट भाटा, उसका जो फैमिली लोग है, फैमिली का जो बच्चे लोग है, हम लोग बुला के कुछ राशन थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं क्योंकि हम ही लोग तो सबसे लेके चलाते हैं, हमारा पास कितना होगा, लेकिन थोड़ा सा आटा दे देते हैं सबके लिए, पैकेट बना के रखते हैं, उन लोग को बुला लेते हैं, उन लोग को एक एक आटा का बैग लेते, 5-5 किलो का आटा का बैग दे देते हैं। उसका पैसा भी हम आश्रम से नहीं लेते, हमारा आश्रम का फंड से नहीं लेते, वो पैसा भी अलग से कलेक्शन करते हैं, और भगत लोग मुझे देते भी है, उसको पता है कि साधु माँ जाएगी आटा वितरण करने, तो उन लोग अलग से मुझे पैसा देते हैं, उस पैसे से मैं आटा खरीद के थोड़ा सा दान करके आता, मन में शांति होता और उन लोग का भी थोड़ा हेल्प हो जाता। तो इसलिए आप लोग जो हाथ में पैसा है, जो अर्न कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन लोग तो अपना पैसे से थोड़ा सा बचा के कुछ ये कर दो, करो, कितना मन में आनंद होगा, कितना मन में शांति होगा। और ऐसे नियम है, किसी को दो तो आपको तुरंत मिल जाएगा कहीं से
1: जी।
0: नहीं तो मैं एक साधु होके घर बड़ी छोड़ा हुआ इंसान होके मेरा पास कैसे पैसा आ जाता, जो आश्रम का पैसा नहीं है, जो लोग आश्रम को दे रहा उसका पैसा नहीं छूता, ये पैसा अलग से मुझे पर मेरा पास आ ही जाता आटा देने के लिए। तो ये हो जाएगा, आप लोग को भी हो जाएगा, कोई कमी नहीं होगा, घर का भी कुछ कमी नहीं होगा। आप लोग ये चेष्टा करना, कोशिश करना कि हम लोग भी जाके थोड़ा सा कहीं पे एक झुग्गी में या तो कहीं झोपड़ी में जाके थोड़ा सा मदद करके आ जाए, कितना मन में शांति होगा। या तो वहाँ पे जाके एक घर पढ़ाने तो उन लोग पढ़ता नहीं, कितना बदमाशी करते, फिर भी हम लोग कोशिश करते पढ़ाने के लिए। तो जो भी हो थोड़ा सा हेल्प करेगा तो अच्छा लगेगा।
1: और बहुत ही अच्छा सा संदेश आपने दिया है, और वाकई मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम जिंदगी में बांट के या मिल बांट के या आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं तो उसमें हमें खुशी बहुत सारी मिलती है।
0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद साधु माँ, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को प्रणव कन्या आश्रम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी।
0: सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, भगवान से ही प्रार्थना
1: जी। सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने यह सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खट खट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर

0: और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। एक महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था, ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी, इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था, वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था, वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही, तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया, तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई, तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई, होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सबकी सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले 1/4 से भी कुछ कम रही, तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी दो मिलने वालियां मौजूद थी। उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीने काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद, मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग, साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 125 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनोन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस न हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
1: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ,
0: तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ, सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा, मेरा नाम शंकर है।
1: ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
0: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
1: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
0: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई।
1: तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर
0: कहो कहो, रुक क्यों गई हो?
1: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो, कमीज और दुपट्टा मेरे पास

0: मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
1: नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई?
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो?
1: ले लो।
0: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ, ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: मारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
2: हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आज कौन लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की आप लोग इस टाइम सुन रहे रेडियो मानोरचना 107.8 FM ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एक और खास कंपनी आपके लिए लेकर के आए एक और नया प्रोसेस आपको समझ आएगा एक और इंडस्ट्री के बारे में आप जानेंगे बिकॉज दिस शो इज एन एजुकेशनल शो फॉर यू जुड़े रहिए हमारे साथ कहीं जाइएगा मत फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक स्टे ट्यून्ड फील गुड फील लाइफ

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मारवाष्ट 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में। हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 बिलियन US डॉलर्स, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो हैं इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नज़र आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज़्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली 3 मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खींच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए, ठीक है। टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो ID प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो हैं वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फ़ोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फ़ोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना। ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील

वेलकम बैक। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवस्टम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीज़ें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत ज़रूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज़ है यहाँ पर

जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, क्वोट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। आप एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ़ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी वहाँ पर चाहिए। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जा करके आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज़ अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

बिना किसी तरीके कंपनी की बात करते हैं। सो कंपनी का नाम है ल्यूमिक, LUMIQ। 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ओके, एक बहुत ब्रॉडर जर्नी है इसकी, ठीक है। AIML जो है वो उसका 2007 में स्टार्ट हुआ था, बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स टॉक अबाउट द क्रीम पार्ट जो आपकी हेल्प कर सकता है। सो ल्यूमिक एक डाटा एंड AI लेयर के तौर पे आप इसको समझिए, बिहाइंड बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इंश्योरटेक में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस कंपनी इज अ क्रूशियल पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट AI एंड डाटा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हें पॉलिसीज के लिए पर्टिकुलर चीज़ें होती है, प्रोसेसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, अंडरराइटिंग होती है, क्लेम्स होता है, कस्टमर होता है, फ्रॉड डिटेक्शन होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन होता है, पर्सनलाइजेशन, पॉलिसी सर्विसिंग, AI पावर्ड डॉक्यूमेंटेशन, जनरेटिव AI एप्लीकेशन एंड सो ऑन। सो दिस कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि डाटा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सारा प्रोसेस एक कंपनी खुद से करे तो। बट प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर चीजों को बांट दिया जाए और हर प्रोसेस का डोमेन का एक एक्सपर्ट आपको मिल जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी इज डूइंग। तो ये है ल्यूमिक, जिसको आप समझ सकते हैं कि एक AI लेयर है और एक डेटा है जिसका ख्याल रखती है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे फर्दर इसके बारे में। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

फील गुड फील लाइव, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी इस कंपनी ने? सो दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, इस कंपनी के फाउंडर हैं शोएब मोहम्मद। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बिजनेस डेटा डिस्कस करते हैं, ठीक है, और ये हर जगह पर आपको अलग वर्जन दिखाई देगा हर एक टीम में। क्या हो अगर सारी ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा जो है वो यूनिफाइड हो जाए एंड देन उसको इंटेलिजेंटली यूज किया जाए? मतलब बहुत ही ब्रॉड थॉट है ये, अभी अगर आप इसको देखेंगे। बट इसको नैरो डाउन करते करते करते करते फाइनली ल्यूमिक का जन्म हुआ। फाइनली ये कंपनी जो है वहां पर आती है और इस तमाम डेटा को प्रोसेस करती है, ठीक है। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो शायद आपकी और मेरी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगी, बट एज अ फाउंडर अगर आप चीजों को देखते हैं, एज अ पर्सन जिसको कुछ बिल्ड करना है अपना, अगर आप वैसे इस चीज को देखते हैं तो ये केस स्टडी आपके लिए बहुत हेल्प कर सकती है। बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, कंपनी की सिरदर्दी कम कर रहे हैं, डेटा को प्रोसेस करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं, प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास टन्स ऑफ डेटा है बट स्कैटर्ड है। ओके, ये कंपनी क्या करती है, ल्यूमिक, ये सारे डेटा को कनेक्ट करती है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है उसको बनाती है, स्मूथ बनाती है, ना कि वो स्कैटर्ड यहां वहां फैला रहे। ओके, AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, ठीक है, ये यहाँ पर इस पूरे डेटा को कंपाइल करके जब भी आपको डिसीजन लेने वाले हो, अगर आप एक कंपनी हो, तो आपकी हेल्प करने वाला है बेसिस ऑन द डेटा जो यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम में आपके पास था। ये है कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्वल 107.8 एफएम के साथ। अब बात करेंगे कंपनी की यूएसपीज की, सो विच इज ल्यूमिक। तो कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी है डीप एफएसआई स्पेशलाइजेशन। तो देखिए, ल्यूमिक कोई जेनरिक एआई कंपनी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है जो हर एक इंडस्ट्री को सर्व करेगा। जैसे कि हम अमूमन जानते भी हैं, चैटबॉट्स हमारे पास होते हैं, चाहे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, तो हर एक चीज वहां पर आपको मिल जाती है, लाइक अ जेनरिक थिंग। बट क्योंकि अभी बिजनेस काफी आगे बढ़ चुका है, एआई काफी एडवांस हो चुका है, तो अब हम लोग आ गए हैं उस एक जोन में जहां पर हमें बहुत ही नैरो डाउन करके स्पेसिफिक जो है बात करनी चाहिए। सो यहां पर जो ये कंपनी है, ये फोकस करती है ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। कंपनी कहती है कि इनका प्लेटफॉर्म बना है अराउंड इंडस्ट्रीज सिस्टम्स, जहां पर डेटा एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट होता है, ठीक है। रेदर देन अ जेनरिक एआई, दे आर फोकसिंग ऑन डेटा बेसिस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए समझना कि हम अब अगर कुछ स्टार्ट करने का सोचें, अगर आज की डेट में आप बोलते हैं कि आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है जो एआई में डील करती है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग जो आपकी जेनरिक ना रहे, जो प्रॉपर मतलब जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज को सर्व करे, किसी एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के सर्व करे, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्टाग्राम पर जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई टूल बनाना है, तो इट बिकम्स अ स्पेसिफिक थिंग, इट इज नॉट अ जेनरिक थिंग एनीमोर। दैट्स हाउ थिंग्स आर ग्रोइंग, दैट्स हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये हमें डोमेन नॉलेज देता है अराउंड सर्टेन थिंग्स, जैसे कि इंश्योरेंस का डाटा, उस डोमेन की नॉलेज मिलेगी। रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट क्या है, इंश्योरेंस में IRDA है, एंड बैंकिंग सेक्टर में RBI है, टेलीकॉम में TRAI है, इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर ये तमाम जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो हमें मिलती है। अंडरराइटिंग का हमें पूरा प्रोसेस मिलता है, क्लेम्स मिलता है, रिस्क मिलता है, कस्टमर बिहेवियर को समझने का मिलता है। सो यहाँ पर AI सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, ये इस कंपनी ने अलग किया है, इसलिए ये कंपनी आउटशाइन कर पा रही है। आशा करता हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है इस कंपनी के बारे में, ल्यूमिक के बारे में, उतनी आप समझ पाए हैं। फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्ट्रेट ट्यून, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहे हैं पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 FM के साथ। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम आता है शोएब मोहम्मद, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। शोएब के पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है इन बिल्डिंग एंटरप्राइजेस, प्रोडक्ट्स एंड टेक बिजनेसेस। इनके बैकग्राउंड की अगर आप बात करेंगे तो मेजर जो इनका वर्क रहा है वो काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा है, लाइक गूगल है, सिस्को है, नासा है, यामाहा है। ठीक है, इनके अगर हम स्टडी की बात करें, NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग की, IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, उसके बाद वॉरविक बिजनेस स्कूल गए वो। बिफोर ल्यूमिक ही हैड ऑलरेडी फाउंडेड एंड सोल्ड अ टेक वेंचर जो सिंगापुर में काम करता था। ठीक है, US में भी काफी इन्होंने काम किया, कुछ और कंपनीज इन्होंने बिल्ड करी, तो अच्छे खासे अनुभवी एक एंटरप्रेन्योर आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, ही वॉज नॉट समवन हु सिंपली सॉ AI इज ट्रेंडिंग एंड देन स्टार्टेड अ कंपनी। उन्होंने पहले कई साल अपने गुजारे इस पर्टिकुलर डोमेन को समझने में, टेक को समझने में, डाटा को समझने में, इनकी प्रॉब्लम्स को समझने में, फिर उसके बाद इवेंचुअली कंपनी स्टार्ट हुई। दूसरा नाम, एक और को फाउंडर है यहाँ पर, मिस्टर वैभव डोबरियाल। He is a co-founder and CPO, Chief Product Officer of this company, जो majorly deal करते हैं product development में। He is an IIT Kanpur M.Tech and इनका experience जो रहा है वो academic research में, enterprise product development में रहा है। As per his profile, इन्होंने multi-million dollar products जो हैं वो बनाए हैं, उनमें deal किया है, Europe, Middle East, Australia, Southeast Asia, USA, इनका भी experience काफी अच्छा रहा है। बॉटम लाइन दोनों का ही है, शोएब जो है वो लेके आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। वैभव लेके आते हैं टेक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इंप्लीमेंटेशंस। ऐसे करके इन दोनों ने एक टीम बनाई और एक कंपनी खड़ी करी एंड इट इज वर्किंग रियली गुड। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितना आपको बताया है उतना आप लोग समझ पाए हैं। तो ऐसे दोस्तों, कोई भी चीज जो है वो काम करती है जब अलग अलग अनुभव मिलते हैं, अलग अलग माइंडसेट्स मिलते हैं। दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट ल्यूमिक इज हाउ डिड द आइडिया इवॉल्व। देखिए, इवोल्यूशन को तीन स्टेजेस में हम लोग समझेंगे। पहला स्टेज है डेटा प्रॉब्लम। कंपनीज के पास डेटा था बट इफेक्टिवली उसको यूज नहीं कर सकते थे, रीजन बीइंग कि कोई स्ट्रीमलाइन नहीं था, स्कैटर्ड था डेटा। सेकंड, डेटा प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, वो नहीं थे कंपनीज के पास। ल्यूमिक ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें सारे डेटा को यूनिफाई कर दिया, कंपाइल कर दिया और एंटरप्राइज डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। थर्ड, एआई पावर डिसीजंस। नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि केवल डेटा कंपाइलेशन नहीं हुआ, उस डेटा के आधार पर जो आपके पास ना बल्क में इधर उधर डेटा था उसको इकट्ठा करके आपने एक जगह पर रख लिया, अब आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास पैसे थे बहुत सारे बट वो बिखरे हुए थे। कहीं पर आपने 100 रुपए रखे हुए हैं, कहीं पर आपने जो कॉइन्स हैं वो रखे हुए हैं, 200-300 रुपए के कॉइन्स हो सकते हैं वो, ठीक है। कहीं पर आपका चेक रखा हुआ है, अब आपको पता ही नहीं आपके पास पैसा कितना है। तो जब आप फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेंगे तो आप बहुत ही एक फॉगी सा वो होगा, या फिर आपके लिए वो स्ट्रेस होगा कि आपको वापस से सारा कंपाइल करके गिनना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ले पाएंगे मेरे पास पैसा है कितना। बट अगर एक प्लेटफॉर्म हो जो आपको कंपाइल करके बता दे आपके पास एग्जैक्टली कितना पैसा है, ये यहाँ पर रखा है, वो वहां पर रखा है, वो वहां पर रखा है, और फिर जब आपको कोई फैसला लेना है तो आप उसी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ लेंगे मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, और वो आपको बता दे एज पर योर फाइनेंशियल सिचुएशन दिस कुड बी डन। नाउ दिस इज वेरी वेग एंड लेमन एग्जाम्पल, बट अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द एनालॉजी कैसे ये काम करती है। तो ये एआई पावर डिसीजन मेकिंग जो है वो इस कंपनी ने आपको दिया। तो एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, जनरेटिव एआई एंड एआई एजेंट्स जो इस कंपनी के आप कह सकते हैं बहुत बड़ी एक यूएसपी बन के सामने आई, एंड दैट्स हाउ कंपनीज स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर ल्यूमिक। ये है जी ये कंपनी जिसने इतना खूबसूरत तरीके से ये काम किया। फिलहाल लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्ग 107.8 एफएम के साथ। शो को आगे बढ़ाते हैं यहां पर। लेट्स टॉक अबाउट द की ड्राइवर्स बिहाइंड लूमिंग। पहला तो है कि एक्सप्लोजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। बैंक्स और इंश्योरेंस जो थे उनके पास साथ ही प्रॉब्लम थी कि बहुत सारा पैसा उनका खर्च होता था डेटा को स्ट्रक्चर करने में। वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर आपको स्ट्रक्चर वे में करना है या उसको स्ट्रीमलाइन करना है अच्छे से, तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, आप बस स्कैटर्ड है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर जो एग्जिस्ट करती थी वो ये थी कि डिजिटली चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही थी लेकिन आपके पास डेटा नहीं होता है, बट स्कैटर्ड है, कंपाइलेशन नहीं है। तो ट्रेडिशनली जो चीज़ें थी उनको चेंज करके रीडिफाइन किया ल्यूमिक ने। थर्ड, AI अडॉप्शन। पूरी दुनिया में हमने देखा हर एक डोमेन में AI अडॉप्शन हुआ है, तो यहाँ पर वो कैसे पीछे रह सकता था। नेक्स्ट, नीड फॉर फास्टर डिसीजंस। इंश्योरेंस कंपनीज को चाहिए था भैया फास्टर डिसीजन, क्लेम्स जल्दी सेटल हो, अंडरराइटिंग जल्दी हो, कंट्रोल को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसके लिए अगेन डाटा कंपाइलेशन चाहिए जिस कंपनी ने आपको करके दिया। फ्रॉड एंड रिस्क एनालिसिस। AI कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड कन्वेंशनल जो रूल्स थे जिनमें कह सकते हैं आपकी मैनुअल वर्क में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं, बट अगर कंपाइल करके सारी चीज़ों को पैटर्न्स को आप देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे, सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यू नो स्किप दैट पार्ट। उसके बाद पर्सनलाइजेशन। कस्टमर्स के डाटा के आधार पर उनके लिए पर्सनलाइज प्लान्स बनते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आई निकल के सामने। तो कंपनीज को ये लगा कि ठीक है, लेट्स ट्रीट योर कस्टमर्स दिस वे, कि उनको काफ़ी अच्छा लगे, पर्सनल टच मिले और कस्टमर्स भी खुश हो कि हाँ उनकी नीड्स को समझ के चीज़ें बनाई जा रही है। एंड देन उसके बाद रेगुलेटरी जो प्रेशर्स थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर टैकल किए गए। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिलायबल, ट्रेसेबल एंड कंट्रोल डेटा चाहिए था जो इस कंपनी ने दिया। सो ये है जी हमारी आज की कंपनी ल्यूमिक। एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी नहीं है ये इंश्योरेंस कंपनी के पीछे का आप कह सकते हैं टेक का ब्रेन है, जहां पर आपको डेटा को कंपाइल करके दे रहे हैं। करोड़ों कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स, उनकी पॉलिसीज, क्लेम, सारा डेटा कंपाइल हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि पहले भी ये डेटा था, अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था, कंपनी ने यहां पर इसको कंपाइल कर दिया। तो ये कंपनी इंश्योरेंस नहीं बेचती है, जो कंपनीज इंश्योरेंस बेचती हैं या बनाती हैं उनकी हेल्प करती है एक तरीके से बैकबोन बनके। दैट इज द थिंग। अब फिलहाल इसी नोट पर चलता हूं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा, केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी। इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
2: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। वक्त हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहां होती हैं सेहत की बातें, और इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आए हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। हर हफ्ते एक हेल्थ एक्सपर्ट जो बताते हैं हेल्थ से जुड़ी अलग अलग प्रॉब्लम से बहुत सारी रिलेटेड बातें, उन क्वेश्चंस के आंसर्स और साथ ही कुछ खास एडवाइस। आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर शायद दादी नानी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आप कहेंगे आखिर ये बातें हैं क्या, तो ये है आपके प्यारे से बच्चे की क्यूटनेस और चबीनेस के बारे में बात। अब बच्चे होते हैं, जो बच्चे पतले होते हैं ना, उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है ये थोड़ा वीक है या ये थोड़ी वीक है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मोटे होते हैं यानी चबी होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है ये बड़ा हेल्दी और बड़ा प्यारा बच्चा है। अब ये जो प्यारा और मोटे का डिफरेंस है ये क्या है, क्या ये वाकई आगे आने वाले टाइम में बच्चे को प्रॉब्लम्स दे सकता है, या फिर ये सच में हेल्दी ही होता है? अब ऐसी चीजें कुछ जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट, पीडियाट्रिशियन, सीनियर कंसल्टेंट, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर अंजलि जैन। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
4: हेलो।
3: सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हम चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं, दादी नानी मम्मी इन सबका, खासतौर पर से फीमेल्स की बात मैं करूंगी, घर में जो होती हैं उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ा सा चबी होना चाहिए, और चबी बच्चे क्यूट लगते हैं नो डाउट, लेकिन क्या ये चबी और पतले बच्चे दोनों में से हेल्दी बच्चा वही होता है जिसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है?
4: नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्दी बच्चा ही मोटा बच्चा ही हेल्दी हो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वेट किस वजह से है, मोर ऑफ मसल की वजह से, बोन्स की वजह से जो वेट होता है वो अच्छा वेट होता है। चबी बच्चे में तो अगर फैट है, फैट इज नॉट गुड। ओबेसिटी कभी भी हो सकती है। हमारे WHO में क्राइटेरियाज होते हैं, देयर आर स्टैंडर्ड चार्ट्स, बेसिकली वेट को हाइट के हिसाब से देखा जाता है। एक सर्टन हाइट और एज पे एक सर्टन वेट ठीक है, उसके ऊपर है तो उसे ओबेसिटी बोला जाता है।
3: ओके, यानी अगर जैसे बड़ों में होता है कि हाइट और वेट दोनों जो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए, वैसे बच्चों में भी देखा जाता है।
4: बच्चों में ग्रोइंग फेजेस भी आते हैं क्योंकि बच्चों में हाइट बढ़ रही होती है, तो सर्टन टाइम के लिए हो सकता है वेट थोड़ा ज्यादा है तो वो थोड़े चबी दिख रहे हैं, पर जैसे जब हाइट निकालने का टाइम आता है तो वेट कम हो जाता है, तो वो वीक नहीं हुए, तो अपनी नॉर्मल हाइट कैच कर रहे हैं
3: जी,
4: तो इसलिए उस समय वो ओबेस नहीं दिखेंगे
3: जी। जैसे हमने देखा है कि एक साल में जब बच्चा चलने लगता है तो उसका वेट ग्रेजुअली एकदम कम होने लगता है। आप देखें, हमने जनरली देखा है कि एक साल तक बच्चा थोड़ा क्यूट लगता है, चबी लगता है, प्यारा लगता है, फिर उसके बाद वो एकदम से पतला होने लगता है। तो क्या ये चलने की वजह से होता है?
4: क्योंकि अब उसकी बोन ग्रोथ का टाइम है, ठीक है, अब वो अपनी हाइट निकालेगा, तो जब हाइट निकालेगा तो ऑब्वियसली मोटापा नहीं, खाने जो अपनी कैलोरीज हमें मिल रही हैं वो मैं हाइट बढ़ाने में, अपना ब्रेन बढ़ाने में यूज कर रही हूँ, नॉट फैट इकट्ठा करने में।
3: सो यानी वो डिवाइड हो रहा है।
4: हाँ, वो इसलिए उस समय बच्चे लगते हैं अरे ये कमजोर हो रहे हैं।
3: हाँ, बिल्कुल। सो बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता होगा कि बच्चा जो है वो चलना सीख रहा है या दांत निकाल रहा है, इस वजह से वो पतला होता जा रहा है। जनरली वो हाइट भी बढ़ा रहा होता है और उसकी सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ लेटे रहने में नहीं जा रही है जो 6 महीने की उम्र में जा रही थी, अब वो चलना सीख रहा है, खड़ा होना सीख रहा है, तो इस वजह से भी वो डिवाइड हो रही है। इसलिए बच्चा थोड़ा सा अगर वेट रिड्यूस कर रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है। अब बच्चा कब एक्चुअली में अलार्मिंग सिग्नल देता है कि उसका वेट अब बहुत ज़्यादा है और अब आपको समझ

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं आप ही के बच्चे की हेल्थ के बारे में, यानी बच्चों में बढ़ रहा मोटापा, मोटापे से होने वाली प्रॉब्लम्स, और क्या वाकई बच्चा जो थोड़ा सा पतला है वो कमजोर है। ऐसी कुछ चीजें अक्सर पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आपके घर में एक बच्चा आता है तो उसके साथ बहुत सारे सवाल भी आते हैं। 6 महीने 7 महीने का चबी क्यूट बच्चा सबको बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर ये बच्चा अपना वजन लगातार बढ़ाता जाए और वो वेट कम ना हो तो क्या ये अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है? ऐसी कुछ बातें जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर अंजलि जैन, SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। तो डॉक्टर साहब, बच्चों की अब ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। हमने 6-7 महीने के बच्चे देखे हैं, बड़े क्यूट होते हैं और हर बच्चा क्यूट होता है, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा उनका वेट होता है, वो कह सकते हैं आप चबी होते हैं, और उसकी वजह से वो बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन क्या ये चबीनेस धीरे धीरे धीरे धीरे मोटापे की ओर जा सकती है? और अगर जा सकती है तो कैसे पेरेंट्स पहचाने कि अब बच्चा जो है वो एक्चुअली में मोटापे की तरफ चला गया है?
1: जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो वेट और हाइट दोनों ही बढ़ने चाहिए, एंड ये यूजली एक प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। इनके स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं WHO के, IAP के, जो जब भी आपकी पीडियाट्रिशियन विजिट्स होती हैं फॉर वैक्सीनेशन, तो यही सब देखा जाता है कि क्या वो प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। जब वेट हाइट की प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ने लगता है, देयर सर्टेन कट ऑफ्स, उनसे ज्यादा बढ़ते हैं, तो हमारा बच्चा दैट मीन्स वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। पेट पे फैट आने लगता है, फेस पे तो होता ही है, ओवरऑल बच्चा थोड़ा सुस्त भी होने लगता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहता। तो फिर ऐसे में जब वो परसेंटाइल्स क्रॉस करने लगता है, जैसे 95% के ऊपर जब जाता है ना वेट हाइट का कोरिलेशन, तो ओबेसिटी की तरफ जाता है।
0: जी, यानी आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे की हाइट जितनी है उतने हिसाब से एक वेट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 8-9 साल की उम्र है। जनरली हम आज से अगर 20 साल पहले के बच्चों में देखें, 20-25 साल पहले, वो 8-9 साल की उम्र में पतले हुआ करते थे, लेकिन आज थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। पिछले 5-6 सालों में बच्चों ने वेट को एकदम से बढ़ा हुआ देखा है, बच्चों के पेरेंट्स ने भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो 8-9 साल में, जब बच्चे पतले हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे, वो वाली चीज़ें छोड़ के अब बच्चे मोटे हो गए हैं। मोटे यानी वेट उनका ज़्यादा है। जो बच्चा 10 साल की उम्र के बच्चे की टी शर्ट पहनता था, वो अब 13-14 साल के बच्चे की साइज की टी शर्ट पहन रहा है। सो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं?
1: एग्जैक्टली, यूजली पहले, आजकल ना आप देखेंगे तो प्यूबर्टी भी बच्चों में जल्दी आने लग गई, ये ऑल बिकॉज ऑफ मोटापा है, ओबेसिटी है, हार्मोनल चेंजेस ही टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, जो शायद 13-14 साल में होने चाहिए थे जल्दी हो जाते हैं। उस समय बच्चा हाइट निकालता है, लेकिन क्योंकि फैट होने की वजह से उसके हार्मोन सारे डिस्टर्ब होते हैं, प्यूबर्टी ठीक से आती ही नहीं है। जैसे आजकल आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि लड़कियों को पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, लड़कों में मैच्योरिटी के साइंस बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, ये ऑल बिकॉज ऑफ ओबेसिटी है। एंड ओबेसिटी का मेन कारण आजकल इजिली अवेलेबल फास्ट फूड, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, कुछ पढ़ाई की वजह से, कुछ मोबाइल्स की वजह से, प्लस फास्ट फूड,
0: यानी जो खाना पीना,
1: फिजिकल एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी, ऑलमोस्ट निल सी हो गई है बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये सब ओबेसिटी को लीड करता है। ओबेसिटी लीड्स टू हार्मोनल इंबैलेंस, तो जो एक हमारे हार्मोन्स बढ़ने चाहिए होते हैं 12-13 साल की उम्र में, वो होता ही नहीं है, तो सब डिलेड है।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या हर ओवरवेट बच्चा जो होता है, सपोज एक बच्चे का वजन 25 किलो होना चाहिए, अब उसका 30-35 जा रहा है, तो क्या वो 20 की कैटेगरी में आने लगता है, या उसका मसल वेट कुछ गिना जाएगा? कैसे हम

0: पता लगाएं। मैंने जैसे आपको बताया था, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वेट एंड हाइट। उस कोरिलेशन को बोलते हैं BMI। जब एक BMI सर्टन वैल्यूज के ऊपर जाता है ना, तो उसे ओबेसिटी बोलते हैं। जब तक वो उससे कम है तो वो ओवरवेट है। यूजली बच्चों में 18 के ऊपर का BMI को कंसिडर करते हैं कि वो ओबेसिटी है।
1: ओके, 18 से ज्यादा होगा BMI तो वो ओबेस कहलाएगा। बच्चों के खाने की अगर मैं बात करूं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके खाने में घर वाले घी बहुत डालते हैं। ये हमारे कल्चर में शुरू से मान्यता है कि अगर आप घी का इस्तेमाल अच्छे से करें, देसी घी, तो आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई डॉक्टर अंजलि आज के समय में ये फ़ायदा पहुंचा रहा है?
0: सबसे ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली घी डज नॉट लीड टू ओबेसिटी। घी इज अ गुड फैट।
1: ओके,
0: और हमें फैट की जरूरत है हमारी बॉडी को। ब्रेन का फ्यूल ही घी होता है, फैट होता है। फैट खाने की वजह से हम ओबेस नहीं हो रहे, हम मोटापा हो रहा है फास्ट फूड की वजह से। शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इनकी वजह से, प्लस हमारी नो फिजिकल एक्टिविटी। खा हम ज्यादा रहे हैं, कैलोरीज हम ज्यादा ले रहे हैं, बर्न हम कम कर रहे हैं, तो वो इकट्ठा हो रहा है मसल्स के नीचे, लिवर के अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज हम घी फैट खा रहे हैं बच्चों में, इट इज बिकॉज हम शुगर्स ज्यादा ले रहे हैं, हम प्रोसेस फूड्स ज्यादा खा रहे हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं।
1: यानी जो पहले बच्चे गलियों में और पार्क्स में खेलते थे, वो चीजें अभी थोड़ी कम हो गई हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अपर मिडिल क्लास के बच्चे ही काफी जो है वो ओवरवेट की तरफ बढ़ जाते हैं, या हाई क्लास के बच्चे ओवरवेट की तरफ बढ़ जाते हैं। जो एक सिंपल सा सड़क पे खेलने वाला बच्चा होगा वो कभी मोटा नहीं होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऑलरेडी जो है वो कंज्यूम भी हो रही है। वो जितना खा रहा है, अगर वो कुछ भी खा रहा है, तो वो खेलते खेलते खेलते खेलते सब कुछ जो है वो बर्न हो रहा है।
0: प्रोसेस फूड्स हमारे उसमें इतने ज्यादा हो चुके कि शाम को स्नैक्स में चिप्स का पैकेट खुल रहा है,
1: नमकीन है, बिस्किट है,
0: पैकेट्स फूड, दिस ऑल आर अ रीजन फॉर ओबेसिटी।
1: तो प्रोसेस
0: घर का बना हुआ जिसमें घी हो इज नॉट अ कॉज फॉर ओबेसिटी।
1: यानी घी से कोई नुकसान नहीं है, बस आपको अगर घी खा भी रहे हैं तो थोड़ा सा, जैसे हम बचपन में घी खाते थे तो उसके बाद हम भागते दौड़ते भी थे।
0: ऑब्वियसली लिमिट में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट जो हम घी जितना खाते हैं यूजली एक रूटीन किचन में जितना यूज होता है वो ओके होता है। ओबेसिटी उसकी वजह से नहीं है। ओबेसिटी बेसिकली ये पैकेज्ड फूड्स की वजह से है
1: जी। यानी ओबेसिटी जो है वो आपके चिप्स, नमकीन, बिस्किट, केक,
0: बर्गर, मोमोज
1: के पैकेट्स में है। बर्गर और मोमोज, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अपने बच्चे को, ऑफ कोर्स कभी कभी तो देखिए सब कुछ चलता है, लेकिन अगर आप रेगुलर हैबिट है, बच्चे को आदत ही लग चुकी है, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बहुत सी बातें और भी जानने की कोशिश करेंगे बच्चों में बढ़ने वाले मोटापे को लेकर इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें, तो आप हमारी इंटरनेट ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए, पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए और RJ दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको डॉक्टर अंजलि के साथ हुई सारी बातें मिल जाएंगी।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी बच्चों में बढ़ रहे मोटापे के बारे में. इसके क्या नुकसान है, क्योंकि फायदे इसके खास है नहीं. बच्चा क्यूट लगता है वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो खोखला होता जा रहा है. क्योंकि आप बच्चे के वेट पर अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये वेट आगे जाकर प्रॉब्लम दे सकता है. बड़े लोग तो जिम चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सर्शन कराना आज के समय में कम हो गया है. क्योंकि ज्यादातर समय बच्चे लैपटॉप्स, फोन्स या टैबलेट्स पर बिता रहे हैं, जिसके कारण उनमें बढ़ता हुआ मोटापा एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ता चला जा रहा है. इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि जैन, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. डॉक्टर अंजलि, अब मैं आपसे ओबेसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान जानना चाहूंगी. क्योंकि एक लिमिट तक तो बच्चा क्यूट लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद वो बच्चा क्यूट नहीं लगता, वो बच्चा अलग सा लगने लग जाता है. पूरी क्लास में कहीं ना कहीं उसे बुलिंग का सामना भी करना पड़ता है, उसे बाकी चीज़ों में भी पीछे हो जाता है. जैसे वो ज़्यादा भाग नहीं पाता स्कूल में, स्पोर्ट्स डे में पार्ट नहीं ले पाता, डांस या इन चीज़ों में भी. ऐसे बच्चों को कई बार, अब तो नहीं हो रहा है लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि उन्हें आगे नहीं रखा जाता. तो एक थोड़ा सा बच्चे को कहीं ना कहीं असहज महसूस भी होता है. बट इस ओबेसिटी के नुकसान क्या हैं वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी. फिजिकली उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं?
1: ओबेसिटी से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं. जो एक्चुअली बीमारियां हम 50-60 इयर्स की एज में देखते थे, वो आजकल जल्दी आ गई हैं. 30-40 इयर्स, 20 इयर्स के लोगों को फैटी लीवर, बच्चों में होने लग गए हैं फैटी लीवर ओबेसिटी की वजह से. हार्ट डिजीजेस वो होने लगे, जॉइंट पेन्स, कमर में दर्द. छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे आके बताते हैं कमर में दर्द हो रहा है जी, भाग नहीं सकते हैं, सांस फूल रहा है भागने पे. ये फिजिकल इफेक्ट्स हैं. मेंटल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने बताया ऐसे बच्चों को बुलिंग होता है, वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस खराब होती है. और प्लस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी और जल्दी आना और लेट, दोनों ही चीज़ें देखी जा रही हैं आजकल. बहुत कॉमन हो गया है कि लड़कियों को पीरियड जल्दी आ जाते हैं, हाइट रुक जाती है. लड़कों में चीज़ें डिलेड हो रही है या जल्दी आ रही हैं, तो ये ओबेसिटी का कारण है. डायबिटीज़ होना, डायबिटीज़ इतनी कॉमन जो 30-40 साल में, उसका एक्चुअली जो कहते हैं शुरुआत तो यहीं से है, एडोलेसेंट एज की ओबेसिटी की वजह से है. हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो हो गए हैं वो इसीलिए है.
0: यानी फिजिकल एक्सर्शन ना करना मोटापा धीरे धीरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स ले आता है. क्योंकि जो आजकल हम खबरें देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी कहीं ना कहीं डराने वाली होती हैं कि छोटा बच्चा है, अभी कम उम्र है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई है, लिवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मोटापे की वजह से.
1: ट्रू. फैटी लीवर आजकल बहुत, 17-18 साल के बच्चों में फैटी लीवर दिखने लग गया है, जिसमें कि ये होता था 40-50 साल की उम्र में. क्योंकि बच्चा शुरू से ही ओबीस था, तो 14-15 साल में उसके लीवर के अराउंड फैट इकट्ठा होना शुरू हो चुका है. बड़े लोगों की बीमारियां आजकल हमको बच्चों में देखने लग गई हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी.
0: यानी सिर्फ मोटापे की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये सारी कहीं ना कहीं जानलेवा बीमारियां हैं. डॉक्टर साहब, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं आजकल, कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं. कोकोनट वाटर भी आजकल प्लास्टिक की बॉटल में पैक होकर आने लग गया है, लेकिन क्या ये भी उतना ही नुकसान पहुँचाते हैं जितना कोल्ड ड्रिंक्स नुकसान पहुंचा रही हैं, जितना पैकेज्ड जूस या ड्रिंक्स नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल. जिन भी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. फ्रेश चीज़ ही अच्छी होती है.
0: प्रिजर्वेटिव्स हमें उनके पीछे जो लिखी होती है सारी लिस्ट, उसमें से पढ़ना चाहिए.
1: बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं. आप देखेंगे इनमें सोडियम कंटेंट बहुत होता है. प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये मोटापे का रीज़न होता है. मोनोसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सब जो चीज़ें लिखी होती हैं, ये सब मोटापे का को इनवाइट करती हैं.
0: यानी अगर बच्चा सारा दिन कुछ नहीं खा रहा और एक चिप्स का पैकेट खा रहा है, तो वो उतना ही नुकसान देगा कि आप बाहर से बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो उतने ही बराबर का नुकसान होगा वो 20 रुपये के, 10 रुपये के चिप्स के पैकेट से.
1: बिल्कुल. ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सडनली शुगर स्पाइक्स करती हैं, तो आप बेसिकली डायबिटीज़ को इनवाइट कर रहे हो.
0: यानी कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये मोटापे को बढ़ा रही हैं, और मोटापे के साथ साथ बाकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हैं. आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और अगर फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं बच्चे में तो अब क्या सोल्यूशन है. ऐसी कुछ बातें और इन बातों के साथ ढेर सारे सोल्यूशन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर अंजलि जैन से, जो कि एक जानी मानी पीडियाट्रिशियन है, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, हमारे शो में आज गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में बढ़ रहा मोटापा कैसे कंट्रोल किया जाए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं. क्योंकि बच्चा क्यूट लगता है मोटे होने की वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन यही मोटापा अंदर ही अंदर उसकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो डॉक्टर अंजलि, मोटापे की जब हम बात करते हैं, ओबेसिटी की बात करते हैं, तो बच्चे ओबीस हैं, शायद उनका लाइफस्टाइल ठीक ना हो, वो तो एक रीजन है. क्या ये जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी ही थोड़ा ज्यादा वेट का है, ऐसा हो सकता है, और वही बढ़ता हुआ वेट आगे भी जाके दिक्कत दे सकता है? क्या जेनेटिक्स का इसमें कोई रोल है?
1: जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं कुछ कुछ ओबेसिटी के, बट दे आर वेरी रेयर, लाइक 1 in 1,000,000 किसी को जेनेटिक्स की वजह से होगा. मोर ऑफ जेनेटिक्स नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द फैमिली एनवायरनमेंट. जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, जो फैमिली का लिविंग स्टाइल है, फैमिली की ईटिंग हैबिट्स हैं, वो रीजंस होते हैं ओबेसिटी के. इसलिए घर में सारे ही ओबीज होते हैं. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, इट इज बिकॉज आपका फैमिली का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ही ओबेसिटी को प्रमोट करने वाला है.
0: यानी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो पेरेंट्स का लाइफस्टाइल है, वो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा. सो डॉक्टर साहब, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को ठीक करें? खासतौर पर मैं वर्किंग पेरेंट्स की बात करना चाहूंगी, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता कि हर चीज घर पे बना कर दें. दादी नानी हो घर में तो घर में नमकीन बनाई जा सकती है, घर में कभी हलवा बना के खिला दिया, शाम की भूख जो आपने कहा कि शाम को टी टाइम होता है तो बच्चों को अक्सर बिस्किट स्टिप्स दे दिए जाते हैं कि खा लो भूख लगी है. तो ऐसे में अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो क्या ऑप्शन निकालें, कैसे करें?
1: देखिए, पैकेट्स खोल के तो इज़ नॉट द सोल्यूशन. तो यही होता है कि वीकेंड्स पे आप अपने स्नैक्स रेडी कर सकते हैं. बेसिकली हमें ना अपनी सोच बदलनी है. ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है, ऐसे स्नैक्स जो हेल्दी हो वो बनाए जा सकते हैं. जैसे काले चने दे दिए, भुने हुए चने दे दिए, मूंगफली दे दी, पापड़ घर में बना के दिए, वाई चिप्स. आप राइस के पापड़ घर पे भी तो दे सकते हैं बना के, मखाने हैं. तो ये एक्चुअली सोच बदलनी है. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग लिटिल, बट यू हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंट. इसीलिए मैंने बताया कि ओबेसिटी एक्चुअली पूरे घर में होती है. जो गृहिणी होती है घर की, मदर, शी हैज टू थिंक डिफरेंटली कि हाउ कैन आई गिव न्यूट्रिशियस फूड एंड हाउ शुड आई ऑल्सो कंज्यूम. तो रेदर देन भाई घर पे आए हैं हम, चिप्स नहीं, भुजिया का पैकेट नहीं खोलकर क्यों ना हम सिवाई बना दें. क्यों ना हम मखाने पहले से रेडी कर लें सैटरडे संडे को, जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती है, आप डेली के लिए कुछ बना के रख लीजिए, भुने हुए चने.
0: यानी कुछ घर पे करना पड़ेगा,
1: मुरमुरे का नमकीन बना के रखिए.
0: तो थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा.
1: जब बच्चे को भूख लगे, रेदर देन एक पैकेट के लिए पैसे देना या पैकेट देना, आप डब्बे में से उसको वो पकड़ा दीजिए.
0: सो बिजी पेरेंट्स, सैटरडे संडे आपको थोड़ा सा अपने किचन में ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि आप ये चीज़ों के सोल्यूशन निकाल सकें. या नहीं तो अगर आपके पास कोई कुक हैं या हाउस हेल्प हैं तो उनकी भी मदद ले सकते हैं. बट हाँ, अगर आप वीकेंड पे एक घंटा भी इन चीज़ों के लिए निकालती हैं तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. डॉक्टर साहब, फ्रूट्स खाने का कोई नुकसान तो नहीं है बच्चों के?
1: फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस आर नॉट गुड.
0: ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो सुबह सुबह जूस निकाल के बच्चे को दे देते हैं.
1: एक्चुअली जूसेस में तो फाइबर चला ही गया, तो जो फ्रूट शुगर होती है वो सडनली आपकी शुगर स्पाइक करेगी. जूसेस आर नॉट गुड, फ्रूट इज गुड.
0: लेकिन हमने हमेशा देखा है कि फिल्मों में या टीवी में भी डाइनिंग टेबल पे एक बढ़िया सा जूस का जग रखा होता है और उस जूस को आराम से सब पीते हैं. अब वो सिर्फ देखिए दिखावे के लिए अच्छा लग रहा है, पर टेक्निकली अगर आज देखा जाए तो वो आज के समय में ठीक नहीं है. तो शुगर स्पाइक करता ही करता है. इसकी जगह अगर आप ऑरेंज जूस की जगह डायरेक्टली ऑरेंज खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा. डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, खासतौर पर से मैं जानना चाहूँगी आपके लिए, जो बच्चे होते हैं 10 से 15 साल तक के जो बच्चे, जिनकी हाइट भी बढ़ रही है, प्यूबर्टी भी आ रही है और मेंटल स्ट्रेस भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत है पढ़ाई में, तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए?
1: अच्छा, उसमें डाइट इज़ वन पार्ट, देन फिजिकल एक्टिविटी इज सेकेंड पार्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओबेसिटी को दूर रखने के लिए 8 hours ऑफ स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम अच्छा खा रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं तो दिस विल नॉट वर्क.
0: ओके,
1: तो इसलिए स्लीप अच्छी होनी चाहिए. हाँ, खाने में शुगरी ड्रिंक्स, रेडी टू ईट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए. एंड फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 5 डेज अ वीक तो होना ही चाहिए, 7 डेज है तो बहुत अच्छी बात है,
0: चाहे रनिंग हो चाहे साइकिलिंग,
1: कैसी भी 30 मिनट्स की जिसमें कि आपको पसीना आ रहा है,
0: यानी पसीना निकलना चाहिए, स्वेटिंग होनी,
1: कोई क्लास फिजिकल एक्टिविटी की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई स्पोर्ट्स कर लीजिए, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो साइकिलिंग करो, रनिंग करो,
0: यानी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। और डॉक्टर साहब कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें, जैसे अभी आपने चनों के बारे में बात करी कि चने और मखाने आप दे सकते हैं, कुछ ऐसी 5-6 चीजें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं।
1: हाई प्रोटीन चीजें होनी चाहिए, जैसे कि अपनी डाइट में कोशिश करके बच्चे की डाइट में किसी भी तरीके से प्रोटीन बढ़ाना है तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है चना, चना इन एनी फॉर्म, जैसे स्प्राउट्स कर दीजिए, नॉर्मल चना ना लेके किसी दिन स्प्राउट्स कर दीजिए और प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, नॉर्मल आटा ना लेके उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए तो उसी रोटी का प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, मैदा आइटम्स ना दीजिए, ठीक है, सैंडविचेस ना दे के थोड़ा सा इनोवेटिव होइए, दाल के चीले वगैरह खिलाइए, बेसिकली प्रोटीन हमको ज्यादा देना है बच्चे।
0: और जो आजकल मार्केट में बहुत सारी प्रोटीन ब्रेड्स मिलती हैं, लोफ मिलते हैं, क्या वो ठीक है?
1: पैकेट पढ़िए, हमेशा पैकेट के पीछे जो कंटेंट है ना पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी रिफाइंड मैदा है, रिफाइंड फ्लोर है और कितना प्रोटीन है।
0: यानी पैकेट को पढ़ के खरीदेगा अगली बार से, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर एक बार आपने पढ़ लिया और आपको पता चल गया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और वो चीजें हैं तो फिर आप उस चीज को कभी नहीं खरीदेंगे। इंस्टेड कि आप घर पे एक अच्छा सा पराठा बना के बच्चे को दे दें वो ज्यादा बेटर है, उसी का टैको, उसी का एक रोल बना के दे दें, बीच में सब्जियां भर दें, थोड़ा सा पनीर और चीज डाल दें तो वो भी ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड कि आप बाहर की चीज खरीद के बच्चे को दे रहे हैं।
1: एक बहुत छोटी सी हैबिट है कि जब मदर बेबी को हॉस्पिटल लेके आती है, कहीं भी घुमाने लेके जाते हो, तो आप लोग टिफिन में ना कुछ कैरी नहीं करते हो। यूजली क्या होता है, अच्छा उसे भूख लग रही है, रो रहा है, 10 रुपए का जो भी उस समय उस फैसिलिटी में अवेलेबल होता है कुरकुरे का पैकेट वो दिलाते हो। एक्चुअली हैबिट तो आप ही डाल रहे हो ना, क्यों नहीं उस पैकेट में आप उस एक टिफिन में आप एक पराठा बना के लेके आए हो, जब बच्चा रो रहा है या जब बच्चा भूखा है तो उसे वो खिलाओ, तो हैबिट तो यहीं से पढ़नी शुरू हुई ना।
0: बिल्कुल, तो यानी बच्चे की हैबिट को समझना जरूरी है और
1: अपनी हैबिट्स को ठीक करना जरूरी है, उसको हेल्दी अल्टरनेटिव्स आप जल्दी दो।
0: यानी बच्चे की भूख का टाइम सब पेरेंट्स को पता होता है कि हाँ आप 2 घंटे बाद उसको भूख लगेगी, तो पहले से ही थोड़ा सा कुछ लेकर चलें। वैसे आजकल काफी पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं पर फिर भी इन जनरल अगर देखा जाए तो रेशियो बहुत कम है।
1: हेल्दी ऑल्टरनेटिव हमेशा घर में रेडी रखने चाहिए, नमकीन वगैरह को बर्नियों में रखो कांच की ताकि बच्चे को दिखे और वो खाए।
0: जी, यानी कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाएं, टेस्टी चीज़ें बनाएं, YouTube में बहुत सारी वीडियोस हैं हेल्दी स्नैक्स की, उस पर फोकस कीजिए इंस्टेड के आप बाहर से बना हुआ कोई सामान खरीद रहे हैं अपने बच्चे के लिए। सो डॉक्टर अंजलि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी बेसिक चीज़ें पेरेंट्स को आज बताई हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, उनके बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू।
0: फिलहाल प्रोग्राम ऑल इज़ वेल में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: वापिस इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
3: ये क्या किया? मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
4: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
5: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा, जहां हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के एक बेहद प्रतिभाशाली और प्रॉमिसिंग यंग सितार मेस्ट्रो अधिराज चौधरी जी। अधिराज ने मात्र 6 वर्ष की आयु में सितार की साधना शुरू की और आज अपनी मेहनत, डेडिकेशन और एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रसिद्ध जयपुर सेनिया घराना से जुड़े हैं और 17 फ्रेट सितार की दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और संगीत तो मानो इन्हें विरासत में ही मिला है, क्योंकि ये महान सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी के ग्रैंडसन हैं और पंडित प्रतीक चौधरी जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विदुषी श्रीमती अनुपम महाजन जी, श्री नील रंजन मुखर्जी तथा इंटरनेशनली एक्लेम्ड सितार मेस्ट्रो एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी पंडित नीलाद्री कुमार जी के मार्गदर्शन में सितार की गहन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें CCRT स्कॉलरशिप, MS सुबुलक्ष्मणी फेलोशिप, कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां और G20 समिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुतियां और लगातार मिल रही सफलताएं इन्हें युवा पीढ़ी के सबसे प्रेरणादायक कलाकारों में शामिल करती हैं। और अपनी साधना, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण के साथ अधिराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अधिराज की इंस्पायरिंग म्यूजिकल जर्नी, रियाज और इनके गुरुओं से मिली सीख और इनके सपनों और संगीत के प्रति इनके जुनून के बारे में। अधिराज जी, सबसे पहले क्रिएटिव मंच में आपका हार्दिक स्वागत है और संगीत से आपका पहला परिचय कैसे हुआ इस बारे में हमें बताइए।
7: थैंक यू सो मच। संगीत से मेरा पहला परिचय ऐसा ही हुआ कि मैं जब बहुत ही छोटी उम्र से मैं संगीत के ही माहौल में पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी क्लासेस लेते थे, वह सितार वादक थे, तो फिर वही मैं सितार के माहौल में पला बड़ा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूजिक सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे इसीलिए म्यूजिक बहुत पसंद आने लग गया बचपन से। और उनके स्टूडेंट्स जब क्लास के लिए आते थे, मैं वहाँ भी बैठता था, मैं सबको सुनता था और मुझे बहुत मजा आता था। तो ऐसे ही करके मेरा संगीत से इंट्रोडक्शन हुआ था पहले।
6: लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने 6 वर्ष की आयु से मतलब सीखना शुरू किया, तो हमें तो 6 साल का बच्चा बहुत ही छोटा लगता है कि अभी उसे सही से ABCD वगैरह भी सीख रहा है। और सितार तो एक अपने आप में बहुत शायद मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता
7: जी,
6: है
7: जी।
6: तो कैसे आपने उस चीज को किया, या दादाजी और फादर की डांट से, मतलब क्या था उसके पीछे का आपका एक व्यू पॉइंट?
7: जी, मुझे जैसे कि बचपन से ही

0: म्यूजिक में और सितार की तरफ, इसलिए इस उम्र में मैंने सितार बजाना शुरू करा था।
1: जी जी जी, और अभी इस टाइम आपकी कितनी एज है?
0: जी इस टाइम मैं 17 साल का हूँ।
1: वाओ, मतलब 6 से बहुत साल हो गए आपको स्टार्ट किया, आपका पूरा अभी तक की लाइफ सितार बजा रहे हैं आप, और फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि आप अपने बहुत स्टेज शोज भी करते हैं हमने देखा। सो एक चीज बताइए, आपका कभी वोकल में भी ध्यान गया या इंस्ट्रूमेंट के प्रति ही रुचि थी?
0: जी मुझे वोकल भी बहुत पसंद है, पर इंस्ट्रूमेंट के प्रति मेरी रुचि ज्यादा है, क्योंकि मैंने सितार ही सीखा है, तो जो चीज मैंने सीखी है उसके प्रति मुझे सुनना, मुझे सभी चीजें सुननी बहुत अच्छी लगती है, पर सितार के लिए मेरी एक अलग ही डेडिकेशन है, मुझे सितार बहुत ज्यादा पसंद आता है।
1: अच्छा, तो जैसे हमने देखा है कि गिटार जब सीखते हैं तो उंगलियां काफी, मतलब फिंगर पे लगती है और कहते हैं छिल भी जाता है, तो आपने सितार तो मुझे लगता है और टफ है, तो किस तरीके से आपको भी कभी ऐसा होता था कि बहुत प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स ऐसे छिल गई है या कुछ चोट लग गई हो?
0: जी वैसे तो सितार अगर आपको बजाना है तो उंगलियां छिलनी है, आई थिंक कंपलसरी है, जरूरी
1: अच्छा।
0: है कि उंगली, अगर आपकी उंगली छिलेगी नहीं तो सितार आप बजा नहीं सकते, क्योंकि
1: अच्छा।
0: वो उंगलियों में कैलसेस जो होते हैं, लाइंस जो होते हैं, जो हम इसको बोलते हैं, वो सितार बजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुरुआत में तो किसी को भी दर्द होगा अगर बजाएंगे, जैसे आपने कहा गिटार जो लोग बजाते हैं उनकी उंगलियां इतनी छिलती है, लेकिन सितार में 2 ही उंगली का प्रेशर पड़ता है और तार स्ट्रिंग ज्यादा हार्ड होता है बेसिकली, तो सितार में और ज्यादा डीप छिलती है उंगली, छिलती नहीं है बट डीप लाइन पड़ जाते हैं, एंड शुरुआत में दर्द बहुत होता है, सो इसीलिए सितार काफी डिफिकल्ट है शुरू करना और बजाना भी बाद में, तो शुरुआत में भी काफी दर्द होता है, बट इसको कंटिन्यू अगर करते जाओगे तो दर्द भी कम होता जाएगा और लाइन को मेंटेन करना पड़ता है, तो बजाने के लिए लाइन जरूरी है, कैलसेस जरूरी है उंगली में मेरे हिसाब जी।
1: मतलब आपके अकॉर्डिंग, और मेरे ख्याल से गुरुओं का भी यही मानना है
0: जी,
1: ना?
0: जी गुरुओं का भी यही मानना है
1: जी जी,
0: क्योंकि लाइंस के बिना सितार बजाना बहुत मुश्किल है और उसमें फिर दर्द भी बहुत होगा तो जी।
1: और अधिराज, जैसे चलिए आपने तो 6 वर्ष की आयु से सितार हाथ में लिया आपने, और आपके दादाजी थे आपके गुरु रहे, आपके पिताजी आपके गुरु रहे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जनरल जैसे कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहे, अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहे, तो क्या एज होनी चाहिए? मतलब आपके तो घर का माहौल, चलिए हम कह सकते हैं कि वही था बचपन से, तो बट अगर किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है तो क्या 6 वर्ष में पॉसिबल है?
0: जी वैसे तो सीखने की कोई एज नहीं है
1: जी,
0: आप जब चाहो जिस एज में चाहो आप सब सीख सकते हो, सीख अगर डेडिकेशन है तो सब पॉसिबल है, पर अगर एक स्टार्टिंग में अगर एक कम वर्ष की आयु से आप सीखते हो और अगर आपके घर में म्यूजिक का माहौल है तो एक एडवांटेज मिल जाता है पहले से ही,
1: कि
0: आप अच्छे से सीख पाते हो बचपन से, पर मेरे हिसाब से सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, मतलब कोई एज नहीं है आपके हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सीखी हुई चीज बहुत अच्छे से हमें याद रहेगी, इंस्टेड ऑफ कि हम अगर 10th 11th 12th की एज में सीखे तो, है ना?
0: यस।
1: ओके, तो संगीत के क्षेत्र में आपके दादाजी और पिताजी दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं हमें पता है, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अनुभव कैसा है आपका?
0: जी तो अभी अभी तो मेरी एज उतनी ज़्यादा है नहीं कि मुझे अच्छे से अनुभव हुआ हो और मुझे ज़्यादा म्यूज़िक में मैंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी तक जो मैंने अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने की कोशिश रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही अपने ट्रेडिशन को ले जाते रहूँ और काफ़ी बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करूँ, अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊँ और अपने दादाजी और पिताजी का नाम रोशन करूँ आगे जाके। तो अभी तक मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और मैं आगे जाके और अच्छा करना चाहता हूँ।
1: जी अधिराज, और हमारे तो यही विशेष है कि आगे जाकर आप और भी सक्सेसफुल रहें। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त तो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अभी तक अधिराज हमने जाना कि आपने 6 वर्ष की आयु से सितार सीखना शुरू किया। आपके घर का माहौल था बहुत ही अच्छा, जिसके प्रति आपने अपना सितार बजाने की क्रिया को जारी रखा। अब हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपका घराना है जयपुर सेनिया घराना और गुरु शिष्य परंपरा, इन दो चीज़ों के बारे में हमें बताइए कि घराने एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जनरल जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता कि घराने क्या होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए।
1: तो घराने बेसिकली होते हैं स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशन होता है, जो लोग ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो घराने के लोग ही करते हैं। तो एक घराना बेसिकली एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक हो गया
0: जी।
1: जैसे कि बहुत अकेडमिक्स में बहुत स्कूल, जैसे आपने पढ़े होंगे बहुत सब्जेक्ट्स में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं साइकोलॉजी में, जैसे वैसे ही घराने भी स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक है। और हर घराने का अलग स्टाइल है म्यूज़िक अप्रोच करने का। कुछ घराने इंस्ट्रूमेंटल घराने होते हैं, सबसे पहले घराने वोकल घराने होते थे, उससे काफ़ी और घराने आए जो इंस्ट्रूमेंटल के घराने भी बने हैं। तो ऐसे ही कर करके बहुत घराने डेवलप हुए और सबका स्टाइल अलग होता है और यूनिक होता है। वैसे ही हमारा घराना है जयपुर सेनिया घराना। तो हमारे घराने की का हमारा घराना एक इंस्ट्रूमेंटल घराना है। तो उसका यूनिक स्टाइल ये है कि हमारे घराने में 17 पर्दे का सितार बजता है
0: जी,
1: 17 फेटेड सितार, और किसी घराने में नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारे घराने का यही यूनिक स्टाइल है 17 फेटेड सितार का, जो जनरेशन से पास होते आया है
0: जी।
1: हमारा घराना मसीद सेन जी से आता है, उस टाइम से लेके अभी तक ये जनरेशन में हमारा ट्रेडिशन पास होता गया है। तो ये हमारे घराने की खासियत है। और जी गुरु शिष्य परंपरा, उसमें जैसे मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे दादाजी और पिताजी से सीखने का मौका मिला, मेरे घर में ही म्यूज़िक का माहौल था, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट उस लिए। तो मैंने उनसे सीखा घर पे, तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं मानता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा म्यूज़िक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के साथ रहना भी पड़ेगा। उनके साथ रहने के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है
0: जी।
1: म्यूज़िक के अलावा भी काफ़ी आप चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, और म्यूज़िक भी आपका काफ़ी अच्छा होता है, आप जानते हैं चीज़ों को। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूज़िक में मेरे लिए
0: जी। तो आपके जीवन में आपके गुरुओं की सबसे बड़ी सीख क्या है
1: जी? मेरे लिए मेरे गुरुओं की सबसे बड़ी सीख है सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और डिवोशन। म्यूज़िक में सिंसियर रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है और ऑनेस्ट रहना है खुद से। कभी ऑनेस्ट ऑफकोर्स, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
0: बिल्कुल।
1: आपको अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा म्यूज़िक अगर आपको करना है सीरियसली तो। और डिवोशन ऑफकोर्स, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आपको उस फील्ड में अपने आपको पूरा डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो जी यही है,
0: मतलब तन मन धन से अपनी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रियाज भी करना है और एक सच्चाई के साथ
1: एंजॉय भी करना है, म्यूजिक को सुनना भी है।
0: हाँ, कहीं वो प्रेशर लेकर नहीं करना।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: म्यूजिक तो ऐसी चीज ही नहीं है कि प्रेशर लेकर किया जाए। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं
1: जी? वैसे मेरा फिक्स तो नहीं है, जब मुझे अभी मैंने 12th ख़त्म करा है।
0: अच्छा,
1: तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब रियाज कर लेता। मैं रोज़ ही रियाज करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जी, बट कोशिश करता हूँ कि मैं और आगे अपने टाइम को बढ़ाऊँ रियाज में और मेहनत करूँ। तो जी यही मेरी कोशिश है
0: जी। तो आपने 12th में क्या स्ट्रीम थी आपके पास
1: जी? 12th में मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी।
0: ओके, तो साथ में अपना प्रैक्टिस का समय निकाल पाते थे अपने लिए स्कूल के साथ साथ?
1: जी जी, मैं निकाल पाता था।
0: जैसे बोर्ड्स के एग्जाम है तो एक अलग प्रेशर होता है कि मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए,
1: वो तो होता है।
0: हाँ, तो उसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि आप कितना समय दे पाते थे अपनी प्रैक्टिस को, रियाज को?
1: उसी के मैं तब शाम के आज में रियाज करा करता था, 7 बजे इस टाइम के अराउंड रियाज करता था
0: जी।
1: तो इस टाइम पे मैं कोशिश करता था रोज 1-1.5 घंटा निकाल लूं रियाज के लिए। तो कोशिश होती थी, कभी कभी नहीं हो पाता था, बट मेरी कोशिश तो थी कि मैं रोज रियाज करूँ फिर भी
0: जी। जी, वैसे कोई भी अगर चीज़ है तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो वोकल है, डांस है या इंस्ट्रूमेंटल है। तो प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। ओके, तो जैसे सितार को ही आपने अपना वाद्य, मेन वाद्य जो चुना है, तो आपको कभी ऐसा ही लगा कि सितार की जगह कुछ और मुझे इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए था? कभी वो चीज मन में नहीं आई आपके?
1: नहीं, ऐसी चीज मेरे मन में कभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मैंने जब सितार सीखना शुरू करा था, सितार काफी पसंद था, और अब भी मुझे तब से यही लगता आया है कि मैंने सितार को चूज करके काफी अच्छी चीज करी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर ने मुझे सितार के बारे में बहुत सिखाया, सितार मुझे सिखाया उन्होंने, तो तब से लेके और हमेशा मुझे यही लगता रहेगा कि सितार मेरे लिए बेस्ट है। मुझे बाकी और इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत मन है, पर सितार ही मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा, क्योंकि सितार की टोन बहुत पसंद आती है और सितार मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, हमें भी मतलब सुनने में बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ओके, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है धीराज के आपको थकान है या आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब करना चाहते हैं प्रैक्टिस, बट एक होता है ना कि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, कभी होता है ऐसा या कभी भी नहीं होता?
1: वैसे ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं सितार बजाता हूँ, जब मैं रियाज करने जाता हूँ, तो इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी, क्योंकि पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थकान हो, दिन की थकान हो, काम कुछ भी हो जाए, जैसे स्कूल की थकान हुई करती थी पहले, तो कुछ भी दिन में हो जाए, तो सितार जब मैं बजाने बैठता था और जब मैं अब भी बजाने बैठता हूँ, इट फील्स लाइक थेरेपी फॉर मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बजा के
0: जी।
1: और उसमें तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोटिवेशन नहीं आ रही बजाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है
0: जी।
1: उल्टा मुझे काफी अच्छा लगता है बजाने के बाद, तो जी यही
0: मतलब एक फ्रेशनेस आती है,
1: फ्रेशनेस आ जाती है
0: जी जी जी, जी। बिल्कुल। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त तो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। सो अधिराज, आपने आपकी जो उपलब्धियां हैं हमने बहुत सारी देखी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। आपने देश के कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो कौन सा मंच आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
1: जी, मेरे दिल के सबसे करीब है यूमैक फेस्टिवल। जब भी होता है मुझे उसमें बजाने का मौका मिलता है, तो वह इंस्टीट्यूशन मेरे दादाजी का है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पहले, तो यूमैक फेस्टिवल में मुझे बजाने का जब भी मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वह मंच मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: जी। और यहाँ आपने अपने दादाजी की बात की, मैं चाहूँगी एक बार आप उनके बारे में और अपने पिताजी के बारे में अपने मुँह से खुद बताइए।
1: मेरे दादाजी एक गुरु से बढ़कर थे जी। वो मेंटर थे सबके लिए, उनके जितने भी स्टूडेंट्स आते थे सबको वो अच्छे से सिखाते थे, उनके लिए एक मेंटर थे। और जस्ट उन्होंने उनको ज़िंदगी जीनी भी सिखाई और म्यूज़िक भी सिखाया, उन्होंने हमारे घराने के बारे में सबको सिखाया और सब सारी चीज़ें बताई जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, और उनको जब भी वो अच्छा करते थे वो उनकी तारीफ नहीं करते थे, वो कहते थे और मेहनत करनी है हर बार में, ताकि वो और मेहनत कर सके स्टूडेंट्स। बट अंदर ही अंदर जब भी उनके स्टूडेंट्स अच्छा करते थे उनको भी अच्छा महसूस होता था, बट वो बताते नहीं थे। पर मेरे साथ मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, मुझे बहुत प्यार से सिखाते थे और मैंने ज़्यादा उन्हीं से सीखा है, अपने पिताजी से भी सीखा है पर मैंने दादाजी से ज़्यादा सीखा है। और मेरे पिताजी भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाते थे। पिताजी का स्टाइल बहुत यूनिक था, उनका लयकारियों पे ज़्यादा ध्यान था, लयकारी और उनकी स्पेशलिटी थी लयकारी स्पीड, और उनका अलग ही स्टाइल था, उनका बहुत यूनिक स्टाइल था मेरे पिताजी का।
0: जी।
1: और उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें सिखाई, तो जी सबने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे सबसे सीखने का मौका मिला।
0: जी लिसनर्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अधिराज से उनके दादाजी और उनके पिताजी के बारे में, मैं आपको बता दूं पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी अधिराज जी के दादाजी हैं और प्रतीक चौधरी जी इनके पिताजी, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अधिराज को उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, उनसे इतनी चीज़ें सीखने का मौका मिला। अधिराज, आई थिंक आप बहुत ही लकी, मैं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर शायद वो ना होते तो 6 साल की वर्ष में बच्चा क्या करता है कुछ हमें पता ही नहीं होता।
1: मैं आज जो हूँ, मतलब मैंने सितार की फील्ड में उन्हीं की वजह से आया।
0: जी बिल्कुल। तो अभी हमने आपके जो उपलब्धियों की बात की, अब एक है G20 समिट, तो इसमें किस तरीके से आप पहुंचे यहाँ पर, इसके बारे में बताइए हमें।
1: G20 समिट में मुझे इनविटेशन, जो वो स्टूडेंट्स को या म्यूजिशियंस को इनवाइट करते हैं, तो मुझे भी ऐसे इनवाइट करा था GSNA के थ्रू, कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं G20 समिट में परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड आई फील दैट आई एम वेरी लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे G20 समिट में परफॉर्म करने का मौका मिला। एंड जी,
0: और आई थिंक वो बहुत ही बड़ा स्टेज,
1: बहुत बड़ा स्टेज था, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स डिनर पे हमको परफॉर्म करने का मौका मिला और बहुत लोगों से मिला भी मैं, देश के अलग अलग जगह से लोग आए थे वहाँ पे, पूरे इंडिया के लोग थे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रेयर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अच्छा था।
0: जी, और इतनी कम उम्र में आपको एक इतना बड़ा स्टेज मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। जी। अधिराज, जहां हमने आपकी उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथ ही आपकी एक दो उपलब्धियां और बहुत ही अच्छी है, जैसे कि CCRT स्कॉलरशिप और MS सुब्बुलक्ष्मिनी फेलोशिप, ये दोनों मिलने के बाद आप कैसा आपने महसूस किया और क्या है इसके बारे में थोड़ा हमें एग्जैक्टली बताइए।
1: जी, जब मुझे स्कॉलरशिप और फेलोशिप अवार्ड मिला, तो फिर मुझे बहुत ऑनर्ड और गर्व फील हुआ कि एंड आई फेल्ट वेरी लकी टू गेट दीज अवार्ड्स। एंड CCRT में जब मेरा नाम रजिस्टर हुआ, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था CCRT के बारे में, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 2019 में था आई थिंक CCRT। एंड CCRT इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यंग आर्टिस्ट को मौका देती है परफॉर्म करने के लिए, सो वो हर साल या वो टाइम टू टाइम में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहाँ पे वो यंग आर्टिस्ट को बुलाते हैं और साथ में परफॉर्म करवाते हैं, और म्यूजिशियन वहाँ पे सब कुछ होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है और भी चीजें होती है, थिएटर भी होता है.
0: अच्छा.
1: और वो बहुत एक्सपोजर भी देते हैं सब यंग आर्टिस्ट को और लोगों लोग के और वो लोगों से मिल भी सकते हैं सब आर्टिस्ट.
0: मतलब यंग आर्टिस्ट के लिए बेसिकली ये है.
1: जी.
0: Nice, very nice.
1: मुझे फेलोशिप मिला था उसके लिए. आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज फेलोशिप हर साल 50 स्टूडेंट्स को मिलता है, 50 म्यूजिक स्टूडेंट्स या म्यूजिशियंस को मिलता है फेलोशिप अवार्ड. और वहाँ पे भी सेम, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है. वहाँ पे बहुत इंडिया के बहुत बहुत जगहों से लोगों से मिलने का मौका मिलता है. जी.
0: नाइस. आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की. हम आशा करते हैं ऐसे ही आप और नाम रोशन करिए. सो अब हम बात करते हैं अधिराज, युवा पीढ़ी और शास्त्रीय संगीत. तो आप क्या मानते हैं कि युवाओं को अगर शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा?
1: जी, युवाओं को शास्त्रीय संगीत की ओर अगर आकर्षित करना है तो उन्हें शास्त्रीय संगीत पहले सुनना पड़ेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत गहरा है.
0: बिल्कुल.
1: और अगर जैसे कि अगर इंटरेस्ट आपका बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में है तो शुरुआत में आपको अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा सुनना पड़ेगा अगर आपको आकर्षित होना है तो.
0: जी.
1: और शास्त्रीय संगीत क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत म्यूजिक इज एंडलेस चाहे किसी भी फॉर्म में हो. तो आकर्षित अगर करना है तो आपको सुनना पड़ेगा पहले अच्छे से.
0: अधिराज, आपकी बातें भी ना बहुत गहरी हैं. उम्र आपकी इतनी छोटी है लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका ये इंटरव्यू सुन के. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दे रहा है?
1: जी जरूर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान मिल रही है क्योंकि पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ज़्यादा लोग यंग जनरेशन जो थी वो शास्त्रीय संगीत को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी और म्यूजिशियंस को एक्सपोजर नहीं मिलता था. अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत म्यूजिशियंस को एक्सपोजर भी मिल रहा है और सब शास्त्रीय संगीत को सुन भी पा रहे हैं, लोगों तक संगीत पहुंच पा रहा है.
0: जी.
1: तो जी, सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत
0: मतलब
1: लोगों
0: पहचान
1: तक
0: मिल रही है और लोग शायद सुन भी रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
1: और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं.
0: जी. सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे अधिराज चौधरी जी के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: सुन रुबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिराज जी। और अधिराज एक बहुत ही अमेजिंग सितार प्लेयर हैं। सो अधिराज, अगर आप एक सितार प्लेयर ना होते तो आप क्या होते?
1: जी वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता तो क्या होता। अच्छा। पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं आगे एकेडमिक्स ही परस्यू करता अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता।
0: जी जी।
1: मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है।
0: अच्छा।
1: शायद वो परस्यू करता
0: जी। और सितार के अलावा आपकी और क्या हॉबी?

0: है, जैसे अभी तो जो भी आपका फ्री टाइम होता होगा आप सब अपना रियाज में ही देते होंगे, बट उसके अलावा क्या और हॉबीज हैं वो हम जानना चाहेंगे
1: जी। बाकी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो अच्छा। मुझे स्पोर्ट्स देखना भी बहुत पसंद है।
0: तो स्पोर्ट्स में आप क्या खेलना पसंद करते हैं?
1: मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है
0: जी। जी नाइस। और अधिराज, एक लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो यंग पीढ़ी के लोग सितार सीखना चाहते हैं या संगीत को अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: जी, उनके लिए मैं संदेश देने के लिए मेरी उम्र काफी छोटी है, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सितार सीखना है यंग पीढ़ी को, तो फिर आपको पहले एक आप किसी भी गुरु के पास जाइए, क्योंकि आप खुद से सीखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी, तो आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए और उसके बाद आपको जो भी गुरु जी बताए आपको उसमें अपना ध्यान से आपको उसमें ट्रेन करना चाहिए और अपने टेक्निक्स सही करने चाहिए और आपको सुनना चाहिए म्यूजिक अच्छे से। सुनना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: बजाने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। तो जी, आप अगर म्यूजिक सुनेंगे ज्यादा तो आपको और आइडियाज आएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा
0: जी। आई होप जो लोग सुन रहे हैं और म्यूजिक में अपना करियर चुनना चाहते हैं उन्हें अधिराज की ये जो उन्होंने सजेस्ट किया है उसे फॉलो जरूर करेंगे। सो अधिराज, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी?
1: जी जी।
0: ओके, सुबह का राग या शाम का राग?
1: वैसे मुझे सारे राग पसंद है, चाहे सुबह के हो कि शाम के हो, बट मैं शाम को रियाज ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरा शाम का राग है।
0: जी, दादाजी, पिताजी या गुरुजी की डांट सबसे ज्यादा किसकी पड़ी है डांट आपको?
1: दादाजी की।
0: अच्छा, मंच पर जाने से पहले एक आदत?
1: मैं मंच पर जाने से पहले मैं उस दिन रियाज नहीं करता, उस दिन मुझे फ्रेश रहना होता है कि सीधा जाके स्टेज पे ही या उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं, पर उस दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ।
0: वाओ, पसंदीदा कलाकार कौन है आपके?
1: जी, मेरे दादाजी।
0: जी,
1: मुझे बहुत कलाकार पसंद है पर मेरे दादाजी मेरे फेवरेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द में संगीत को अगर डिफाइन करेंगे किस तरीके से?
1: डेडिकेशन।
0: वाओ, तो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जाते जाते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके क्या आगे गोल्स हैं, क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से आप करेंगे उनको?
1: जी, आगे तो अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स तो अभी ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है, पर मुझे बस यही है मेरे दिमाग में कि मुझे अपने घराने का ट्रेडिशन आगे लेके जाना है। मुझे आगे सितार परस्यू करना है और आगे अपने घराने को लेके जाना है और बहुत मेहनत करनी है, बस यही है मेरा गोल।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपकी एक सोच और आप बहुत ही अच्छे, आपने जो हमारे लिसनर्स को आज सीख दी डेफिनेटली वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। और इतनी छोटी उम्र, सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी उम्र में इतना ठहराव, दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे स्टूडियो में। तो सो थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello. गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ. और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव. हमारे शो होता तो बहुत खास है, हर बार हमारे साथ एक खास मेहमान होते हैं जिनके साथ हम ढेर सारी बातें डिस्कस करते हैं. वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो द पॉइंट इज कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की जो हम बात कर रहे हैं उसको एज अ स्किल हम लोग बता पाएं, समझा पाएं, सिखा पाएं, ये हमारा एक टॉपिक होता है. आज हमारे साथ हैं मिस्टर अक्षय कक्कड़. अक्षय जो है, मैं पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ. मायरा फिल्मों करके प्रोडक्शन हाउस है इनका, वो ये रन करते हैं. एंड ही इज बीन अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस फॉर आई गेस मोर देन अ डेकेड नाउ. ठीक है, जितना मैं इनको जानता हूँ, एक अच्छा खासा अरसा इन्होंने गुजारा है, प्री वेडिंग से लेकर के म्यूजिक वीडियोस से लेकर के बहुत सारी और स्किट्स हैं, एड्स हैं, मूवीज हैं, इन सबको इन्होंने बनाया है, पूरा प्रोसेस देखा है. तो आज के शो में अक्षय हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में बता रहे होंगे. तो मोटी मोटी बात इतनी सी है कि आज का शो जब तक खत्म होगा तब तक आप प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे, जो रफ स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे अपने शो की, और सबसे पहले स्वागत करेंगे अक्षय का. सो हाय अक्षय, आपका स्वागत है हमारे शो में.
2: थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एंड आपने मुझे इतना काबिल समझा, उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड दैट वाज अ वेरी हम्बल इंट्रोडक्शन ऑफ मी. एंड एज यू हैव ऑलरेडी सेड दैट आई एम वर्किंग फ्रॉम मोर देन अ डिकेड, दैट इज अ वेरी ट्रू. एंड आई स्टार्टेड अर्ली इन लाइक 2013 एंड सो. तो तब से हम वीडियोज बनाते आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियोज बनाते आ रहे हैं, एक्सल्स बनाते आ रहे हैं, और जितने भी आजकल जैसे पहले हमारा फॉर्मेट चलते थे 16:9, और अब पूरा इंस्टाग्राम की वजह से 9:16 हो गया, तो अब वो भी हम कर रहे हैं. एंड या
1: सो वंडरफुल. विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ के, मैं कह सकता हूँ, मास्टर हैं. एक दशक से ज़्यादा आपने वक्त उसको दे दिया है, इतने सारे चेंजेस आपने देखे हैं, ट्रेंड्स को बदलते देखा है, क्लाइंट्स को बदलते देखा है, लोगों की डिमांड्स को चेंज होते हुए देखा है. जैसा आपने अभी मैंशन किया कि 16:9 से लेकर 9:16 का जो रेशियो आया है, वो पूरा का पूरा 180 degree जो शिफ्ट हुआ है, वो भी आपने उस बदलाव को देखा है. सबसे पहले अक्षय, मैं बहुत बेसिक्स की बात करना चाहूंगा. व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्शन हाउस, एग्जैक्टली होता क्या है एक प्रोडक्शन हाउस, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं प्रोडक्शन हाउस के, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कवर्ड होते हैं, पहले हमें थोड़ा सा वो क्लियर करिए.
2: सो प्रोडक्शन हाउस इज बेसिकली अ मीडियोकर ऑफ अ क्लाइंट एंड द व्यूअर्स. लेट्स सपोज इफ यू आर अ क्लाइंट, यू वॉन्ट टू मेक अ वीडियो, यू वॉन्ट टू showcase particular product or you want to make a music video, so आपको वो production करने के लिए किस चीज़ की requirement लगेगी, वो सारा काम जो होता है वो एक production house का होता है. Let's suppose we are making a music video and we are looking for artists, we are looking for locations, we are looking for catering persons, we are looking for light vendors, we are looking for camera vendors, and the क्लाइंट इज ओनली लुकिंग एट कि उसको एक म्यूजिक वीडियो चाहिए, बट पीछे इतने सारे लोग होते हैं जिसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता. एंड ऑल व्हाट क्लाइंट नो इज कि उसके व्यूअरशिप कौन है. तो जितना भी बीच का काम होता है, जितना भी व्यूअरशिप में अच्छा दिखने वाला काम होता है कि भाई हमारे व्यूअर्स को ये चीज पसंद आएगी, ये सारी चीजें जानना, ये उसके जानने के बाद उसको उस तरीके से बनाना प्रोडक्शन हाउस का काम होता है.
1: सो बेसिकली आपका काम होता है कि क्लाइंट जो चीजें मांग रहा है वो सुनना, सारी चीजें अरेंज कराना, चाहे उसमें कोई भी VFX की बात है, चाहे साउंड की बात है,
2: स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्रोडक्शन, डूइंग द प्रोडक्शन एंड इवन फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन. सो देयर आर 3 कैटेगरीज इन प्रोडक्शन. जैसे हम प्री प्रोडक्शन करते हैं जहाँ पे हमारे डिस्कशंस होते हैं, क्लाइंट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या उसके डिलीवरेबल्स होंगे, कब हम शूट करने वाले हैं, क्या हम शूट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता होती हैं. दैट अगर शाहरुख खान को चलाना है तो वो कितने कदम चलेगा, ये सारी चीजें पहले से ही प्री नोटेड होती हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग. देन शिफ्ट टू प्रोडक्शन डे, जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, हम लोकेशन पे जाते हैं, आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, कैमरा टीम के साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन लाइन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करते हैं, देन वी शिफ्ट टू पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ पे हम लोग किसी चीज को एडिट पर लेके आते हैं। देन वी हैव एडिट टेबल जहाँ पे एडिटर बैठ के वीएफएक्स भी करते हैं, म्यूजिक भी फाइनलाइज करते हैं और वो सारी चीजें फाइनल होने के बाद एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने आता है।
1: सो अमेजिंग। तो अभी तक हमने दोस्तों बेसिक्स की बात करी है, यहाँ पर हमने समझाया कि प्रोडक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट इट व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, होता क्या है। ठीक है, अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक लेयर और यहाँ से हटाएंगे और थोड़ा सा डेप्थ में चलने की कोशिश करेंगे। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट फिलहाल आप कहीं जाइएगा मत, जुड़े हमारे साथ, फील गुड फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक, आई जस्ट होप आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। मैं हूं सागर, शो चल रहा है यहां पर वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अक्षय कक्कर, जो कि फाउंडर हैं मायरा फिल्मों के, और एक दशक से भी ज्यादा का वक्त इन्होंने इस एक प्रोफेशन को दे दिया है। एंड ही इज प्रेटी गुड एट इट, ठीक है, सब कुछ समझते हैं बहुत पहले से, जब रील्स जैसी चीजें और ये शॉर्ट वीडियोज जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, तब से अक्षय भाई जो हैं इस प्रोफेशन में हैं, तब से वो काम करते आ रहे हैं, तब से वो कॉन्टेंट क्रिएट करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ जानते हैं और बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अक्षय भाई, अभी तक तो हमने जाना है बेसिक्स के बारे में कि प्रोडक्शन होता क्या है, बहुत बेसिक से कि आप क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्या मांग रहा है, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, और उसको एग्जीक्यूट करा करके जो फाइनल डिलीवरी होगी, फाइनल फाइल होगी, वो आप उसको दे दोगे। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बहुत केओस होता है और आप चाह करके भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। साउंड वाले होते हैं, लाइट्स वाले होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, मेकअप वाले होते हैं, स्पॉट दादा होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, आपका काम है सबको मैनेज करना, सबको सेम पेस पर लेकर आना, एक स्टोरी लाइन जो चल रही है उसके बारे में सब लोग सोच पाए, ये आपकी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हाउ डू यू मैनेज दैट केओस, कैसे होता है वो पीपल मैनेजमेंट?
2: सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स। First producer is who is investing into that particular project in terms of money. And other producer जो होता है वो इन सब सारे लोगों को manage करने के लिए होता है, यानी कि वो film produce करने के लिए producer जो होता है on ground, वहाँ पे जिस चीज की requirement है, जो चीज उनको किसी भी, चाहे DOP हो, चाहे director हो, चाहे lightman हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी बंदे को same पेज पर लाने का काम जो होता है वो एक production manager का होता है, जो कि सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। एंड ही क्रिएट्स अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने उनको लोकेशंस के बारे में बताया हुआ है कि भाई किस टाइम पे उनको कौन सी लोकेशन चाहिए, तो वो उस चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं, यानी कि उनका जो नेक्स्ट मूव होगा एंटायर क्रू का, वो लाइन प्रोड्यूसर जो होगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर जो होगा, वो ऑलरेडी उनसे एक स्टेप फॉरवर्ड होगा, ताकि उनके लिए वो सारे क्योर्स जो हैं वो ना क्रिएट हो। यूजुअली हम लोगों ने कई बार ऐसा भी देखा है कि बहुत से ऐसे शूट होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा टीम पहुंच जाता है, बट देयर वी मेट विद लेट्स से कि हमें वहां पर ऐसे ऐसे बहाने मिलते हैं कि भाई यहाँ पे तो परमिशन ही नहीं है शूट के, आप यहाँ पे शूट ही नहीं कर सकते, या फिर यू कैन नॉट फ्लाई अ ड्रोन, यू कैन नॉट क्रिएट दिस मच क्रू। तो ये सारी चीजों को पहले से ही वाइंड अप करता हुआ एक प्रोडक्शन मैनेजर चलता है, जो कि वो सारी चीजें हैंडल करता रहता है।
1: ओके, सो यू डू हैव मैन पावर फॉर दैट पार्ट?
2: करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: ऑलराइट। अक्षय, टफेस्ट पार्ट क्या होता है? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि जब आप पूरा एक प्लान बनाते हो कि हम फील्ड पे जाएंगे, ऐसे शूट करेंगे, ये वाले शॉट्स होंगे, ये डायलॉग्स होंगे, ये कॉस्ट्यूम होगा, ये मेकअप होगा, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से साउंड आएगा, ये साउंड इफेक्ट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, उसके बावजूद आई एम अज्यूमिंग कि प्रॉब्लम्स आती होंगी। ऐसा होता होगा कि ऑन फील्ड, ऑन सेट आपको इम्प्रूव करना पड़ता होगा, ऑन सेट जो प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ आपको डील करना पड़ता होगा।
2: करेक्ट। सो आवर बेसिक थिंग इज कि सबसे पहले हमारे पास आता है स्टोरी, स्टोरी लाइन जो होगा, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियो का हो, किसी भी चीज में एक स्टोरी होती है, तो वो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंगली हम लोग एक मूड बोर्ड तैयार करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम किस कलर पैलेट पे चलने वाले हैं, किस मूड से हम लोग उस फिल्म को देखना चाहेंगे, इन टर्म्स ऑफ वो एक्साइटेड रहने वाली है, इन टर्म्स ऑफ वो सस्पेंस में रहना चाहती है, थ्रिलर में रहना चाहती है, तो उधर से हमारा जॉनर डिसाइड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग शूट पर जाते हैं, तब हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो हमने सोची तो होती हैं, बट वहां पे अवेलेबल नहीं हो सकती किसी के तौर पे। लेट सपोज हमने सोच लिया कि एक शिफॉन की साड़ी पहना के बर्फ के पहाड़ों पे म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे, बट वो जो बर्फ का पहाड़ है उसको क्लाइम करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है।
1: ओके,
2: तो कैसे करेंगे? वहां पर हमें कई बार डाउट हो जाता है, तो व्हाट वी डू इज कि वी डू अ क्विक रेकी, ताकि हम लोग पहले उस लोकेशन को देख लें, वहां जाने के लिए हमारे पास क्या क्या सीमाएं हैं, कहां किस किस को हम क्रॉस करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें इट कम्स इन प्री प्रोडक्शन, द रेकी टर्म कम्स इन प्री प्रोडक्शन। तो वहां पर जैसे मान लो हमने देख लिया, अब सडन चेंज हो गया कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो ही चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे? देन वी हैव टू वेट. अगर बारिश हो गई तो कुछ कर ही नहीं सकते, एंड अगर आंधी तूफान आ गया तो वी हैव टू वेट. तो ये सारी चीजें जो होती है, एक कम्स इन अ क्लॉक, जहाँ पर हम लोगों को कभी ना कभी क्लाइमेट के आगे तो झुकना ही पड़ेगा. द सन इज नॉट कमिंग आउट ऑफ एनीवन्स हाउस, वो अपनी मर्जी के हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है.
1: सो फ्लेक्सिबिलिटी आप लेकर रखते हो अपने साथ कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं.
2: करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो प्लान बी शुड बी देयर.
1: So wonderful, so wonderful. Akshay, there must be phases, there must be moments when you feel burned out, when you feel there is a creative block, especially when it comes to long shoots. जब आप रात रात भर शूट कर रहे हो, दिन दिन भर शूट कर रहे हो, तो ऐसे टाइम आते होंगे जब बर्न आउट फील होता है, क्रिएटिव ब्लॉक फील होता है, बट यू कांट स्टॉप द प्रोडक्शन. व्हाट्स द की, और आई वुड से व्हाट्स द हैक टू डील विद दैट सिचुएशन?
2: So first of all, staying calm is the only key. अगर हम शूट कर रहे हैं एंड we are thinking कि भाई हमारा शूट आउट ऑफ लीक जा रहा है, आउट ऑफ टाइम जा रहा है, आउट ऑफ बजट जा रहा है, द ओनली थिंग टू कीप योरसेल्फ इज कीप काम. जितना भी आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट हो या जितना भी आपका प्रोडक्शन छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, बट अगर आपने अपना टेम्परमेंट लूज कर दिया तो वहां पे थिंग्स कैन नॉट कम टू बैक इन द प्लेस. अगर डायरेक्टर, कई बार हम शूट कर रहे होते हैं तो कई बार 30-30 टेक्स हो जाते हैं, तो डायरेक्टर यूज टू मतलब सामने जो आर्टिस्ट है उनको अच्छा नहीं लगता, उनका मूड खराब हो जाता है कि भाई डायरेक्टर को नहीं समझ में आ रहा, तो ही इज जस्ट टेम्परमेंट उसका आउट हो गया, वो थोड़ा सा लाउड हो गया. तो उससे क्या होता है कि वो चीजें और डिले होने लग जाती हैं. इन चीजों को सबसे पहले कामली हैंडल करना है, सबसे पहले इन चीजों के लिए कभी भी गुस्सा नहीं करना. स्टे काम. सी द प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड एनीवे. यू हैव टू टेक एन अपॉर्चुनिटी कि भाई हम इसको रिलीज जरूर करेंगे. अगर जैसा भी शूट हो, आई ऑलवेज से कि मेक इट, शूट इट एंड अपलोड इट, दैट इज द ओनली की. अगर हम ये सोचें कि भाई हम एक ही दिन में सीधा ऑस्कर लेके आ जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. सो यू हैव टू टेक अ स्टेप, यू हैव टू बी आउट ऑफ योर बॉक्स, तब आपकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाती हैं.
1: All right. So amazing, so amazing. So, बहुत सारी बातें हमने करी हैं अभी तक अक्षय से, और कुछ बातें और हैं मेरे पास जो मैं करना चाहूँगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से हॉल्ट का, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर जो बहुत ही आई वुड से कि जादुई लगती है, कुछ कुछ मैजिकल जैसा साउंड करता है. मतलब एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करना, एक फिल्म है, गाना है, एड है, वो कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, लाइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड कितना केओटिक सीन्स होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पर अक्षय के साथ. तो करेंगे आगे, कॉन्वर्सेशन को लेके जाएंगे, बट कहीं जाइएगा मत. स्ट्रेट ऑन, फील गुड.

0: ऑन दिस नोट आई जस्ट होप आपको ये म्यूजिकल वाइब पसंद आई है। मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ मिस्टर अक्षय कक्कड़। काफी सारी बातें अक्षय भाई से हमने अभी तक करी हैं, कुछ कुछ चीजें और हैं जो डिस्कस करनी है। अक्षय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड डेडलाइंस, बिटवीन आर्ट एंड एफिशिएंसी? क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरा क्रिएटिव फील्ड है, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि जब मेरा मूड बनेगा तब मैं क्रिएटिवली करके दूंगा। देर आर डेडलाइंस, जो अगर मीट नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि चीजें यू नो संतुलन में है, डेडलाइन और क्रिएटिविटी दोनों का बैलेंस आप रख पा रहे हैं मेंटेन?
1: So, balancing this thing makes you professional. If you can balance this balance all these things properly, then you are the only, then you are the professional. अगर हम लोग कहें कि भाई हम अपने मूड के हिसाब से काम करेंगे, we don't care for the deadline or something. तो अगर मेरे पास कोई अपना ब्रांड का प्रमोशन लेके आया है, so उसके डेट्स के अकॉर्डिंगली मुझे चलना पड़ेगा, rather than मैं अपनी क्रिएटिविटी को। हाँ, AI helps us to make this thing possible in time. मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे को एक बहुत ही क्रिएटिव स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मेरे को एक पहले हमें होता था कि भाई हमें पूरा अच्छा थॉट चाहिए होता था, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना होता था, चार बंदों के साथ डिस्कस हमें करना होता था। बट AI have helped us. चैट जीपीटी पे डालिए या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप डालिए कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, कितने आर्टिस्ट के साथ काम करना है, कितने मिनट का आपको एड फिल्म बनाना है, वो सारी चीजें डालने के बाद आप AI से ही अपनी एक जो स्क्रिप्ट होगी बेसिक वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी को ऑलरेडी पुश मिल जाएगा। जब आप एक ब्लैंक कैनवस में होते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्या पेंट करना है, बट अगर कोई खराब पेंटिंग होगा तो उसको कैसे सही करना वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी के थ्रू हम लोग अब अपनी स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर चुके हैं। उसी AI प्लेटफॉर्म्स को हम लोग अपने काम में यूटिलाइजेशन करके इन चीजों के साथ और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएटिविटी को बैलेंस आउट करके, ताकि हम अपने डेडलाइंस को बीट कर सकें।
0: So wonderful. बहुत प्यारी बात आपने बोली कि एक ब्लैंक कैनवास के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या बनाना है, लेकिन अगर एक खराब पेंटिंग ऑलरेडी आपके पास है सो यू डू हैव अ डायरेक्शन कि क्या नहीं करना है और कैसे से उसको सही करना है। सो अमेजिंग. अक्षय, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देर आर पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू बी एक्टर्स, लाइक हाउ डू यू रिकमेंड यू नो टू गेट सेलेक्टेड और टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, स्पेशली एडवर्टीजमेंट्स और जो भी प्रोडक्शन जाता है, तो कैसे एक्टर्स को काम मिल सकता है, व्हाट्स द प्रोसेस?
1: सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें एक बेसिक पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए जिसमें आपके एक्टिंग स्किल्स थोड़े बहुत नजर आ सके, चाहे वो हम किसी भी मोनोलॉग को कॉपी करके उसको पेश करें। बट अपेरेंटली फ्रॉम स्टार्टिंग यू हैव टू मेक योरसेल्फ कि भाई मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आप कोशिश कीजिए आपके कोई नोन में हो, कोई फ्रेंड्स में हो, जहां पर आपको प्रोडक्शन के अंदर लेकर आ सके, एंड यू कैन असिस्ट समवन। अगर आप किसी को असिस्ट करेंगे तो आप 10 नए लोगों से मिलेंगे, वहां अपना इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपको और असिस्टेंस का मौका मिलेगा, तब जाकर आप अपने क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ मूवी ऑफ अ गोविंदा वेयर ही वॉज अ लाइटमैन एंड ही वॉज मेकिंग अ लाफ्टर ऑफ अ एक्टर कि भाई ये लाइन्स तो मैं भी बोल लूंगा। तो वो चीज जो है वो चीज आपको तभी मिल पाएगी। आपको देखिए आज की डेट में 2025 में प्लेटफॉर्म हर किसी के पास है, बट करेक्ट प्लेटफॉर्म किसके पास है? मतलब अगर मैं आज बात करूं तो एवरीवन हैज अ फ्रीडम टू अपलोड हिज हर वीडियोस ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो who is there to tell them ki which part of yours is correct or which part of yours is incorrect? So this things will get to know when jab aap kisi ko assist karoge, jab aap kisi ke paas jaake sikhoge, jab aap kahin jaoge, to wo cheeze tab pata chalti hai.
0: So you have to be a part of a project and most importantly you should have a portfolio ready ki jab bhi koi producer ya director aapse kuch mang raha hai so you are not standing there blank. That is your job.
1: You must do internships in this field taki aapko experience mile, taki aap kuch na kuch naya seekhte rahe.
0: So amazing. पैसे की बात करेंगे अक्षय, when it comes to productions, is it a profession जहां पर अच्छा पैसा मिल सकता है, या बस इसको एक पार्ट टाइम हॉबी के तौर पर देखा जाए, पैसे के लिए कुछ और किया जाए? लाइक व्हाट डू यू हैव टू से आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन अ डेकेड नाउ?
1: सो द मनी कम्स विद द एक्सपीरियंस. इफ आई से कि मैं कल से स्टार्ट करूं और मुझे नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट ईयर से मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता. एक्सपीरियंस गिव्स यू मनी. इफ आई से कि भाई मैंने 10 साल लगा दिए एंड नाउ आई गो टू करण जौहर एंड से कि भाई मेरे को फिल्म में जो है मेन पे काम करने दें, तो हो सकता है वो मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट ना करे. सेम गोज विद एवरीथिंग एवरीवन. कि भाई अगर कोई भी बंदा मेरे पास किसी भी प्रोडक्शन हाउस के पास जाता है तो दे विल आस्क अबाउट द पोर्टफोलियोज और द वर्क दे हैव डन अर्लियर, और वहीं से हम लोगों का एक्सपीरियंस बनना शुरू होता है. व्हेन वी डू वन थिंग, सी सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमें तब मिलता है जब हम फिल्म फेस्टिवल्स के ऊपर फिल्म बना के डालते हैं. अगर हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल्स पे लेट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी फिल्म को अपलोड कर सकते हैं फॉर फ्री. सो दे आर फ्री प्लेटफॉर्म्स. तो आप अपनी फिल्म्स बनाए, फिल्म्स बना के अपलोड करें, यू विल गेट टू नो एक्सपीरियंस कि भाई जो आपके जजेस हैं उन्होंने आपको क्या फीडबैक दिया है आफ्टर वॉचिंग योर फिल्म. वॉच फिल्म्स, वॉच शोज ऑफ हॉलीवुड, बॉलीवुड और वट एवर यू वॉन्ट टू सी, बट लर्न फ्रॉम देम.
0: सो अमेजिंग, सो अमेजिंग. सो मनी कम्स आफ्टर एक्सपीरियंस. द मोर यू गेन द एक्सपीरियंस, द मोर यू गेट द स्किल्स, द चांसेस आर हायर दैट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट इट ऑल स्टार्ट्स विद अ विल, विद अ ज़ील. ऑलराइट अक्षय, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस मैन. कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप एड ऑन करना चाहते हो, प्लीज फील फ्री.
1: सो द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू एड इज कि डोंट जस्ट थिंक फॉर वट यू हैव. कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई वी डोंट हैव गुड कैमरा, वी डोंट हैव गुड लाइट्स, वी डोंट हैव गुड इक्विपमेंट्स टू शूट, बट यू हैव द क्रिएटिविटी, यू हैव द स्टोरी, यू हैव द लीश ऑफ एवरीथिंग. आई मीन टू से इफ समवन इज क्रिएटिव, दैट पर्सन डजंट नीड एनी इक्विपमेंट टू शोकेस व्हाट ही वांट्स टू प्ले. आई मीन कि जिसको शोकेस करना है कुछ भी, वो अपने स्किल को शोकेस करे, नॉट द इक्विपमेंट. इक्विपमेंट डजंट मैटर एट अ पॉइंट, बट इट मैटर्स जब हम कमर्शियल्स की तरफ जाते हैं, नॉट फॉर द प्रैक्टिस और समथिंग.
0: All right. So amazing. Thank you so much, Akshay. It means a lot to us कि आपने इतनी सारी चीजें, इतने सारे insights हमें दिए. हालांकि हमने जस्ट ऊपर ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश करी है, अभी इन डेप्थ बहुत ज़्यादा हम नहीं जा सके क्योंकि समय बहुत सीमित होता है हमारे पास. बट स्टिल मतलब आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम यू, इट मींस अ लॉट. थैंक यू सो मच मैन.
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड आई होप एवरीवन हैव लर्न्ड समथिंग फ्रॉम मी, एंड आई होप दे विल बी रिकॉर्डिंग मेनी ऑफ द फिल्म्स.
0: या थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच. यस डेफिनेटली लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आपसे. दोस्तों, अगर अक्षय के लिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अक्षय से कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, सो 8010781078 हमारा नंबर होता है. इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए. विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके क्वेश्चन एड्रेस करें अक्षय, चाहे भले ही हमें एक और एपिसोड करना पड़े, विल डू इट. बट डू लेट अस नो वट एवर द डाउट्स यू हैव दैट आर रिलेटेड टू यू नो प्रोडक्शन, कास्टिंग, लाइट्स, म्यूजिक, साउंड, एक्टिंग और whatever the department you are chasing, just do let us know. Now on this note, this is your dost and this is your host RJ Sagar signing off. अच्छा लगा ये show हमने किया यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक कुछ मूल्य हम लोग पहुँचा पाए. Now, नमस्कार, this is Sagar signing off.

हम कोई भी करें, फसल चाहे कोई भी हो, मिट्टी का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बात चल रही है खुम्भ की, तो खुम्भ की खेती अच्छे हवादार कमरे, शेड, बेसमेंट, गैरेज यानी कि इन जगहों पर की जा सकती है। पैडी स्ट्रॉ खुम्भ को बाहर शेड वाले स्थान पर उगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं किस्मों की। इसमें एक किस्म है जिसका नाम है बटन खुम्भ। इस किस्म को पूरे विश्व में उगाया जाता है और पूरे साल उगाया भी जा सकता है। सफेद बटन खुम्भ में उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है। इसका ताजा और डिब्बा बंद उपभोग किया जा सकता है। इसकी औषधीय विशेषताएं हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक यानी कि खुम्भ उगाने वाले ये मुख्य राज्य हैं। यूपी में खुम्भ को उगाने के लिए नवंबर से मार्च का महीना उपयुक्त होता है और अच्छी वृद्धि के लिए इसे 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और खुम्भ निकलते समय इसे 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो रही बटन खुम्भ यानी कि किस्म की बात। एक और किस्म है जिसका नाम है स्ट्रॉ खुम्भ। इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, बात चल रही है खुम्ब के बारे में और उसकी किस्मों के बारे में। अभी पीछे मैंने आपको बताया था बटन खुम्ब के बारे में, अब आपसे बात करूंगा स्ट्रॉ खुम्ब के बारे में। ये पूरे विश्व में उगाई जाने वाली तीसरी सबसे प्रसिद्ध किस्म है। इसे कपास के व्यर्थ मिश्रण के साथ यानी पराली की छोटी मात्रा के ऊपर उगाया जाता है। ये छोटे आकार की खुम्ब होती है जो कि कोण के आकार की होती है। इसकी टोपी ऊपर से गहरे भूरे रंग की होती है और भारत में इसकी तीन प्रजातियां हैं किसान भाइयों। पहली डिप्लेसिया, दूसरी वी वोल्वेसिया और तीसरी वी एस्क्यूलेंटा। इन प्रजातियों के अलावा उत्तर प्रदेश में वोल्वेरिला वोल्वेसिया की खेती की जाती है। इसे चाइनीज या पैडी खुम्ब के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें बड़े स्तर पर उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। इन्हें 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उगाया जा सकता है और इस किस्म की खुम्ब की खेती के लिए अप्रैल से सितंबर का जो समय होता है ना, वो बहुत ही उपयुक्त होता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेती करने की तकनीक के बारे में। स्पान यानी खुम्ब के बीजों की तैयारी, ये बाजार में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें खेत में भी तैयार या उत्पादन किया जा सकता है। ताजे तैयार किए हुए खुम्ब के बीज प्रयोग के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं और खुम्ब की खेती बड़ी मात्रा में खेत के व्यर्थ पदार्थ और अन्य सामग्री जैसे व्यर्थ कागज, कपास का व्यर्थ पदार्थ, अनाज की पराली यानी कि इन सब पर की जा सकती है। धान की परावली और गेहूं की पराली मुख्य तौर पर प्रयोग होने वाली सामग्री है, जिनका प्रयोग सब्सट्रेट की तैयारी के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक बात आपको और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, कार्बन डाइजिम 7 ग्राम के साथ फॉर्मोलिन 125 मिलीलीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर डालें और एक मिश्रण तैयार कर लें और फिर उस मिश्रण में 20 किलो गेहूं की पराली डालें और इसे 18 घंटे के लिए रख देना चाहिए। अब 18 घंटों के बाद क्या होगा वो भी सुन लीजिए। 18 घंटों के बाद गेहूं की पराली को हटा दें और इसे एक सतह पर रखें और इसमें से अतिरिक्त पानी को निकाल दें। गेहूं की पराली की बात करें तो गेहूं की पराली में 2% बीज डालें और इस मिश्रण को 15x12 इंच की पॉलिथीन बैग में भर लें। पॉलिथीन बैग 2 मिलीमीटर अर्ध व्यास की छिद्रित हो और हवा परिसंचरण के लिए पूरी सतह पर लगभग 4 सेंटीमीटर के छेद होने चाहिए। उसके बाद बैग को 80-85% आर्द्रता वाले कमरे में शेल्फ पर रखना चाहिए। कमरे का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, बैगों को सुरक्षित जगह पर रखें और पानी के छिड़काव द्वारा इनमें नमी बनाए रखें। पराली पर सफ़ेद रंग की सूती माइसीलियम विकसित हो जाती है। गेहूं की पराली अपना रंग बदलकर भूरे रंग की हो जाती है और आवाज़ करती है और सिकुड़ जाती है। इस अवस्था में पॉलीथीन को काट कर निकाल दें। पॉलीथीन में पराली सिकुड़ जाती है और बेलनाकार हो जाती है। इन बेलनाकार पराली के आकार को शेल्फ पर लगाएं और इसमें पानी के छिड़काव द्वारा नमी बनाए रखें। अब बात आती है कि भाई पौधे की देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं। उनके बारे में भी आपसे बात करूँगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: लेकिन वो बात।
1: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए किसान भाइयों, अब पौधे की देखभाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं फंगस की बीमारियों के बारे में। भूरे धब्बे फंगस या वर्टिसिलियम बीमारियां। देखिए किसान भाइयों, कभी कभी खुम्ब की छतरी पर हल्के भूरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं, जिससे धीरे धीरे खुम्ब का जो आकार है वो अनियमित हो जाता है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र में इस बीमारी को देखा जाए तो इन धब्बों की बहुत पतली और सफ़ेद से सिलेटी रंग की और एक सेल फंगस देखी जा सकती है। अगर ये बीमारी फैल जाए तो खुम्ब चमड़े जैसी हो जाती है और बिना किसी गंध के सूख जाती है। अब सवाल आता है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, तो वो भी सुन लीजिए। इस बीमारी के फैलने से पहले इसे रोकना जरूरी हो जाता है। कमरे को साफ करें, हवादार रखें, सभी यंत्रों को धूल रहित रखें, तापमान को ना बढ़ाएं और इंडोफिल M45 0.25 से 0.5% तक की स्प्रे 3 बार करनी चाहिए। पहली केसिंग के समय, दूसरी पिन बांधने के समय और तीसरी 2 फसलों की तुलाई के बाद करें। इसके अलावा एक होती है किसान भाइयों हरी फंगस। ये बीमारी खास तौर से कंपोस्ट और केसिंग मिट्टी पर होती है। ये विषाणु केसिंग मिट्टी में जहरीले तत्व का उत्पादन करता है। ये खुम्ब के पतले तत्वों को मार देते हैं और डंठल गहरे भूरे से लाल भूरे रंग का हो जाता है। ये फंगस गहरे हरे रंग की होती है और खुम्ब की छतरी पर जख्म बनाती है। इसका उपचार करने का तरीका ये है कि डिथियोकार्बोमेट या बेंजामाइडोजोल से कंपोस्ट या केसिंग को विषाणु रहित बनाकर इसे रोका जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कुछ बैक्टीरियल बीमारियों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बैक्टीरियल ब्लॉच की। इसके कारण छतरी की सतह पर भूरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं। शुरू में ये हल्के रंग के होते हैं, लेकिन बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इसका उपचार कुछ इस तरह किया जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हाइपोक्लोराइड 150 ppm डालें और इसको नियंत्रित करें। इसके अलावा हानिकारक कीट भी होते हैं, उनकी रोकथाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें नाम आता है निमाटोड का। निमाटोड स्पान को खाते हैं। उपचार इसका ये है कि इसे पास्टुराइजेशन से नियंत्रित किया जा सकता है। कंपोस्ट के समय इसकी रोकथाम के लिए फुराडान 120 ग्राम यानी प्रति 300 ग्राम डालना चाहिए, तो इससे भी आप निजात पा सकते हैं, इससे भी रोकथाम कर सकते हैं। अब सारे काम तो कर लिए हैं, हमारी फसल तैयार भी हो गई है। अब बात आती है फसल की कटाई की, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, सारी बातें कर ली हैं खुंब के बारे में, अब बात करते हैं फसल की कटाई की। स्पॉनिंग के 18 से 20 दिन के बाद पहली खुंब दिखनी शुरू हो जाती है और एक सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 खुंब दिखनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसान भाइयों, जब खुंब की टोपी मुड़ना शुरू हो जाए तो खुंब की तुड़ाई कर लें। तुड़ाई के लिए तीखे चाकू का प्रयोग करें और इसे उंगलियों से मरोड़ कर भी तोड़ा जा सकता है। इसे ताज़ा भी खाया जा सकता है या धूप में या मशीनी ड्राइड से सुखाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। 45 से 60 दिनों के अंदर 1 टन सूखी पराली से 500 किलो से ज़्यादा ताज़ी ताज़ी खुंब प्राप्त की जा सकती है और इसका अच्छे से लाभ हासिल किया जा सकता है। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिन उपन्यासों को पढ़कर लोग जागरूक हुए हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू अपनी लड़कियों को कॉलेज पढ़ाते हैं और बहू भी पढ़ी लिखी ही लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, उपन्यास में लेखिका द्वारा शशांक की दादी के जीवन को पुराने काल में जीती एक स्त्री के संग्राम को दिखाया है, तो आधुनिक समय में शशांक की माँ को एक सुदृढ़ एवं शिक्षित महिला के रूप में दर्शाया है, जो शारीरिक रूप से कमजोर बेटे का संबल बनती है और घर से बाहर जाकर काम भी करती है। शशांक की दादी के द्वारा विकलांग शशांक के लिए झाड़ फूंक करवाने की परंपराओं पर कुठार घात करती लेखिका द्वारा दर्शाया गया है कि विकलांग शशांक नहीं है, बल्कि समाज के लोग वैचारिक रूप से विकलांगता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के परंपरागत मूल्यों का विघटन आवश्यक है और शशांक की मां की दृढ़ता के द्वारा सामाजिक चेतना के उत्कर्ष को दिखाया गया है। तो दोस्तों, अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, व्यक्ति का समाज के प्रति विद्रोह प्रत्यक्ष ना होकर धर्म, रीति, रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति यानी कि इनके प्रति है। प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा संघर्ष के इस परोक्ष रूप का संबंध समाज के सभी पहलुओं से होता है। इसी परोक्ष रूप का चित्रांकन लेखिका द्वारा सामाजिक परिवर्तन के स्वर में मुखरित हुआ है, क्योंकि एक जमाने का सत्य दूसरे जमाने की मिथ्या हो जाता है। जानकी दास तेजपाल मेंशन का जय गोविंद इसी मिथ्या सत्य का विरोध करता प्रतीत होता है। क्या गोविंद नहीं जानता कि ये दुनिया उन लोगों के तलवे चाटती है जिनका बैंक बैलेंस उनसे दुगने से लेकर 100 गुने तक होता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी कड़वी लेकिन सच्ची बातें अलका सरावगी ने अपने शब्दों के माध्यम से कही हैं। इनकी बातों का जिक्र होता रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, वास्तव में ये सामाजिक आर्थिक विषमता का ढांचा हमारे समाज पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि नैतिक विकृतियां जन्म लेने लगती हैं। वर्ग भेद की खाई गहरी होने लगती है तो अलका सरावगी ने समाज की इस दोहरी सोच को बखूबी प्रस्तुत किया है। पैसे की होड़, उसके पीछे दौड़ता समाज सारी मर्यादाओं एवं नैतिकताओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लेखिका ने व्यक्ति प्रतिष्ठा के मूल्य का प्रत्यक्ष स्वरूप भी प्रस्तुत किया है। जानकी दास तेजपाल मेंशन का जय गोविंद जानता है कि माँ ने ये विश्वास बनाए रखा है कि वो दोनों अनपढ़ लोगों की दुनिया से अलग हैं। भले ही छठी क्लास फेल पड़ोसी भी करोड़ों में खेल रहा हो, पर उनके पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: यहाँ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
2: दोस्तों, आज बात हो रही है लेखिका अलका सरावगी के बारे में। सामाजिक चेतना को संदर्भित करते हुए अलका सरावगी ने उसकी सार्थकता को दर्शाया है, जिसके लिए उन्होंने मुक्त एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाने से परहेज नहीं किया है। उन्होंने विगत के सुलभ परंपरागत आग्रह के साथ आधुनिक वैज्ञानिक बदलाव को प्रतिष्ठित किया है। एक बेरक के बाद उपन्यास में के शंकर अय्यर एक तमिल ब्राह्मण हैं, परंतु वो एक बंगाली कायस्थ कन्या से प्रेम विवाह करता है। एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण का मांस मछली खाने वाली बंगाली बाला से प्रेम विवाह को समय के साथ होने वाले सामाजिक परिवर्तन को दर्शाया है। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं उन्होंने अपने लेखन में शामिल की हैं। इनकी बातों का जिक्र होता रहेगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
3: तेरे भी।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अलका सरावगी ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में समकालीन समाज की दशा एवं दिशा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। आज के दौर की सामाजिक चेतना कुछ अलग ही दिशा की ओर बढ़ रही है। पहला संचार की प्रचुरता और दूसरा उपभोक्तावादी समाज का आविर्भाव नए किस्म का सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें उपभोक्ता और अलग अलग जीवन शैली के लोग उभर कर आए हैं। ये समकालीन समाज का भौतिकतावादी स्वरूप है, जिसे अलका सरावगी ने वैश्वीकरण के संदर्भ में विस्तार दिया है, जिसके कारण जीवन मूल्यों का संक्रमण, व्यक्ति का असंतोष, नए पुराने विचारों का संघर्ष, नारी का बदलता स्वरूप, जो कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक भी है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। वास्तव में अलका सरावगी के समग्र उपन्यासों में अपने समय के सामाजिक यथार्थ का मौलिक विवेचन है, जो आज के जटिल समाज के बहुआयामी चित्र को उकेरते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति में फंसे अंतर्द्वंद से ग्रस्त सामान्य व्यक्ति कब स्वार्थी, भ्रष्ट एवं अनैतिक बन जाता है, उसे मालूम ही नहीं रहता। कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू का लड़का, जो उनके व्यवसाय अब चला रहा है, किशोर बाबू के पूछने पर कि मेघना जूट का ऑर्डर मिल गया है तक लड़का बोलता है, कहाँ पापा, सेल्स डिपार्टमेंट ने सैंपल रिजेक्ट कर दिया है, उसका आदमी लेबी घूस खाना चाहता है, कहा है 20 गांधी से कम नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, अलका सरावगी ने उन मुद्दों को उठाया है जो कि हमारे समाज को कमजोर करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने लेखन में शामिल की हैं कि जिन बातों को अगर लोग अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो ये हमारा समाज और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अलका सरावगी के अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें करूँगा। फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात।

0: बात करूंगा, अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।
1: चलो।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूं आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और उसी के साथ लेकर आती हूं आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और दोस्तों, ट्रेंडिंग तड़का में हम बात करते हैं हम सबकी, हमारी बात, हमारी रोजमर्रा से जुड़ी हुई बात, कोई ऐसी बात जो आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग होता है। कभी कोई मूवी हो गई, कभी सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड हो गया, तो कभी कोई वायरल वीडियो, या फिर कभी कोई टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी न्यूज़ जो हम सबकी डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है। और इन्हीं बदलते ट्रेंड को समझने के लिए आपका अपना ट्रेंडिंग तड़का आ जाता है आपके पास, जहां पर हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि क्या ट्रेंड कर रहा है, बल्कि ये भी समझते हैं कि उस ट्रेंड का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी होस्ट और दोस्त के साथ आरजी स्नेहा के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज ट्रेंडिंग तड़का में लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक जिसके साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जिससे शायद आप रोज मिलते हैं। कभी आप ऑफिस में हो, या कभी फोन पर, कभी सोशल मीडिया पर हो, या फिर कभी आप अपने सिंपल से सवाल के जवाब के लिए उसे यूज करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आप पूछेंगे कि स्नेहा यार, इस पर तो हमने बहुत बार बात कर ली है, फिर से क्यों? जी हाँ, ये आज के टाइम का इतना हॉट टॉपिक है, तो इस पर बात करना तो बनता ही है यार। इस पर जितनी बात कर लो ना, उतनी कम है। तो आज का जो टाइम है ना, वो हम सब जानते हैं कि AI से हम ईमेल लिखवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, फोटोज भी एडिट करवाते हैं, और आइडियाज भी डिस्कस कर रहे हैं, और कभी कभी तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तक AI के सामने रख देते हैं। लेकिन जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, जब हम AI को इतना कुछ बता रहे हैं, तो क्या हमें ये भी पता है कि हम एक्चुअली क्या शेयर कर रहे हैं उसके साथ? आज के टाइम में अगर हम न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, तो अगर हम उसमें भी देखें ना, तो AI और प्राइवेसी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न समझाने को आया है, जो कि आपको हमेशा इन्फॉर्म करते रहते हैं कि AI जनरेटेड फोटोज का यूज और पर्सनल डेटा की सेफ्टी, और ये सिर्फ एक ऐप या फिर किसी पर्सन की बात नहीं है, ये एक टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो हर उस इंसान से कनेक्टेड है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज करता है। जी हाँ, हम अक्सर प्राइवेसी का नाम सुनते ही पासवर्ड, OTP या फिर कहें तो बैंक डिटेल्स के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन प्राइवेसी की दुनिया उससे भी ज्यादा काफी बड़ी है। आपकी एक फोटो, एक डॉक्यूमेंट, एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन, ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल हो, या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और यहीं पर AI को समझने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आता है कि AI से सवाल पूछना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब हो सकती है जब हम बिना कुछ सोचे समझे उस सवाल के साथ अपनी जरूरत से ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देते हैं उस पर। मान लीजिए आप AI से पूछते हैं कि मेरे लिए एक प्रोफेशनल लीव एप्लीकेशन लिख दो। इसके लिए आपको अपना पासवर्ड, ID नंबर या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सिंपल सी बात है, AI को काम समझाना जरूरी है, लेकिन हर डिटेल को शेयर करना, उसको बताना ये जरूरी नहीं है। तो आज की इस ट्रेंडिंग तड़का में हम AI से कोई डरने की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे AI को इंटेलिजेंटली यूज करने की। क्या एक नॉर्मल सी फोटो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकती है? क्या AI चैटबॉट की कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें उसके साथ शेयर करनी चाहिए या कौन सी नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, AI की दुनिया में अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल हम कितना अपने हाथ में रख सकते हैं? इन्हीं सब सवालों के कुछ जवाब है जिसके बारे में आज मैं लेकर आई हूँ, और समझेंगे हम उसके बारे में। पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं AI के बारे में, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने बात की कि AI यूज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना ही नहीं है, बल्कि अपने डेटा को भी समझना है। अब जरा एक बहुत कॉमन से सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आपके फोन में कोई अच्छी सी फोटो है, आप चाहते हैं कि AI उसका बैकग्राउंड चेंज कर दे, आपकी फोटो को प्रोफेशनल बना दे, या फिर ओल्ड फोटो रिस्टोर कर दे, या उसमें कोई क्रिएटिव इफेक्ट या फिर कुछ भी एक्सेट्रा ऐड कर सकता है उसमें। आपने क्या करा, आपने ऐप को ओपन किया, फोटो को सिलेक्ट किया और बस अपलोड कर दिया, काम हो गया। लेकिन क्या सिर्फ फोटो अपलोड हुई? यहीं पर थोड़ा सा रुककर सोचना जरूरी है।

इन फोटो के थ्रू हमने उसे और भी इन्फॉर्मेशन दिखा दी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर फोटो अपलोड करना अनसेफ है। AI बेस्ड फोटो टूल्स का यूज बहुत ही यूजफुल भी हो सकता है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम बिना कुछ सोचे या फिर ये मान लेते हैं कि फोटो है इसमें क्या ही होगा। एक सिंपल हैबिट यहाँ पर काम आ सकती है कि अपलोड करने से पहले फोटो को एक बार जूम करके ज़रूर देखिए कि उसके अंदर कोई बाकी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं छुपी, क्या उसमें कोई ID कार्ड विजिबल है, या फिर कोई एड्रेस या फिर कोई फ़ोन नंबर तो नहीं दिख रहा, या फिर क्या बैकग्राउंड में कोई ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पड़ा हुआ है ना जो आपको बहुत ज़रूरी है, और क्या फ़ोटो किसी और पर्सन की है जिनकी परमिशन आपने नहीं ली है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि AI जनरेटेड या फिर AI एडिटेड फोटो और ओरिजिनल फोटो में डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है। आज AI किसी फोटोग्राफ को कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे सकता है, इसलिए अपनी फोटोज को कैजुअली अपलोड करने के साथ साथ दूसरों की फोटोज का यूज को लेकर भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन को छुपाना ही नहीं होता है, बल्कि प्राइवेसी का मतलब ये भी होता है समझना कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को किसी प्लेटफॉर्म को और या फिर किसी पर्पज के लिए शेयर कर रहे हैं या अपने काम के लिए कर रहे हैं। तो अगली बार AI से फोटो एडिट करवाने से पहले एक सेकेंड रुकेगा और खुद से पूछेगा, क्या मुझे सिर्फ फोटो ही एडिट करवानी है या मैं इस फोटो के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि स्मार्ट एडिटिंग से पहले स्मार्ट शेयरिंग ज़रूरी होती है। अब सवाल एक और आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, कि फ़ोटो के अलावा AI चैटबॉट को हम अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन कभी कैजुअली नहीं देनी चाहिए। इसको भी समझेंगे लेकिन अगले सेगमेंट में। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हैं हम आपके लिए लेकर कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज जिसकी बारे में बात हो रही है वो है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि AI को एक सिंपल फोटो अपलोड करना भी, कभी कभी सिर्फ फोटो शेयर करना नहीं होता है, बल्कि लेकिन असल चैलेंज सिर्फ फोटोग्राफ्स तक लिमिटेड नहीं होती है। हम AI से बात करते हुए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी कैजुअली शेयर कर देते हैं, ये भी समझना जरूरी है। आज AI चैटबॉट हमारे लिए एक तरह का डिजिटल असिस्टेंट बन गया है। हम उससे ईमेल्स लिखवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को समराइज करवाते हैं, ट्रेवल प्लान्स बनाते हैं, और फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी समझते हैं, और कभी पर्सनल सिचुएशन पर एडवाइस भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप किसी अननोन पर्सन के साथ कैजुअली शेयर नहीं करेंगे, उसे AI टूल पर भी अपलोड करने से पहले ज़रूर सोचिएगा। और सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल में से एक है कि पासवर्ड्स और OTPs। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन किसी चैटबॉट को देने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, जैसे कि CVV, कोई भी बैंकिंग डिटेल हो गई, UPI पिन जैसे फाइनेंशियल डिटेल्स भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये सब हमारी पर्सनल चीजें हैं जिसे हम किसी को नहीं शेयर करते। लेकिन प्राइवेसी का रिस्क सिर्फ बैंकिंग इन्फॉर्मेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। मान लीजिए आपके ऑफिस का कोई कॉन्फिडेंशियल प्रेजेंटेशन है, या फिर किसी क्लाइंट का कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट, या फिर कोई कंपनी का इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। आप सोचते हैं कि AI से इसकी समरी बनवा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। काम कन्वीनियंट जरूर है, लेकिन पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या आपको वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी एक्सटर्नल AI सर्विस पर अपलोड करने की परमिशन है या फिर नहीं। इसी तरह पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, लीगल पेपर्स, या फिर किसी दूसरे पर्सन की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को भी अपलोड करने से पहले पर्पस और प्राइवेसी सेटिंग समझना जरूरी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है पर्सनल कॉन्वर्जेशन। जी हाँ, कभी हम AI को अपनी रिलेशनशिप, या फिर फैमिली, या फिर वर्क प्लेस, और या कहे तो पर्सनल सिचुएशन के बारे में बहुत डिटेल में बताने लगते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई बात करने को नहीं है, तो इसलिए हम AI से बात कर लेते हैं। जनरल गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आइडेंटिफाइड डिटेल देने से बचना बहुत सेंसिबल अप्रोच है। जी हाँ, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा मिसइनिमेशन। जी हाँ, इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मतलब देखे तो जितनी इन्फॉर्मेशन काम के लिए जनरली ज़रूरी है उतनी ही शेयर करिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर AI को एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है तो उसे पूरा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत शायद नहीं है। और अगर किसी पैराग्राफ का समरी चाहिए आपको, तो सेंसिटिव नेम्स, फ़ोन नंबर्स, और या फिर कहीं तो अकाउंट डिटेल्स को रिमूव करके भी काम हो सकता है। मतलब AI को यूज़ करना बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि AI को इंटेलिजेंटली यूज़ करना सॉल्यूशन है। तो अगली बार जब आप किसी AI टूल में कुछ पेस्ट या फिर अपलोड करें, तो एक छोटा सा पॉज दीजिएगा और पूछिएगा कि क्या AI को ये इन्फॉर्मेशन देना एक्चुअली ज़रूरी है। अगर आंसर नो है ना, तो इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि डिजिटल एज में प्राइवेसी सबसे पावरफुल टूल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं, आपका अपना जजमेंट है। और अब बात करेंगे उस प्राइवेसी सेटिंग की, जिनके नाम तो हमने बहुत बार सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली वो काम कैसे करते हैं। जैसे कि ChatGPT, Gemini, Grok और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे जिसमें हम डाटा कंट्रोल समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जिसे आप सुनते हैं हर संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारी जो आपसे जुड़ी है, जो हमसे जुड़ी है, जो हम सबसे जुड़ी हुई है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं AI के बारे में। बहुत सारी चीजें हमने जान ली है और अब कुछ उससे जुड़ी जरूरी बातें करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जैसे कि दो इंपॉर्टेंट चीजें समझी है कि AI को इन्फॉर्मेशन देना नॉर्मल है, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात है कि एक फोटो या फिर सिंपल कॉन्वर्सेशन भी अपने अंदर काफी कॉन्टेक्स्ट कैरी कर सकती है। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है कि अगर हम AI का यूज कर रहे हैं तो अपनी प्राइवेसी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज के पॉपुलर AI प्लेटफॉर्म में प्राइवेसी और डेटा यूज के लिए अलग अलग कंट्रोल्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है कि हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, टर्म्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कभी सेटिंग्स को खोल कर देखते ही नहीं है अंदर ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, ChatGPT में डेटा कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, जहां पर पर्सनल अकाउंट्स के यूजर्स ये मैनेज कर सकते हैं कि उनकी न्यू कॉन्वर्जेशन मॉडल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज हो या नहीं। इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन को ऑफ करने पर न्यू कॉन्वर्जेशन मॉडल इम्प्रूव के लिए यूज नहीं होती है। ऑल थ्रू वो नॉर्मल चैट हिस्ट्री में रह सकती है। ChatGPT में टेम्परेरी चैट ऑप्शन भी है। टेम्परेरी चैट हिस्ट्री में अपीयर नहीं होती है, मेमोरी क्रिएट या फिर अपडेट नहीं करती है और मॉडल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज नहीं होती है। और फिर OpenAI के अकॉर्डिंग सेफ्टी पर्पस के लिए टेम्परेरी चैट की कॉपी अप टू 30 डेज तक में रिटेन हो सकती है। अब जेमिनाई को देखिए कि गूगल के जेमिनाई ऐप पर कीप एक्टिविटी नाम का कंट्रोल है। अगर ये ऑन है तो जेमिनाई के साथ की गई चैट्स और शेयर्ड कंटेंट जैसे फाइल्स, फोटोज, वीडियोस या फिर स्क्रीन एक्टिविटी में सेव हो सकते हैं। गूगल यूजर्स को एक्टिविटी रिव्यू, डिलीट और ऑटो डिलीट सेटिंग में मैनेज करने का ऑप्शन देता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना चाहिए कि प्राइवेसी सेटिंग का होना और उस सेटिंग को समझकर यूज करना दोनों अलग चीज है। और मैं आपको सही बताऊं तो आपको हर AI प्लेटफॉर्म की सेटिंग को या फिर टेक्निकल पॉलिसी को याद करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैबिट बना लीजिए कि जैसे कि मेरी एक्टिविटी सेव हो रही है या नहीं, मेरी चैट्स का यूज किस पर्पस के लिए हो सकता है ये सोचिए, क्या मेरे पास हिस्ट्री या फिर एक्टिविटी डिलीट करने का ऑप्शन है, सेंसिटिव

रिजर्वेशन के लिए टेम्प्रेरी प्राइवेसी ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सेटिंग ऑफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी कंट्रोल्स एक एक्स्ट्रा लेयर है, बेसिक कॉशंस फिर भी ज़रूरी है। इसलिए AI यूज़ करने का मैच्योर अप्रोच यही है कि पहले इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करें और फिर प्लेटफॉर्म की सेटिंग को समझिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं। टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल के ऑप्शंस दे सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले स्क्रीन के दूसरी तरफ यूजर को भी अवेयर होना पड़ेगा। जानेंगे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। जी हां, ट्रेंडिंग तड़का में आज हम बात कर रहे हैं AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। AI के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी, पर अब ना मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब अब हम बात करने वाले हैं कि AI को ना स्मार्टली यूज करना चाहिए, उससे डरना नहीं है। AI हमारे यूज के लिए है, आप मानेंगे नहीं, AI में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम अपना काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन AI को ना स्मार्टली यूज करना है। अगर हम स्मार्टली यूज करेंगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो दोस्तों, अभी तक जैसा कि हमने कॉन्वर्जेशन से एक चीज तो क्लियर कर ली है कि AI हमारी लाइफ का एक यूजफुल पार्ट बन चुका है, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी बेनिफिट तभी प्रॉपरली हमें मिलता है जब हम उसे समझ कर यूज करते हैं, ब्लाइंडली नहीं। तब सवाल ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल AI यूजर एक्चुअली करता क्या है। सबसे पहली चीज है कि थिंक बिफोर यू शेयर। AI को कुछ अपलोड करने से पहले 2 सेकंड रुककर सोचिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली जरूरी है। अगर आपको सिर्फ एक पैराग्राफ का ग्रामर चेक करना है या फिर उससे चेक करवाना है, तो पूरा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो क्या उस फोटो में कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विजिबल तो नहीं है, बस इतना ही चेक करना है। दूसरी हैबिट है पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेपरेट रखना। जी हाँ, जैसे कि पासवर्ड हो गया, OTP, पिन, बैंकिंग डिटेल्स, या फिर इसके जैसे ही और भी कुछ बिल्कुल ऑब्वियसली चीज़ें जो कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का स्कोप इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसे ना शेयर करें। ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल हो गई, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन हो गई, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्राइवेट फोटोग्राफ्स हो गए, या फिर दूसरे पर्सन की कोई भी पर्सनल डिटेल, हम उसे अननेसेसरली शेयर नहीं कर सकते हैं और ना हमें करनी चाहिए। तीसरी चीज है AI के आंसर को फाइनल ट्रुथ मत समझिए। AI बहुत कॉन्फिडेंशियली आंसर दे सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और करेक्टनेस एक ही चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पेशली लीगल, फाइनेंशियल, मेडिकल या फिर प्रोफेशनल मैटर्स में रिलायबल सोर्सेज या फिर वेरिफिकेशन जरूरी है। चौथी हैबिट है कि प्राइवेसी सेटिंग को पीरियोडिकली चेक करना। हम फोन की सेटिंग्स, सोशल मीडिया प्राइवेसी और ऐप परमिशंस कभी कभी चेक करते हैं, लेकिन AI एप्लीकेशंस को लेकर भी ये हैबिट होना बहुत जरूरी है। देखिए कि एक्टिविटी कैसे सेव हो रही है, अवेलेबल कंट्रोल क्या है, और आपके पास डेटा मैनेज या फिर डिलीट करने का क्या क्या ऑप्शन है। और पांचवी है AI जनरेटेड कंटेंट को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना। अगर कोई AI जनरेटेड इमेज है या फिर वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इमिडिएटली फॉरवर्ड कर दी जाए। सोर्सेज को चेक कीजिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए, और ज़रूरी हो तो इंडिपेंडेंट वेरीफिकेशन भी कीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि शेयर लेस, चेक मोर एंड थिंक बिफोर यू ट्रस्ट। और इसका मतलब AI से डिस्टेंस बनाना बिल्कुल भी नहीं है। आप AI से आइडिया ले सकते हैं, अपने काम को फास्टर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्निंग में हेल्प ले सकते हैं, बस टेक्नोलॉजी को डिसीजन मेकर नहीं असिस्टेंट की तरह यूज करना ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच है। क्योंकि स्मार्ट यूजर वो नहीं है जो AI को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, स्मार्ट यूजर वो होता है जो समझता है कि AI को क्या बताना है, AI से क्या पूछना है और AI के आंसर पर कितना भरोसा करना है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, जहां पर हम पूरी कॉन्वर्जेशन का एक सिंपल सा थॉट में समझेंगे कि AI से डरने की जरूरत है या सिर्फ अपने डिजिटल सेंस को अपग्रेड करना है। तो चलिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। जी हां, ट्रेंडिंग तड़का लेकर आ गई हूं प्रोग्राम जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस ट्रेंडिंग तड़का में आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कितना जरूरी है, क्या क्या सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी चाहिए, कितनी कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स हैं, कुछ बहुत ही जनरल सी कहूँ तो जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम AI को यूज़ करें और कितना ना करें, क्या AI हमारे लिए सच में इतना ज़्यादा डेंजरस है जैसा कि कहते हैं, या क्या AI हेल्पफुल है। देखिए मैं आपको सही बताऊँ तो AI से डरना नहीं है, बस हमारे जो डिजिटल सेंस है ना उसको डेवलप करना है, क्योंकि AI बहुत हेल्पफुल टूल है अगर आप उसे सच में असिस्टेंट की तरह यूज़ करें तो। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे कि अब तक हमने ट्रेंडिंग तड़का में बहुत सारी बातें जानी, AI के बारे में बहुत सारी बातें की, अब पूरी कॉन्वर्जेशन को अगर एक सिंपल से थॉट में समझे ना तो बात इतनी सी ही है कि AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन AI को बिना समझे यूज़ करने की भी अप्रोच नहीं है। जी हाँ, AI हमारा काम ईजी बनाता है, आइडियाज़ देने से लेकर राइटिंग, लर्निंग, फोटो एडिटिंग और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने तक, लेकिन कन्वीनियंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। आज हमने समझा कि AI की फोटोज या फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले हमें देखना चाहिए कि उसमें कोई पर्सनल या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, सेंसिटिव डिटेल्स अननेसेसरली शेयर नहीं करनी चाहिए, प्राइवेसी सेटिंग को समझना चाहिए और AI के आंसर को इंपॉर्टेंट मैटर्स में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और AI जनरेटेड फोटोज, वीडियोज या फिर वॉइस के दौर में एक हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉज एंड वेरीफाई। जी हाँ, कुछ शॉकिंग देखा तो वेरीफाई कीजिए, कुछ फेमिलियर पर्सन की वॉइस में इमरजेंसी कॉल आए तो उसे कंफर्म कीजिए, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन AI को देने वाला है तो पहले सोचिए तो क्या ये रियली नेसेसरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है और हमें भी स्मार्ट डिजिटल यूजर बनना है, ना कि कोई डम यूजर। तो AI को अपना असिस्टेंट बनाइए, अपने जजमेंट का रिप्लेस नहीं। तो ये थी हमारी आज AI के ऊपर छोटी सी कॉन्वर्जेशन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, बहुत सारी चीज़ों को समझा कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए और यूज़ करनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। एक जाते जाते सिंपल सा थॉट कि थिंक बिफोर यू शेयर, वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग तड़का के एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे क्यूरियस और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

0: नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप? रेडियो मानव रचना, रेडियो
1: मानव रचना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो ना केवल फरीदाबाद के निवासी हैं बल्कि फरीदाबाद हरियाणा को पूरे देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट भी ऐसे मंच पर कर रहे हैं, ऐसे काम में कर रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही मीडिया एडवाइजर टू द CM ऑफ हरियाणा, ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के मीडिया एडवाइज़र हमारे बीच में हैं आज राजीव जेटली जी, जिनको आपने बहुत सारी TV डिबेट्स में देखा होगा, बहुत बार इनको मुख्यमंत्री साहब के साथ देखा होगा, बहुत बार सोशल मीडिया पर चर्चाएं करते हुए देखा होगा, डिबेट्स में पार्ट लेते देखा होगा। लेकिन आज हम इनसे जो बातें करने वाले हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें नहीं करने वाले हैं। हम बातें करने वाले हैं इनके जीवन की, इनके फिटनेस की और कुछ मोटिवेशन की, वो भी युवाओं के लिए। तो बातों का सिलसिला दोस्तों जारी है, आइए मुलाकात करते हैं राजीव जेटली जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम बहुत फॉर्मल या इनके बारे में आपको कुछ बताएं, मैं आपको ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि लगभग 10 से 12 साल पहले ये हमारी बहुत सी डिबेट्स और बहुत सारे डिस्कशंस का हिस्सा रहा करते थे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राजीव जी आज भी हमसे बात करने के लिए अलग से समय निकाल कर तुरंत आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।
1: सो राजीव जी, बहुत सारी बातें हम एक पॉलिटिकल डिबेट की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हम रेडियो मानव रचना है, कम्युनिटी रेडियो है और युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल जो आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा लेकिन शायद हमारे श्रोताओं और दर्शकों को नहीं पता होगा, पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? क्योंकि अब आपको काफी साल हो गए हैं, पर कमाल की बात यह है आप अभी भी युवा हैं।
2: नहीं, अब युवा नहीं रह गए हम, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स बड़ा, कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे आया।
1: जी
2: मुझे एक मेरे बड़े सीनियर एक ब्यूरोक्रेट थे
1: जी,
2: मतलब ही वाज IFS, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में थे, तो वो मुझे किसी एक लीडर से मिलवाने के लिए लेके, बिकॉज वो लीडर जो है उनके जब भी वो किसी जगह पे उनकी ट्रांसफर होती थी, किसी कंट्री में होते थे
1: जी,
2: तो वो लीडर उनके घर पे रहते थे जाकर।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे को किसी से आज मिलवाते हैं, तो मैं चला गया उनके साथ रूटीन में। अच्छा, वहाँ जाके डिस्कशन शुरू हुई है। आई वॉज प्योरली मार्केटिंग गाय, तो अब क्योंकि मार्केटिंग का था, सेल्स का था, तो बोलने की आदत थी,
1: बातचीत
2: जब
1: हो जाती।
2: जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो हमने भी अपने व्यूज देने शुरू कर दिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वाई डोंट यू ज्वाइन अवर पार्टी, आप हमारी पार्टी क्यों ज्वाइन करते हैं? और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टी में क्या होता है, तो उन्होंने कहा हमारी, ऐसे कि मैं ज्वाइन कर लूँगा कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई पद ले लो, तो बिलीव में मेरे को पद भी नहीं पता था क्या होते हैं। तो मैंने उनसे कहा जी आप क्या बनाओगे, मुझे MP बनाओगे या MLA बनाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, एक और पद होते हैं संगठन के
1: जी,
2: फिर वो क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा पहले थोड़ा सीख के आओ फिर दोबारा आना। अच्छा, मैं भूल गया उस बात को। कुछ दिनों के बाद फिर उनका फोन आया कि भाई तुमने विचार किया?
1: अच्छा।
2: तो मैंने कहा जी हाँ किया। तो ऐसे करते करते किसी के रेफरेंस से मैं गया, और बस एक प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम कह लो, मेरी USP कह लो, या मेरी अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, या तो मैं कोई काम करता हूँ या करता ही नहीं।
1: अच्छा।
2: तो उसमें ऐसा हम एंगेज हुए कि सब कुछ छूटता चला गया, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए, और रिसर्च करनी शुरू कर दी और मेहनत करनी शुरू कर दी, बहुत धक्के भी खाए रैलीज में, यहाँ वहाँ बहुत मेहनत करी।
1: बिल्कुल।
2: और मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद देखा प्रैक्टिकली कि मेरे पास तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था।
1: बिल्कुल।
2: मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, किसी लीडर्स का मेरे सिर पे हाथ नहीं था, तो मेरे लिए वो रास्ता था वो थोड़ा ज्यादा लंबा रहा
1: जी,
2: कि जिसे कहा जा सकता है कि कहीं पे हम 1 किलोमीटर आसानी से सीधा जा सकते हैं, तो उस 1 किलोमीटर के लिए मुझे 15 किलोमीटर चलना पड़ा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो ये चैलेंजेस थे मेरे साथ, लेकिन मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि वो चैलेंज ना होते तो शायद मैं आज इतनी गहराई तक उन चीजों को सीख करके आगे ना आता, फिर आज मेरे लिए चैलेंज बन जाते। वो कहते हैं ना, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल।
1: एब्सोल्युटली।
2: तो हमने नियम को पकड़ के रखा, तो आज थोड़े से फलदायी नजर आ रहे हैं, पहले तो कष्टदायी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: जी बिल्कुल। यानी जो रास्ता आसानी से बहुत सारे लोग ऐसे तय कर जाते हैं, जो जनरली कहा जाता है पॉलिटिक्स में अगर आप खानदानी पॉलिटिशियन हैं तो बहुत आसानी से आप आगे बढ़ जाते हैं।
2: थोड़ा सा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जिसको हम आसानी से कहते हैं, इसीलिए मैंने बोला जिसे जो आसानी से चीज मिलती है वो बाद में जाके पेन देती है।
1: हाँ, शुरुआत में तो आपको
2: बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसमें स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं वो आपको बाद में जाकर बहुत मजबूती देती है। तो इसलिए आप प्रिपेयर होते हैं, आप लूज नहीं कर रहे होते कुछ भी, और आपको क्योंकि आपने वो सारे रास्ते देखे हैं और उन रास्तों पे वापस भी चलना पड़े तो आपके लिए वो नए नहीं होंगे, आपके पहचाने भी होंगे, तो आप विल बी कंफर्टेबल ऑल द टाइम।
1: तो मुश्किल रास्तों पर चलना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। अक्सर आसान रास्ते आपको काफी दूर तक नहीं ले जा पाते, लेकिन मुश्किल रास्ते आपकी दूरियां और आपकी मंजिल को और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। दूरियां छोटी कर देते हैं लेकिन मंजिल बहुत कमाल की हो जाती है। राजीव जेटली हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है इस चीज का। तो दोस्तों, बातें और भी जारी रहेंगी, कुछ खास, कुछ मोटिवेटेड, कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने मैसेजेस के जरिए हमें बता सकते हैं आप अपनी राय 8010781078 पर। बातों का सिलसिला जारी रहेगा छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम जिनसे बात करें हैं वो है मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और बहुत सी अलग अलग प्लानिंग्स जो कि स्ट्रैटेजिक मीडिया प्लानिंग्स होती हैं, सरकारी कम्युनिकेशंस होते हैं, पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव्स होते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से वो मीडिया से रूबरू होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ करते हैं राजीव जेटली जी हमारे बीच में हैं, जो कि मीडिया एडवाइज़र टू द ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा हैं। और इनसे आज हम कुछ हट के बात करें, यानी राजनीति के बारे में बात नहीं करें, लेकिन हाँ राजनीति में कैसे पहुँचे ये तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन आगे भी और भी बहुत सी बातें जान रहे हैं। राजीव जी, कोई ऐसा अनुभव, अभी आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स में आ गए, बस आपको किसी ने परखा, शायद तराश लिया और आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि एक जौहरी की नजर ही होती है जो हीरे को देख के समझ जाती है कि कितना चमकदार है, तो आप उस फील्ड में एंटर कर गए। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें वाकई बहुत स्ट्रगल होती है। शायद लोगों को लगता हो कि सब कुछ प्लेटर पे आ जाता है, बट हमने देखा है, क्योंकि हम मीडिया की फील्ड हैं तो हम जानते हैं कि एक रैली के लिए बस में लोगों को ऑर्गेनाइज करके लेके जाना, उनको समझाना, और फिर उसके बाद इलेक्शंस में रातों रात भी आप सो नहीं पाते हैं, आप चलते रहते हैं, आप चाहे आप एक कंटेस्टेंट हो या ना हो, आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपने कहते हैं ना स्वार्थ के, आप उस पार्टी के साथ, उस नेता के साथ चलते रहते हैं। सो ये जो स्ट्रगल होती है, ये आजकल के शायद बच्चों को, या मैं कहूँगी युवाओं को नहीं पता। उन्हें लगता है चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दे रही है, और आजकल कुछ हद तक है भी सही। सो कुछ वो स्ट्रगल के दिन हमें ज़रूर बताएं, कुछ ऐसा अनुभव जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें।
1: इसमें दो बातें आती हैं, मैंने क्या स्ट्रगल किया मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं कई बार, ये एक जनरेशन गैप भी रहता है हमारा, हमें भी ऐसे ही बोला जाता था कि हमने कितना स्ट्रगल किया, आज तुम्हारे पास उतना नहीं है। हमारे वक्त में लाइट नहीं होती थी, हम ऐसे पढ़ते थे, हमारे वक्त में पंखे नहीं होते थे, हमारे वक्त में पानी ऐसे आता था, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद जब हम आए तो हमें लगता था कि ये मेरा स्ट्रगल है, इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के भी अपने अपने स्ट्रगल हैं, लेकिन हम उनसे अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरी जैसी बात क्यों नहीं कर रहा।
0: हाँ।
1: हमें ये नहीं पता कि उसके स्ट्रगल्स किस लेवल के हैं, वो किस तरीके से उसको देख रहा है, किस तरीके से उसको फेस कर रहा है। तो हम, ये जो गैप है ना, ये गैप कहीं ना कहीं पर, अच्छा पहले क्या होता था, ये ट्रांजिशन बहुत स्लो था, टेक्नोलॉजी तो आ रही थी लेकिन काफी स्लो था, तो एक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन जो पिछली पीढ़ी गई थी और जो अगली पीढ़ी आई थी, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा अच्छा था। अभी क्या हुआ, जो पिछले 10-20 सालों में देखेंगे, 10-20 वाले में नहीं, 15-1 सालों में देखेंगे, 15 सालों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतनी चेंज हुआ कि हम भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है। अब कई बार हम क्या कि हम अपने कुछ टेक्नोलॉजी के साथ जितनी

0: आज देखिए, मैं तो आई सैल्यूट टू दिस पीपल, दिस यंग्स, क्योंकि मैं हम जिस लेवल पे शायद हम अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं सीख पाए थे, उतनी बात कोई आपको फिफ्थ क्लास का बच्चा बता सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जिस तरह की वोकैबुलरी उनकी है, जिस तरीके के नॉलेज उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि हमारे दौर में शायद कोई आदमी ने किसी एक सब्जेक्ट पे पीएचडी भी करी हो तो उतनी नॉलेज नहीं रखता होगा। हम कहते तो हैं पहले एजुकेशन हाई लेवल के दिन, मैं नहीं मानता इस बात को। जिस लेवल पे आज बच्चे खड़े हैं, हाँ, ये एक थोड़ा सा मेरे को कई बार डाउट होता है कि जिस लेवल पे वो जिस फास्ट स्पीड से वो आगे चल रहे हैं, अपनी एज से जो आगे आगे चलते चले जा रहे हैं नॉलेज को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत ना लेकर के, अगर ये क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा और वो अपग्रेड होते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं सैचुरेशन स्टेज ना आ जाए, क्योंकि सैचुरेशन स्टेज बहुत बुरी चीज होती है। जब वो आती है तो उसके बाद देखा आपने कि ये जो कई बार आपने देखा होगा कि हर आदमी जो बहुत कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लेता है, फिर ही वांट टू गेट इनटू समथिंग न्यू, और वो न्यू जो सा होता है कई बार उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता है, कई बार नशे में ले जाता है, क्योंकि उसको हर नई चीज एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये नुकसान तो कई बार होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले गए, मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में कि लीकर की सेल डाउन हो गई है, शराब की सेल कम हो गई है, तो उसके पीछे की जो वजह बताई कि अब बच्चों को नशा टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो शराब की नशे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए, इससे एक बात का अंदाजा लगता है कि इसका नशा कितना बड़ा है।
1: अरे एब्सोल्युटली, मुझे लगता है बच्चों में क्या, आप बड़ों में देखिए, हम बुजुर्गों को देखते हैं पार्क में सुबह सैर करते हुए,
0: सुबह
1: जैसे ही वो बैठते हैं बेंच पे, सबकी जेब से फोन निकल आते हैं, चाहे वो भजन सुन रहे हो, चाहे वो कोई कथा सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, बट एक वो नशा रहता है, आपका एडिक्शन है। आप चाहे रात को सो रहे हो, सोते सोते आप फोन देख के सोते हैं, पहले हम एक दूसरे से मिलके गुड नाइट बोल के सोते थे, अब हम फोन देख के सोते हैं और सबसे पहले फोन को उठाते हैं उठते ही, तो ये तो एक एडिक्शन
0: मेरे को लगता है। ये भी अच्छे के लिए, आपने देखा पीछे कई, मैंने ऐसी मूवीज देखी, आपने भी देखी होंगी, अवतार जैसी मूवीज आई, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे, असली प्रॉब्लम ये थी। और ये भी कहते थे कि भाई मुझे सब कुछ तो मिल गया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है,
1: टाइम नहीं है,
0: ठीक है, बच्चों के पास टाइम नहीं है। आज वो इतने बिजी हैं अपने मोबाइल के साथ कि उनको लगता है कि मेरे को कोई टाइम देने वाला है। मैं आज कोई व्यक्ति अगर किसी को वेट करना है किसी के लिए, और मैं तो रेड लाइट पे देखता हूँ, ये जो सिग्नल्स पे लोग 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, 2 मिनट भी अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं कुछ देखने के लिए, तो उन्होंने पहले तो लगाया था टाइमर कि सिग्नल पे कि इतने मिनट के बाद, ताकि आदमी बोर ना हो, ही शुड बी प्रिपेयर कि इतनी देर में गाड़ी चलेगी। लेकिन अब मैंने देखा है कि कई बार लोग अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें लगा लेते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, वो ग्रीन हो जाता है, उसके बाद उनका ध्यान होता है, पीछे हॉर्न बजता है, तब जाके वो आगे चलते हैं। तो सोचिए कि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हो रही है और कुछ कुछ नुकसान तो होते ही, वो कब होंगे कैसे होंगे, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होंगे उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे आगे।
1: जी बिल्कुल। अब जब फोन की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप कितना समय फोन पे बिताते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, एक शहर के बारे में नहीं, पूरे राज्य के बारे में, और कुछ मामलों में तो आपको देश के बारे में जानकारी चाहिए, और एक प्रवक्ता के तौर पर जब आप डिबेट के लिए जाते हैं कैसी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने जब प्रवक्ताओं को देखा है स्क्रीन पर, एक तो गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं और दूसरी सबसे कमाल की चीज ये होती है, हर एक चीज के बारे में बहुत जानकारी होती है, मतलब आपको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, बट जब आप इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं तो चीजें भूल भी जाते हैं, और आप लाइव डिबेट में ये रिस्क नहीं ले सकते।
0: मुझे याद है कि जब मैं पहले डेली मेरे पास एक डायरी होती थी और कहीं कोई कुछ कहता था, कहीं कुछ बोलता था, या मैं कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ता था या न्यूज़ में सुनता था, तो मैं डायरी में उसको नोट कर लेता था।
1: अच्छा।
0: और उसका मैंने एक इंडेक्स भी बना रखा था, और मैंने एक कुछ पेजेस बनाए हुए थे, कुछ मैंने लॉ एंड ऑर्डर पे बना रखे थे,
1: तो
0: उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, ये मेरे बिगनिंग जो मेरे इनिशियल डेज थे जब मैंने शुरुआत करी थी तब की बात है, इसी तरीके से अलग अलग मैंने बना रखे थे। तो जब भी मुझे कोई डिबेट आती थी मैं उस दिन उसको पढ़ता था कि अगर मुझे कौन सा कंटेंट कहाँ यूज करना पड़ जाए वो मैं देखूंगा। लेकिन फ्रेंकली आज शायद मैंने अब कोई नोट नहीं बनाना होता, क्योंकि अभी इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि अब हमें कई बार 15 मिनट का टाइम मिलता है जी इस सब्जेक्ट पे डिबेट है, कंटेंट अभी नहीं, अपने आप हैंडल कर लेना, ठीक है,
1: इतना एक्सपीरियंस हो गया,
0: तो वो होता है, फिर उसके बाद वो आ जाता है। लेकिन नो डाउट ये हम पहले न्यूज़पेपर का वेट करते थे नेक्स्ट डे, आज हमारे पास कोई भी खबर होती है

0: इतनी फास्ट आती कि न्यूज चैनल उसको कवर नहीं कर पाता, उससे पहले हम इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं उसको।
1: बिल्कुल,
0: इतनी फास्ट न्यूज आती है और वो इतना अपडेट कर जाती है आपको कि आपको सब कुछ पता ही होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है आधे घंटे पुरानी खबर भी आपको बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है, मतलब इतनी पुरानी और बासी लगती
1: है,
0: इतनी बार वो आ चुकी है। तो ये नो डाउट, अब कोई भी चीज के लिए मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि ठीक है हम प्रवक्ता हैं, हमारे को अपनी पार्टी की लाइन रखनी है और पार्टी का विचार रखना है, लेकिन नो डाउट कि अब क्योंकि हर आदमी के पास इतने कंटेंट हैं देखने के लिए कि शायद वो हमें सुनता भी है कि नहीं सुनता। मैं एक दिन मैं अपने बॉस से हंस रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई माइलेज मिलता है आपको टीवी पे जाते हो तो डिबेट में जाते हो, तो मैंने कहा सर मुझे तो एक चीज तो मेरे को है एक जगह पे, पहले तो मैं फ्लाइट में जाता था तो हर आदमी पहचानता था, ट्रेन में कभी गया तो उधर भी सब लोग पहचान लेते थे, कोई सेल्फी भी खिंचवा के चले जाते थे, लेकिन अब मैंने कहते हैं अब आजकल, मैंने कहा आजकल एटीएम में जो हमारे सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं वो पहचान लेते हैं, क्योंकि वो एटीएम के अंदर बैठते हैं कोई काम होता नहीं, वो सारा दिन रील देखते रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको दिख जाते हैं सुबह से शाम तक। तो मैंने कहा अब हमारी पहचान यहाँ तक रहेगी क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो गई, सब बहुत सारे सोर्सेस हैं। और वो जो गाना नहीं है अमिताभ बच्चन का, मुझसे बेहतर कहने वाले मुझसे बेहतर सुनने वाले, तो वो गाना मैं आज कल दो दिन पहले सुन रहा था वो, कि कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे। हुँ? तो उसमें बहुत बात वही थी कि भाई हर रोज चीजें बदल रही हैं, रोज टेस्ट भी बदल रहे हैं, सिस्टम भी बदल रहे हैं, थॉट्स भी बदल रहे हैं, इंटरेस्ट भी बदल रहे हैं। तो या तो हमें अपने आप को बदलना है उनके साथ साथ,
1: बिल्कुल
0: हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे और वो कलर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, और बदलना एक प्रकृति का नियम भी है, लेकिन समय के साथ बदलाव हो तो अच्छा लगता है, पर बदलाव थोड़ा तेजी से आ रहा है आजकल के समय में। तो बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। राजीव जेटली जी से बातों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में बहुत सी बातों के साथ साथ कुछ मीठे मीठे गाने भी, यानी म्यूजिकल ब्रेक भी। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सी बातें चल रही हैं आज हमारे खास मेहमान राजीव जेटली जी से, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं टू द ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा और साथ ही नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज, मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या होंगी, किस तरीके से इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग होगी, किस तरीके से प्रेस आउटरीच होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होते हैं, उसमें डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, इलेक्शन वॉर रूम कम्युनिकेशन सपोर्ट कैसे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद एक आम इंसान को नहीं पता होती, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और ऐसे ही शख्स हमारे बीच हैं राजीव जेटली जी, जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा, और इनसे कुछ ख़ास बातों का सिलसिला जारी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं और स्पोक्स पर्सन की प्रोफाइल पर हैं नेशनल लेवल पर, और इसके साथ साथ आप मीडिया एडवाइज़र हैं माननीय मुख्यमंत्री के, सो यहाँ पर कैसी तैयारी आपकी रहती, क्योंकि मीडिया आजकल के समय में फोन में आ गया है, ये छोटी सी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया दिखा देती है। जैसा आपने कहा कि एक के बाद एक रील्स आती रहती हैं एल्गोरिथम के थ्रू, आप जो है दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन 5 मिनट में ले लेते हैं, तो ऐसे में आपकी तैयारी कैसे होती है, आप अपनी तैयारी कैसे रखते हैं और मेंटली कैसे स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग भी होती है।
1: ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मीडिया मैनेजमेंट बहुत आसान होता था, और इतना आसान होता था किसी भी एडवाइजर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इतने न्यूज़पेपर, इतने न्यूज चैनल,
0: इतने चैनल जी।
1: आज की डेट में इतने न्यूज़पेपर तो है ही हैं, उतने चैनल भी हैं, लेकिन साथ में हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज के, जिसको आपको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार तो क्योंकि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी नहीं आते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, एथिक्स की भी कई बार कमी हो जाती है, क्रेडिबिलिटी की भी कई बार कमी हो जाती है। तो ऐसे में 3-4 हज़ार लोगों को एक साथ देखना, ये मेरे लिए, हमारे लिए नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन कोशिश होती है। फिर कुछ कुछ फार्मूलेस बनाने पड़ते हैं, मन में सोचने होते हैं कि इनको एक साथ कैसे करा जाए या कैसे कैसे करा जाए, ये असली चैलेंज है आज की डेट में। देर आर वेरियस, बहुत सारे टूल्स भी आते हैं इन चीज़ों के, लेकिन वो टूल्स किसी को डाउन करने के लिए, किसी को उठाने के लिए हो सकते हैं। अगर फिजिकली आप सोचते हैं कि आपको चीज़ों को मैनेज करना है, तो फिर आपको फार्मूलाज, फिर आते हैं ना वहीं पे घूम फिर के पाइथागोरस का फार्मूला जाता है कि आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। टूल्स को यूज करोगे तो किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, लेकिन इवेंचुअली इतनी चीजें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है कि वो टूल्स भी शायद कल काम करने बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल,
1: फिर आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी वहां पर।
0: और ऐसे में मुझे लगता है एथिक्स की बात आपने कही, एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एथिक्स की बात आपने कही और एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम मीडिया के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं मीडिया के, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको एथिकल काम करना होगा, मतलब आपको वो काम करना होगा जो सही है। लेकिन आजकल के समय में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, बहुत सारे तो सही काम कर रहे हैं, अच्छे भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का, तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना, तो मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए, अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं, उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जुड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंतिम नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेवारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ,
कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था।

आंखें बड़ी प्यारी थी। साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेचने लगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा, तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी इच्छा प्रकट की। इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके, हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा झापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वरग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं, ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए,
बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। कितनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता, जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती झकेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है, प्रमाण नहीं पूछता। तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की प्रभध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ।
ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक के पन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोक, रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली। फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं, मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चलाने, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा आए। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क क्या दिए है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ, लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आगे मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पे श्रद्धा रही वो मुझे सुन के
ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पार। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार, तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो, तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती,
इंसानों तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना

उससे तर्क जुटाने पड़ते। तो ईसाई जज भी हो, लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जज गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जज गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होगा, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ, मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए, डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है, अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा, कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करने होंगे, इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो, जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो, अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं, तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई, और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती, तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं,
तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए। संयोग है, इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है। कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तथस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात। तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने? क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो न हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जिस रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर, अहो
हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते सुसुखम वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत जीवाम उत्सुकेसु अनसुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनसुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे। आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपद वासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपद वासी सांख्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक सांख्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। सांख्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। आसार के लिए सार को गमाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए।
तो नौकर मालिक मालूम।

सौंदरी है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदरी है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है। और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुके सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है,

इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ्य है अंतिम होने की सामर्थ्य। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते हैं। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी, क्योंकि असली सवाल होने का है। आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्ट का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड, जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया कि मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai, ya I don't have time for myself. What we don't realize is it's not just for myself. It's for my family also.
4: For my all loved ones, for everyone. Jinke liye main zindagi dene ko tayar hoon. Absolutely. Sab kuch karne ko tayar hoon. Unawareness mein main kahan tak kitna nuksan. रिश्तों की बात करें, मतलब हम आपस वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उसमें एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मतलब ये मेरे लिए
5: वे, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त हो के सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँगा,
5: मुझे करना है। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी। तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं। से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस। एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या।
4: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूँ।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? This I will have to ask, because otherwise मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ with this thought कि मैं victim, you know, और वो जीवन फिर quality बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं victim हूँ, एक incident था, over, I have to move ahead. Victim वाली feeling से बाहर निकलना होगा. और बहुत important बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीजें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीजें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, I have to move on, taking it, it's a lesson which has come for me, I have to learn from it, move on, I have a choice. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहां वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
4: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
5: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
4: रहते हैं. लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized, जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
5: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ that is now over. अब मुझे focus सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट, क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
4: वही हो रही होती है,
5: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
4: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
5: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
4: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
5: right? But we're not really helping.
4: Yes,
5: यू नो हेल्प एट दैट टाइम वुड मीन एम्पावरमेंट. लेकिन बार बार कह कर के हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनी वन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है. यू नो, तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
4: बहुत बहुत धन्यवाद.
5: ओम शक्ति.
4: ओम शक्ति.

नमस्कार दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं आपकी कम्युनिटी सदस्य अर्चना आपके साथ, और स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम योग शक्ति में। श्रोताओं, आज हम सब बात करने वाले हैं उस ताकत की जो हमारे पास हर पल है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारी सांसें। आज हम लोग बात करेंगे सांसों के ऊपर कि कैसे उसको एक नई आयाम दिया जाए, यानी प्राणायाम के बारे में। तो दोस्तों, प्राणायाम न केवल योग का एक मुख्य अंग है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला प्राचीन भारतीय विज्ञान है। प्राणायाम का इतिहास तो हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। प्राणायाम की जो सबसे पहली झलक देखने को मिलती है दोस्तों, वो ऋग्वेद के छांदोग्य उपनिषद में, जहां प्राण को सृष्टि की मूल ऊर्जा माना गया है। लगभग 400 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की थी। इसमें प्राणायाम को चौथा अंग रखा था। पहला था हमारा यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, अब चौथा प्राणायाम है। पतंजलि के अनुसार आसन में निपुणता के बाद सांसों की गति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। हम लोग देखें तो हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे ग्रंथों में विभिन्न प्राणायाम पद्धतियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। योग शास्त्र में माना जाता है कि